सुप्रभात। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 16.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का हाफलोंग केंद्र है। इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 5:58 और 45 सेकेंड हुए हैं। दिन है आज शनिवार, सक्संवत 1947, श्रवण महीने की 31वीं तिथि और साथ ही अंग्रेजी सन 2026 की 22 अगस्त है। सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत करते हुए मैं सावित्री शुरू करती हूँ आज की हमारी पहली सभा।

0: अभी आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार। आज की
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं देवेंद्र त्रिपाठी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सुधार उनकी सरकार के लिए मजबूरी नहीं बल्कि प्रतिबद्धता है। उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियां लोगों के हित और देश के विकास को ध्यान में रखकर बनाई जा रही हैं। नई दिल्ली में इकोनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड लीडर्स फोरम में प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार नियम बदलने के साथ नियम बनाने की सोच भी बदल रही है। उन्होंने कहा कि भारत अब उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना के माध्यम से उद्योग और रोजगार के नए अवसर सृजित कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक स्तर पर संसाधनों को लेकर बढ़ता

0: करोड़ आबादी को गरीबी से बाहर निकाला है।
1: प्रधानमंत्री ने भारत की G20 अध्यक्षता के मंत्र एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य का उल्लेख करते हुए कहा कि दुनिया के सभी देशों का भविष्य एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। लाल किले से स्वतंत्रता दिवस संबोधन का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के विकास के लिए 7 प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इनमें विनिर्माण, कृषि और खाद्य प्रसंस्करण, तकनीक और नवाचार, हरित अर्थव्यवस्था और समुद्री अर्थव्यवस्था शामिल है। भारत की मेजबानी में आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में आज ब्रिक्स युवा मंत्रियों की और कल ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक आयोजित की जाएगी। बैठकों की अध्यक्षता युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया करेंगे। राज्य मंत्री रक्षा खड़से भी इसमें शामिल होंगी। युवा कार्य मंत्रियों की बैठक में युवा विकास, शिक्षा कौशल, रोजगार, उद्यमिता जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। वहीं खेल मंत्रियों की बैठक में 11 ब्रिक्स देशों के मंत्री और प्रतिनिधि खेलों में आपसी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। भारत की अध्यक्षता में जयपुर में हुई ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक कल जयपुर घोषणा पत्र को सर्वसम्मति से मंजूरी देने के साथ संपन्न हुई। जयपुर घोषणा पत्र में ब्रिक्स देशों के बीच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पर्यावरण के अनुकूल पर्यटन, कौशल विकास और सुविधाजनक यात्रा जैसे क्षेत्रों पर जोर दिया गया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने भारत की सांस्कृतिक जड़ों को सुरक्षित रखने की जरूरत पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि संस्कृति देश को एकजुट करने वाली मजबूत कड़ी है। नई दिल्ली में कल अंतर हृदय कनेक्ट के मल्हार कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने युवाओं, विशेष रूप से जेन जी से धैर्य और जिम्मेदारी के साथ अर्थव्यवस्था को बेहतर और मजबूत बनाने में योगदान देने की अपील की। उन्होंने कहा कि युवाओं को भारत की अलग अलग सांस्कृतिक परंपराओं से जोड़ने वाले कार्यक्रम जरूरी हैं, इससे उनमें देश के प्रति जुड़ाव की भावना मजबूत होती है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर ने बांग्लादेश के 23वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। उन्हें संसद के उपाध्यक्ष कैसर कमाल ने पद की शपथ दिलाई। आलमगीर गुरुवार को राष्ट्रपति चुनाव में 255 वोट हासिल कर निर्वाचित हुए हैं। उन्होंने विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार ओली अहमद को हराया, जिन्हें 88 वोट मिले थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 5 सितंबर को नई दिल्ली में 48 स्कूली शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करेंगी। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार इन शिक्षकों का चयन जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर 3 चरणों की चयन प्रक्रिया के अंतर्गत किया गया है। BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के महिला डबल्स सेमीफाइनल में आज भारत की त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी का सामना शीर्ष वरीयता प्राप्त चीन की लियू चेंग सु और टैन निंग से होगा। क्वार्टर फाइनल में कल त्रिशा और गायत्री ने चीन की जिया ई फैन और झांग शु शियान को हरा दिया। इस जीत से त्रिशा और गायत्री ने प्रतियोगिता में भारत का एक पदक तय कर लिया है। इस बीच पुरुष डबल्स क्वार्टर फाइनल में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी चीन के लियांग वेई केंग और वांग चांग से हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गए। भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने लुजान डायमंड लीग में रजत पदक जीत लिया है। उन्होंने 88.05 मीटर तक भाला फेंक कर दूसरा स्थान हासिल किया। नीरज श्रीलंका के रमेश थरंगा पथिराज से सिर्फ 9 सेंटीमीटर पीछे रहे। रमेश ने 88.14 मीटर तक भाला फेंक कर पहला स्थान प्राप्त किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का हाफलॉन्ग केंद्र है। चलिए अब नजर डालते हैं आज के मुख्य कार्यक्रमों पर।

सबसे पहले यानी कि 6:10 पर आप सुनेंगे भक्ति गीतों का कार्यक्रम। 6:30 पर आप सुन पाएंगे वुमन सेंट्रिक फिल्म सॉन्ग। 7:00 आकाशवाणी के डेली केंद्र से आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।

सुबह 7:05 पर आप सुनेंगे आज का दिन। बीट्स ऑफ हर्ट्स का कार्यक्रम का आप आनंद ले पाएंगे सुबह 7:30 पर। 8:00 आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे समाचार प्रभात तथा 8:15 पर कुछ देशभक्ति गीत। नॉर्थ ईस्ट न्यूज का समय रहेगा 8:40 का, जो आकाशवाणी के शिलांग केंद्र से रिले किए जाएंगे।

सुरों की रंगोली कार्यक्रम का आप आनंद ले पाएंगे सुबह 8:40 पर। 9 बजे आकाशवाणी के गुवाहाटी केंद्र से आप सुनेंगे पुअर आंचलिक बातोरी। स्थानीय भाषाओं के कार्यक्रम के तहत आप सुनेंगे खेलमा भक्ति गीत जेतलन जेते और साथियों से सुबह 9:15 पर।

रांगखोल कार्यक्रम में आज रांगखोल बुलबुलाल और सारथी सुनवाएं के कुछ रांगखोल आधुनिक भक्ति गीत। समय रहेगा 9:25 पर। जयंती कार्यक्रम में आज सुनेंगे जयंती भक्ति गीत। गायक कलाकार है मोरालिटी और उनके साथी। 9:45 पर बेते कार्यक्रम में एल आर कस्परा नामपुई और साथी सुनवाएंगे कुछ बेते आधुनिक गीत। सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक आप आनंद ले पाएंगे विविध भारती के कार्यक्रमों का, जो आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से रिले किए जाएंगे। और इसी बीच हर घंटे आप सुनते रहेंगे समाचार और मुख्य समाचार। दोपहर 2 बजे आकाशवाणी के रिले केंद्र से पहले आप सुनेंगे मिड डे न्यूज और उसके पश्चात 2:15 पर दोपहर समाचार। ये थी जानकारी हमारी आज की पहली सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 MHz पर ये आकाशवाणी का आप लोग केंद्र है।

आप आनंद ले रहे थे कुछ भक्ति गीतों का। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का हफलों केंद्र है। अब प्रस्तुत है वुमेन सेंट्रिक फिल्म सॉन्ग के तहत कुछ फिल्मी गीत।

0: आप आनंद ले रहे थे वुमेन सेंट्रिक फिल्म सॉन्ग के तहत कुछ फिल्मी गीतों का। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 MHz पर ये आकाशवाणी का हफलों केंद्र है। अभी आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार।
1: समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सुधार उनकी सरकार के लिए मजबूरी नहीं बल्कि प्रतिबद्धता है। उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियां लोगों के हित और देश के विकास को ध्यान में रखकर बनाई जा रही हैं। नई दिल्ली में इकोनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड लीडर्स फोरम में प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार नियम बदलने के साथ नियम बनाने की भी बदल रही है। उन्होंने कहा कि भारत अब उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना के माध्यम से उद्योग और रोजगार के नए अवसर सृजित कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक स्तर पर संसाधनों को लेकर बढ़ता तनाव और दुनिया भर में अविश्वास नई चुनौतियां पैदा कर रहे हैं।
2: दुनिया ने बड़ा भयंकर एक रूप देखा है इन दिनों। रिसोर्सेज का वेपनाइजेशन हो रहा, अविश्वास का वातावरण विश्व के लिए अनेक नई चुनौतियां लेकर के आ रहा। लेकिन ऐसे समय में भी दुनिया भारत को ग्रोथ और होप के ब्राइट स्पॉट के रूप में देख रही है। भारत ने पिछले 10

0: ये जमीन दी गई, जबकि सीमा बाड़ के लिए जमीन की मांग 2014 से लंबित थी। सिलीगुड़ी में एक कार्यक्रम में श्री शाह ने कहा कि घुसपैठ रोकने और देश की सुरक्षा के लिए सीमा पर बाड़ लगाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि अवैध प्रवासियों की पहचान, उन्हें हटाने और वापस भेजने की कार्रवाई जारी रहेगी। भारत की अध्यक्षता में जयपुर में ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक जयपुर घोषणा पत्र को सर्वसम्मति से मंजूरी के साथ कल संपन्न हो गई। घोषणा पत्र में ब्रिक्स देशों के बीच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पर्यावरण अनुकूलन, पर्यटन, कौशल विकास और सुविधाजनक यात्रा जैसे क्षेत्रों पर बल दिया गया है। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने की। उन्होंने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य में पर्यटन की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में आज ब्रिक्स युवा कार्य मंत्रियों और कल ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक होगी। इन बैठकों की अध्यक्षता युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया करेंगे। खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से भी इसमें शामिल होंगी। सरकार ने कहा है कि देश में चीनी का पर्याप्त भंडार है और घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए चीनी की कोई कमी नहीं है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने बताया कि चीनी की कीमत पिछले कुछ हफ्तों में 48 रुपये से बढ़कर करीब 55 रुपये प्रति किलो हो गई है और सरकार लगातार कीमतों पर नजर रख रही है। कीमतों पर नियंत्रण के लिए सरकार ने चीनी कारोबारियों पर 400 टन की भंडारण सीमा लगाई है। ये सीमा 1 अगस्त से 30 नवंबर तक लागू है। भारत और नेपाल ने सीमा प्रबंधन और सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। देहरादून में हुई भारत नेपाल संयुक्त कार्य समूह की 14वीं बैठक में दोनों देशों ने आपसी सहयोग के विभिन्न मुद्दों की समीक्षा की। 2 दिन की इस बैठक में सीमा पार अपराध रोकने, बुनियादी ढांचे, सड़क और रेल संपर्क मजबूत करने तथा अतिक्रमण हटाने पर चर्चा हुई। दोनों पक्षों ने विभिन्न क्षेत्रों में आपसी तालमेल और क्षमता बढ़ाने पर भी विचार साझा किए और इन मुद्दों पर आगे भी बातचीत जारी रखने पर सहमति जताई। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर ने बांग्लादेश के 23वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। उन्हें संसद के उपाध्यक्ष कैसर कमाल ने पद की शपथ दिलाई। FIH पुरुष हॉकी विश्व कप के दूसरे चरण में आज अम्स्टरडेम में भारत का सामना मेजबान नीदरलैंड से होगा। मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 7:30 बजे शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 MHz पर यह आकाशवाणी का हफलों केंद्र है।
2: सेंसस 2027 के बारे में एक जरूरी सूचना। सेंसस 2027 का हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन का काम 17 अगस्त से शुरू हो गया और 15 सितंबर 2026 तक चलेगा। ये प्रक्रिया में सेंसस ऑफिशियल यानी एन्यूमरेटर आपके घर में आएगा। उनका अपना ऑफिशियल आइडेंटिटी कार्ड भी होगा। ये ऑफिशियल आपसे कुछ सवाल पूछेंगे, जैसे कि आपके घर में कितना जन है, पीने का पानी, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, इंटरनेट, स्मार्टफोन, गाड़ी वगैरह एक्सेट्रा सब है कि नहीं आपको पूछेगा। एन्यूमरेटर आपसे कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं मांगेंगे और आपका सारा इन्फॉर्मेशन गोपनीय यानी कॉन्फिडेंशियल ही रहेगा। सभी से अनुरोध है कि आप लोग एन्यूमरेटर को अच्छे से कोऑपरेट करें, सही इन्फॉर्मेशन दे, देश का फ्यूचर के लिए और देश आगे बढ़ने में साथ दे।
1: अब प्रस्तुत है पोइम ऑफ द डे, जिसे प्रस्तुत करेंगे दीप राणा।
3: Hi, my name is Deep Rana. Today I'm going to recite a poem named Little Dream. I have a little dream inside, a gentle hope I cannot hide. I'll walk with courage step by step and keep my faith with every breath. The stars may shine, the skies may glow, they're always far for me to know. With every fall I'll rise again, through every joy, through every pain. So I'll keep smiling, brave and true, and chase the dreams I mean to do. For every day is fresh and new, a little dream can still come.

श्रोताओं, अब प्रस्तुत है आज का दिन। इतिहास के पन्नों में दर्ज हर तारीख की अपनी एक कहानी है। आज हम जानेंगे ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में जो जुड़ी है 22 अगस्त से। तो चलिए शुरू करते हैं। आज ही के दिन 1639 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई, जिसे उस समय मद्रास कहा जाता था, उसकी स्थापना की थी। आज के दिन 1848 में अमेरिका ने न्यू मैक्सिको पर अपना अधिकार स्थापित किया था। आज के दिन 1849 में इतिहास का पहला हवाई हमला हुआ। ऑस्ट्रेलिया ने इटली के शहर वेनिस पर चालक रहित गुब्बारों से जरिए हमला किया था। 1851 में ऑस्ट्रेलिया में सोने की खानों वाले क्षेत्र की खोज हुई आज के दिन। महात्मा गांधी ने नेटल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की थी आज के दिन 1894 में।

1910 में आजी के दिन जापान ने 5 वर्ष तक कोरिया को अपने संरक्षण में रखने के बाद उस पर कब्जा कर लिया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने विदेशी वस्त्रों की होली जलाकर स्वदेशी का संदेश दिया था आज के दिन 1921 में। 2012 में आज के दिन प्रणब मुखर्जी ने भारत के 13वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी। 2017 में आज के दिन सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में 3 तलाक तलाक-ए-बिद्दत को गैर कानूनी घोषित किया था।

अब जानते हैं 22 अगस्त को जन्मे प्रमुख व्यक्तियों के नाम। साल 1924 में प्रसिद्ध हिंदी व्यंगकार और लेखक हरिशंकर परसाई का जन्म हुआ था। 1955 में प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता और राजनीतिज्ञ चिरंजीवी का जन्म हुआ। 1935 में काशी के प्रख्यात विद्वान रेवा प्रसाद द्विवेदी का जन्म हुआ था। आज के दिन 1877 में भारत के प्रसिद्ध कलामर्ज और चिंतक आनंद कुमार स्वामी का जन्म हुआ था।

1919 में आज के दिन प्रसिद्ध कवि और नाटककार गिरिराज कुमार माथुर का जन्म हुआ था। प्रसिद्ध अभिनेता, निर्देशक और नाटककार शंभू मित्रा का जन्म आज के दिन 1915 में हुआ था।

1934 में भारतीय राजनीतिज्ञ और 11वीं लोकसभा के सदस्य इलियास आजमी का जन्म हुआ था। अब जानते हैं 22 अगस्त को हुए निधन के बारे में। 2022 में पूर्व भारतीय फुटबॉलर सैयद सहित का हकीम का निधन हुआ था। आज के दिन 2018 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ गुरुदास कामत का निधन हुआ। मणिपुर के पूर्व छठे मुख्यमंत्री श्रीधंग कोसिंग का निधन आज के दिन 2017 में हुआ था।

2014 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रसिद्ध कन्नड़ इतिहासकार, आलोचक और शिक्षाविद यूआर अनंतमूर्ति का निधन हुआ था। 1993 में कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता आर गुड्डू राव का निधन हुआ था। आज के दिन 1959 में भारतीय न्यायाधीश और असम तथा ओडिशा के पूर्व राज्यपाल सैयद फजल अली का निधन हुआ था। भारत के पहले गवर्नर जनरल वारन हेस्टिंग्स का निधन आज के दिन 1818 में हुआ था।

श्रोताओं, ये थी 22 अगस्त से जुड़ी कुछ ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में जानकारी। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का हफलों केंद्र है। चलिए अब सुनते हैं कुछ फिल्मी गीत।

तुमसे मिलके मैंने जाना ये प्यार भी अजीब चीज है। इंसान खुद को भूल जाता है, ऐसा क्यों होता है?

0: हे, रिलैक्स।
1: तुम्हें देखता हूँ तो लगता है कोई ऐसा भी मेरे पास तो है, अरे जिसको मेरी तन्हाई का एहसास तो है।

0: आप आनंद ले रहे थे कुछ फिल्मी गीतों का। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 MHz पर ये आकाशवाणी का हफलों केंद्र है।
1: आपके गीत दोस्तों एफएम 100.2 MHz पर आकाशवाणी हाफलोंग आपके लिए पेश करता है आपका प्यारा प्रोग्राम आपके गीत हर मंगलवार रात के 9 बजे यानी कि एवरी ट्यूसडे एट 9 PM। इस प्रोग्राम में हम आपको सुनवाते हैं आप ही के रिक्वेस्ट सॉन्ग। दोस्तों आप अपनी पसंद का कोई भी हिंदी फिल्म सॉन्ग सुनना चाहें तो हमें SMS या फिर WhatsApp के जरिए अपना रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। SMS या फिर WhatsApp करने के लिए उठाइए अपना मोबाइल फोन, टाइप कीजिए गाने के बोल, फिल्म का नाम, साथ ही अपना और अपने दोस्तों का नाम और मैसेज को भेज दें इस नंबर पर 9435700596। अपना पता जरूर लिखें, हमें आपके रिक्वेस्ट का रहेगा बेसब्री से इंतजार।

दोस्तों अब प्रस्तुत है आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम बीट्स ऑफ हार्ट और मैं हूं आपकी दोस्त सावित्री। संगीत कुछ लोगों के लिए सिर्फ धुन है, लेकिन हमारे लिए संगीत एक एहसास है। कभी कोई गीत चेहरे पर मुस्कान ले आता है तो कभी कोई धुन हमें किसी पुराने लम्हों में ले जाती है। जिंदगी के भागदौड़ के बीच आज कुछ पल सिर्फ अपने लिए निकालिए और जुड़ जाइए हमारे साथ, क्योंकि अगले कुछ मिनट होंगे संगीत, यादों और खूबसूरत एहसासों के नाम। तो चलिए आज के इस संगीतमय सफर की शुरुआत करते हैं एक खूबसूरत गीत के साथ।

बहुत ही खूबसूरत गीत था और शायद यही तो संगीत की खासियत है, बिना कुछ कहे भी ये हमारे दिल की बहुत सारी बातें कह जाती है। कभी आपने गौर किया है कुछ गाने पहली बार सुनकर ही अपने से कुछ क्यों लगते हैं? शायद इसीलिए क्योंकि उनमें कहीं ना कहीं हमारी अपनी कहानी छुपी होती है। तो चलिए।

कहते हैं यादें पुरानी हो या नई, संगीत उन्हें हमेशा अपने साथ संभाल कर रखता है। एक गीत सुनते ही हमें कोई अपना याद आ जाता है, कोई खास जगह याद आ जाती है, या फिर जिंदगी का कोई खूबसूरत पल आंखों के सामने आ जाता है। तो अगर आपके पास भी किसी गीत से जुड़ी ऐसी ही कोई प्यारी याद है तो उसे आज जरूर याद कीजिए और सुनिए अगला गीत।

आप सुन रहे हैं बिट्स ऑफ हर्ट और मैं हूँ सावित्री। दोस्तों, ज़िंदगी में हर दिन एक जैसा नहीं होता। कभी दिन मुस्कुराहटों से भरा होता है तो कभी थोड़ी मुश्किल भी। लेकिन एक अच्छी धुन कभी कभी हमारे पूरे दिन का मूड बदल देती है। तो कुछ पल परेशानियों को किनारे रखिए, चेहरे पर मुस्कान लाइए और संगीत के साथ आगे बढ़ते हैं।

संगीत की दुनिया भी कितनी खूबसूरत है ना। कुछ गीत हमें प्यार करना सिखाते हैं, कुछ इंतज़ार, कुछ हमें बीते हुए कल की याद दिलाते हैं और कुछ आने वाले कल के लिए उम्मीद देती है। और इसी उम्मीद और खूबसूरत एहसास के साथ अब बारी है अगले गीत की।

इसी गीत के साथ हमारे आज के इस खूबसूरत संगीत में सफ़र का वक्त हो चला है ख़त्म होने का। उम्मीद है बीट्स ऑफ हार्ट का ये सफ़र आपको पसंद आया होगा। मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए और अपने दिल की धड़कनों को हमेशा संगीत से सजग रखिए। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 MHz पर ये आकाशवाणी का हफलों केंद्र है। अभी आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार प्रभात।

0: followed by Morning News in English at 8:15 a.m. Thanks for tuning in. Have a superb day.
1: Namaskar.
2: नमस्कार आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा सुधार कोई मजबूरी नहीं बल्कि सरकार की प्रतिबद्धता और दृढ़ विश्वास है कहा सरकार की नीतियां लोगों के हित और देश के विकास को ध्यान में रखकर बनाई गईं गृहमंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए 1129 एकड़ जमीन देने के राज्य सरकार के फैसले की सराहना की भारत और नेपाल ने सीमा प्रबंधन और सुरक्षा में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों ने पर्यटन एआई और सुविधाजनक यात्रा पर केंद्रित जयपुर घोषणा पत्र को स्वीकृति दी विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के महिला डबल्स सेमीफाइनल में आज भारत की त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद का मुकाबला चीन की शीर्ष वरीयता प्राप्त जोड़ी से और अम्स्टरडैम में पुरुष हॉकी विश्व कप के दूसरे चरण में आज शाम भारत का सामना मेजबान नीदरलैंड से होगा अब समाचार विस्तार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सुधार उनकी सरकार के लिए मजबूरी नहीं बल्कि प्रतिबद्धता है उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियां लोगों के हित और देश के विकास को ध्यान में रखकर बनाई जा रही हैं नई दिल्ली में इकोनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड लीडर्स फोरम में प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार नियम बदलने के साथ नियम बनाने की सोच भी बदल रही है उन्होंने कहा कि भारत अब उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना के माध्यम से उद्योग और रोजगार के नए अवसर सृजित कर रहा है प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक स्तर पर संसाधनों को लेकर बढ़ता तनाव और दुनिया भर में

0: एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। लाल किला से दिए गए स्वतंत्रता दिवस संबोधन का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के विकास के लिए 7 प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इनमें विनिर्माण, कृषि और खाद्य प्रसंस्करण, तकनीक और नवाचार, हरित अर्थव्यवस्था और समुद्री अर्थव्यवस्था शामिल हैं।
1: 15 अगस्त को मैंने लाल किले से सप्तधारा की, सप्त शक्तियों की बात की है और इसलिए भारत आज पॉलिसी लेवल पर नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स कर रहा ताकि हमारा फ्यूचर सुरक्षित हो, गवर्नेंस पर रिफॉर्म्स कर रहा है, ईज ऑफ लिविंग के लिए रिफॉर्म्स कर रहा है।
0: गृहमंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल और सशस्त्र सीमा बल को 1129 एकड़ जमीन देने के राज्य सरकार के फैसले की सराहना की है। सिलीगुड़ी में एक कार्यक्रम में श्री शाह ने कहा कि घुसपैठ रोकने और देश की सुरक्षा के लिए सीमा पर बाड़ लगाना जरूरी है।
2: सरकार के गठन के 45 दिन के भीतर 1129 एकड़ भूमि बीएसएफ और एसएसबी के लिए शुभेंदु जी ने दे दिया, कुछ 29 एकड़ बाकी बचा है। ये तत्परता जो है वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री नाते नहीं है, उनको मालूम है जब तक घुसपैठ नहीं रोकती ना पश्चिम बंगाल सुरक्षित रह सकता है ना भारत सुरक्षित रह सकता।
0: गृहमंत्री ने अवैध प्रवासियों की पहचान, उन्हें हटाने और वापस भेजने की कार्रवाई जारी रखने की बात कही। श्री शाह ने सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे चिकन नेक भी कहा जाता है, उसे पूर्वोत्तर की सुरक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण बताया। गृहमंत्री ने 3 नए आपराधिक कानूनों पर 6 दिन की जागरूकता प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया। श्री शाह ने कहा कि मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली सरकार ने सत्ता संभालने के 3 दिन के भीतर 3 नए आपराधिक कानून लागू कर अपना वादा पूरा किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत और नेपाल ने सीमा प्रबंधन और सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। देहरादून में हुई भारत नेपाल संयुक्त कार्यसमूह की 14वीं बैठक में दोनों देशों ने आपसी सहयोग के विभिन्न मुद्दों की समीक्षा की। एक रिपोर्ट।
3: चर्चा के दौरान सीमा पार अपराधों और आपराधिक गतिविधियों से निपटने के उपायों, सीमावर्ती बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और प्रभावी ढंग से उपयोग करने, एकीकृत जांच चौकी, सड़क और रेल नेटवर्क पर बात हुई। दोनों पक्षों ने अतिक्रमण हटाने और सीमाओं के रखरखाव पर भी चर्चा की। दोनों देशों ने विभिन्न क्षेत्रों में संस्थागत और क्षमता विकास को मजबूत करने पर विचार विमर्श किया और इन क्षेत्रों में सहयोग जारी रखने पर सहमति व्यक्त की। दोनों पक्षों ने नेपाल में होने संयुक्त कार्य समूह की अगली बैठक की तारीख पर भी सहमति जताई। समाचार कक्ष से जसपाल कौर।
0: भारत की अध्यक्षता में जयपुर में ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक जयपुर घोषणा पत्र को सर्वसम्मति से मंजूरी के साथ कल संपन्न हो गई। घोषणा पत्र में ब्रिक्स देशों के बीच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पर्यावरण अनुकूल पर्यटन, कौशल विकास और सुविधाजनक यात्रा जैसे क्षेत्रों पर बल दिया गया है। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने की। उन्होंने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य में पर्यटन की महत्वपूर्ण भूमिका होगी।
4: एक ऐसा पर्यटन का भविष्य जो अधिक रेजिलिएंट हो, जो इनोवेशंस को अपनाए और उसके साथ साथ में सस्टेनेबिलिटी की आधारशिला का निर्माण करे, क्योंकि भारत के लिए पर्यटन केवल मॉन्यूमेंट्स की विजिट तक सीमित नहीं, अभी तो हमारी संस्कृति को जानने, हमारी संस्कृति की पहचान कराने का और इस तरह का अनुभव कराने का एक सशक्त माध्यम भी है, जिसके माध्यम को हम लोग अपनी संस्कृति और सांस्कृतिक विविधता के साथ में जोड़ सकते हैं।
0: भारत की मेजबानी में आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में ब्रिक्स युवा मंत्रियों और खेल मंत्रियों की बैठक आज से शुरू होगी। ब्रिक्स युवा कार्य मंत्रियों की बैठक आज होगी, जबकि ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक कल आयोजित की जाएगी। बैठकों की अध्यक्षता युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया करेंगे। राज्य मंत्री रक्षा खड़से भी इसमें शामिल होंगी। युवा कार्य मंत्रियों की बैठक में युवा विकास, शिक्षा, कौशल, रोजगार, उद्यमिता जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। वहीं खेल मंत्रियों की बैठक में 11 ब्रिक्स देशों के मंत्री और प्रतिनिधि खेलों में आपसी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। सरकार ने कहा है कि देश में चीनी का पर्याप्त भंडार है।

0: और घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए चीनी की कोई कमी नहीं है। उपभोक्ता मामले, खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने बताया कि चीनी की कीमत पिछले कुछ हफ्तों में 48 रुपये से बढ़कर करीब 55 रुपये प्रति किलो हो गई है और सरकार लगातार कीमतों पर नजर रख रही है। कीमत पर नियंत्रण के लिए सरकार ने चीनी कारोबारियों पर 400 टन की भंडारण सीमा लगाई है। ये सीमा 1 अगस्त से 30 नवंबर तक लागू है। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने भारत की सांस्कृतिक जड़ों को सुरक्षित रखने की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि संस्कृति देश को एकजुट करने वाली मजबूत कड़ी है। नई दिल्ली में कल अंतर हृदय कनेक्ट मल्हार कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति ने युवाओं, विशेष रूप से जेंजी से धैर्य और दायित्व के साथ व्यवस्था को बेहतर और मजबूत बनाने में योगदान देने की अपील की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 5 सितंबर को नई दिल्ली में 48 स्कूली शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करेंगे। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार इन शिक्षकों का चयन जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर 3 चरणों की प्रक्रिया के जरिए किया गया है। पुरस्कार पाने वाले शिक्षक 27 राज्यों, 7 केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्र सरकार के 6 संगठनों से हैं। इनमें 26 पुरुष और 22 महिला शिक्षक शामिल हैं। ये कार्यक्रम दूरदर्शन और शिक्षा मंत्रालय के स्वयं प्रभा चैनल पर सीधा प्रसारित किया जाएगा। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर ने बांग्लादेश के 23वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। उन्हें संसद के उपाध्यक्ष कैसर कमाल ने पद की शपथ दिलाई। आलमगीर गुरुवार को राष्ट्रपति चुनाव में 255 वोट हासिल कर निर्वाचित हुए हैं। उन्होंने विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार ओली अहमद को हराया, जिन्हें 88 वोट मिले। और अब खेल खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार।
1: भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने लुजान डायमंड लीग में रजत पदक जीत लिया है। उन्होंने 88.05 मीटर तक भाला फेंक कर दूसरा स्थान हासिल किया। नीरज श्रीलंका के रमेश थरंगा पथिराज से केवल 9 सेंटीमीटर पीछे रहे। रमेश ने 88.14 मीटर तक भाला फेंक कर पहला स्थान हासिल किया। उधर कुश्ती में भारत की महिला पहलवान काजल धोचक ने स्लोवाकिया में अंडर-20 कुश्ती विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीत लिया है। 76 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में काजल ने चीन की जिंगरू सन को 7-0 से हराया। इधर BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के महिला डबल सेमीफाइनल में आज भारत की त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी का सामना शीर्ष वरीयता प्राप्त चीन की लियू शेंगशू और टेन निंग से होगा। क्वार्टर फाइनल में कल त्रिशा और गायत्री ने चीन की जिया यी फैन और झांग शू शियान को 16-21, 21-15, 21-13 से हराया। इस जीत से त्रिशा और गायत्री ने प्रतियोगिता में भारत का एक पदक तय कर लिया है। उधर अमस्टल फैन में FIH महिला हॉकी विश्व कप के पहले मैच में भारतीय टीम को कल नीदरलैंड से 0-2 से हार का सामना करना पड़ा। और पुरुष हॉकी विश्व कप के दूसरे चरण में आज भारत का सामना मेजबान नीदरलैंड से होगा। मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। पाकिस्तान पर 5-3 की शानदार जीत के बाद भारत ने पूल डी में दूसरा स्थान हासिल किया है।
0: मौसम विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार बारिश की आशंका व्यक्त की है। असम, सिक्किम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा सहित देश के पूर्वोत्तर हिस्सों में भी तेज बारिश की संभावना है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों, उत्तराखंड और पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी इसी तरह का मौसम रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने आंध्र प्रदेश, उत्तरी कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में आज गरज के साथ वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। भारत ने 22 भारतीय नाविकों के साथ 2 वाणिज्यिक जहाजों के अपहरण का मामला सोमालिया के अधिकारियों के सामने उठाया है। भारतीय उच्चायोग के अनुसार सभी भारतीय नाविक सुरक्षित बताए जा रहे हैं। भारत ने कहा है कि वो अपने नाविकों की सुरक्षा और कल्याण को सबसे ज्यादा महत्व देता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि होर्मुज जलडमरू मध्य वर्तमान में अमेरिका के नियंत्रण में है। उन्होंने इस बात पर भी बल दिया है कि ईरान को कभी भी परमाणु हथियार विकसित करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। दक्षिण कैरोलिना में श्री ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ने ईरान को परमाणु हथियार प्राप्त करने से रोक दिया है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं देवेंद्र त्रिपाठी।
2: धन्यवाद कनक। दिल्ली में स्वाइन फ्लू का संक्रमण, नवभारत टाइम्स और दैनिक जागरण की पहली खबर है। दैनिक जागरण लिखता है राज्य

0: राजधानी में एक दिन में स्वाइन फ्लू के 114 मरीज मिले। नवभारत टाइम्स ने लिखा है, कुल मामले पिछले साल से 7 से 8 गुना बढ़े, केंद्र ने स्वाइन फ्लू पर दिल्ली के अस्पतालों को किया अलर्ट। हिंदुस्तान ने लिखा है, फेफड़े हो रहे प्रभावित। चीनी की बढ़ती कीमत पर रोक लगाने के लिए सरकार द्वारा 15 दिन की भंडारण सीमा तय करने पर जनसत्ता ने अपने संपादकीय में चीनी की कड़वाहट शीर्षक से लिखा है, भंडारण सीमा का उद्देश्य जमाखोरी रोकना है तो ये स्वागत योग्य, मगर सरकार को ये भी सुनिश्चित करना होगा कि छोटे कारोबारियों पर नियमों का अनावश्यक बोझ न पड़े। लद्दाख में ग्रेविटी आधारित डायवर्जन से ग्लेशियर का पानी इगुफे सिंचाई नहर की ओर मोड़कर खेतों तक पहुंचाने की योजना दैनिक भास्कर के प्रथम पृष्ठ पर है। पत्र लिखता है, 9 करोड़ लीटर पानी अब भारत को सींचेगा। यमन के पास समुद्री लुटेरों द्वारा 2 जहाजों को अगवा किए जाने की खबर भी अखबारों में है। हिंदुस्तान लिखता है, 22 भारतीय नाविकों को बंधक बनाया, विदेश मंत्रालय ने कहा सभी भारतीय सुरक्षित। सिविल जज भर्ती योग्यता नियमों में बदलाव की खबर दैनिक भास्कर, पंजाब केसरी सहित कई अखबारों में है। नवभारत टाइम्स लिखता है, 1 साल की वकालत पर अब बन सकेंगे जज। राजस्थान पत्रिका ने विदेश कारोबार में मोदी सरकार का बड़ा कदम शीर्षक से लिखा है, अब डॉलर ही नहीं रुपए में भुगतान ले सकेंगे निर्यातक। पत्र लिखता है, इससे अंतर्राष्ट्रीय कारोबार में रुपए का रुतबा बढ़ेगा। दिल्ली मास्टर प्लान 2047 में दिल्ली में खाली सरकारी मकानों को किराए के घर में बदलने की योजना नवभारत टाइम्स के पहले पन्ने पर है। और अमर उजाला ने अपने अंतिम पृष्ठ पर बताया है, पाकिस्तान में दिल्ली की चाट और ढाका में खूब पसंद की जा रही बनारसी साड़ियां, न्यूयॉर्क से कराची तक भारतीय व्यंजनों का क्रेज।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सुधार कोई मजबूरी नहीं बल्कि सरकार की प्रतिबद्धता और दृढ़ विश्वास है। कहा, सरकार की नीतियां लोगों के हित और देश के विकास को ध्यान में रखकर बनाई गई। गृहमंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए 1129 एकड़ जमीन देने के राज्य सरकार के फैसले की सराहना की। भारत और नेपाल ने सीमा प्रबंधन और सुरक्षा में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों ने पर्यटन, एआई और सुविधाजनक यात्रा पर केंद्रित जयपुर घोषणा पत्र को स्वीकृति दी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार प्रभात। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का आप लोग केंद्र है। चलिए अब सुनते हैं कुछ देशभक्ति गीत।

आप आनंद ले रहे थे कुछ देशभक्ति गीतों का। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 14.2 MHz पर ये आकाशवाणी का हफलोंग केंद्र है। अभी आप सुनेंगे आकाशवाणी के शिलोंग केंद्र से नॉट इज न्यूज़।

0: आप सुन रहे थे आकाशवाणी के शिलोंग केंद्र से नोटिस न्यूज। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का हफलोंग केंद्र है।
1: हेलो हफलोंग, आप सभी श्रोताओं के लिए आकाशवाणी हफलोंग पेश करता है बहुत ही खास फोन इन प्रोग्राम हेलो हफलोंग।
2: हर शनिवार और रविवार को रात के 9 बजे, यानी कि एवरी सैटरडे एंड संडे एट 9 PM।
1: इस प्रोग्राम में हम आपसे बातें करते हैं और आपको आपका फेवरेट हिंदी फिल्म सॉन्ग भी सुनवाते हैं, और एक खास बात, आप अपना पसंदीदा गाना किसी को डेडिकेट भी कर सकते हैं। दोस्तों, कॉल करने के लिए नोट कीजिए हमारा नंबर है 9435700596। कॉल करने का समय है हर बुधवार को दिन के 1 बजे से लेकर 2 बजे के बीच, यानी कि एवरी वेडनेसडे बिटवीन 1 to 2 PM ओनली। आपके कॉल

आप आनंद ले रहे थे कार्यक्रम सुरों की रंगोली का, जिसमें आज आपने सुने यसुदास के कुछ खूबसूरत गीत। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का हाफलोंग केंद्र है। अभी आप सुनेंगे आकाशवाणी के गुवाहाटी केंद्र से पुआरांचलिक बातोरी।

रांखोल बुलबुल और साथियों की आवाज़ में आप सुन रहे थे रांखोल भक्ति गीत। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का हफलों केंद्र है। अब प्रस्तुत है जयंती कार्यक्रम, जिसमें आज सुनिए जयंती भक्ति गीत मोरालिटी और साथियों की आवाज़ में।

मोरालिटी के और साथियों की आवाज़ में आप सुन रहे थे जयंती भक्ति गीत फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का हाफलोंग केंद्र है। स्थानीय भाषाओं के कार्यक्रम के अंत में अभी सुनेंगे बेतिया आधुनिक गीत एल आर कस्परा नामपुई और साथियों से।

0: आप सुन रहे थे बेती आधुनिक गीत, गायक कलाकार थे एल आर कस्परा नामपुई और उनके साथी। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 14.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का हाफलोंग केंद्र है। अब प्रस्तुत है आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से प्रसारित कार्यक्रम विविध भारती।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती।

0: दोस्तों नमस्कार। गीतों भरी कहानी में आज प्रस्तुत है उर्मिला शिरीष की लिखी कहानी तितलियों के देश में। वाचक स्वर ममता सिंह का।
1: चाचा आपको बुला रहे हैं। क्यों? कहते हैं भले ही दो दिन के लिए आ जाओ पर आपका आना जरूरी है। अचानक? अचानक कैसे आऊं? घर की व्यवस्था जमानी होगी, रिजर्वेशन करवाना होगा, फ्लाइट के टिकट बहुत महंगी मिलेगी। अच्छा मेरी बात जरा चाचा से करवा दो। वो बात कर पाते तब ना। ओह, मीनाक्षी सोच में पड़ गई। चाचा ने बुलाया है तो जरूर कोई बात होगी, पर ऐसी क्या बात है जिसके लिए चाचा अचानक बुला रहे हैं? हो सकता है कोई ऐसी बात हो जो चाचा सिर्फ उसी को बताना चाह रहे हों, क्योंकि बचपन से ही वो चाचा के बहुत करीब रही है। सब भाई बहनों के बीच चाचा उसी को सबसे ज्यादा स्नेह करते थे। वो भी चाचा को अपने पिता से ज्यादा मान सम्मान और प्यार देती थी, उन्हीं से सलाह लेती थी। कोई और बात यानी उनके स्वास्थ्य से संबंधित तो नहीं? क्योंकि पिछले वर्ष से वो लगातार बीमार चल रहे थे। बीमारी की वजह से उनका बाहर निकलना बंद हो गया था। बस अपने रूम में लेटे लेटे वे रेडियो सुनते रहते थे। चाची वहीं उनका खाना पानी और बाकी चीजें मसलन पेपर पत्रिकाएं रख देती थी। चाची ने बताया कि आजकल चाचा को अजीब से दृश्य दिखाई देते हैं। उनकी हालत देखकर चिंता हो रही है। तुम आ ही जाओ, उनको बहुत कष्ट है। उसने रिजर्वेशन के लिए या तत्काल में टिकट बनवाने के लिए एजेंट को बोला पर कोई सीट खाली न थी। कोई ड्राइवर मिल जाए तो मैं अपनी गाड़ी से आने की कोशिश करती हूँ, मीनाक्षी ने मैसेज किया। फ्लाइट से आ जाओ, चाची का मैसेज था। डायरेक्ट फ्लाइट भी तो नहीं है। सुबह 3 बजे ही मीनाक्षी की नींद खुल गई। रास्ते के लिए खाने पीने का सामान रख कर वो तैयार हो गई। उसने अनुमान लगाया कि यदि सब ठीक ठाक रहा तो रात तक पहुंच ही जाऊंगी। चाची का मैसेज था, टैक्सी से ही आ जाओ। नहीं नहीं, मैं गाड़ी से आ रही हूँ। गाड़ी और ड्राइवर पहचान वालों की है, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है, मीनाक्षी ने चाची को तसल्ली दी। चाची की घबराहट से वो भी चिंतित हो उठी।

गाड़ी में बैठते ही मीनाक्षी सोचने लगी, हे ईश्वर सब ठीक रखना। सड़क के दोनों ओर काफी भीड़ थी। फल सब्जी बेचने वालों के ठेले लाइन से लगे थे। कुछ बूढ़ी महिलाएं सड़क के किनारे डलिया में अमरूद लेकर बैठी थीं। अमरूद का ये सीजन मीनाक्षी को यूं भी पसंद था, क्योंकि हरे पीले और अंदर से हल्के से लाल गुलाबी अमरूदों को देखकर उसकी तबीयत खुश हो जाया करती थी। उसे याद आया, गांव के पास ही अमरूद का बगीचा था। चाचा उन अमरूद को ठेके पर उठा देते थे और एक दो पेड़ परिवार और रिश्तेदारों के लिए बचा लेते थे। अमरूद के पेड़ों पर हजारों तोतों का ठिकाना रहता था। वे जितने अमरूद खाते थे उससे ज्यादा अधखाए अमरूद नीचे गिरा देते थे। उसे याद है, एक बार रखवाली करने वाले लड़के ने गुलेल से एक तोते को घायल कर दिया था। तब चाचा ने नाराज और दुखी होकर उसको काम से ही निकाल दिया था। तोते को घर में लाकर उसका इलाज करवाया गया था और चाचा ने उसे अपने पास रख लिया था। चाचा उसे प्यार से बेटू बोलते थे। बेटू भी कितना बोलता था, लड़ता था, प्यार जताता था। बाद में वो बगीचा चाचा ने बेच दिया था, क्योंकि वे उतना समय नहीं दे पाते थे, पर जिसको बेचा था वो भी अमरूद की पेटियां भिजवाता रहता था। चाचा के दो ही शौक थे, जमीन खरीदना, वो भी बंजर जमीन, शहर से दूर, फिर उसको उपजाऊ बनाने के लिए सैकड़ों उपाय निकालना। उनके सुबह के 4 घंटे इन्हीं कामों में निकलते थे। फिर बाद में उसने सुना कि चाचा ने अपने खेतों में 500 सीताफल के पेड़ लगवाए थे, पर वे नहीं लगे क्योंकि जमीन उनके अनुरूप नहीं थी। चाचा ने जहां से पेड़ मंगवाए थे वे स्वयं वहां गए। वहां से पूरे 8 विशेषज्ञों को लेकर आए थे और उनकी जिद कि दोबारा फिर से वही पेड़ लगवाएं। परिवार वाले परेशान, कितना पैसा बर्बाद करते हैं, बेचो जमीन और खेत, आराम से रहो, पर नहीं। चाचा का मन तो वहीं रमता। बीमारी के 1 माह बाद जब वे उन खेतों पर गए तो देखा वहां तो मजदूरों ने पूरी गृहस्थी बसा रखी है और कुत्तों का परिवार बाकायदा पला हुआ है। चाचा, चाचा, मीनाक्षी के कंठ से प्रार्थना के स्वर निकले, हे प्रभु, हे प्रभु, चाचा को स्वस्थ रखना।

कहाँ तक पहुंची? कोई दिक्कत तो नहीं है? चाची और बहन के कई मैसेज पड़े थे। अरे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे आराम से आ रही हूं, उसने मैसेज लिखा। शहर से बाहर निकलकर ठंडी हवा में सांस लेना मीनाक्षी को अच्छा लग रहा था। हरे भरे खेतों के बीच नए बनते मकानों को देखकर उसे कुछ नहीं अच्छा लगा। हाँ, पेड़ों की नई नई कतार को देखकर उसका मन अलबत्ता खुश हो उठा। वाह, मौसम तो अच्छा है जी। ड्राइवर ने रेडियो की आवाज कम की। क्या तुम अक्सर ही बाहर जाते हो? जी मैडम, जब जैसी राइड मिल जाए चला जाता हूँ, ड्राइवर बोला। तुम्हें क्या फर्क दिखता है? बस मैडम, जहाँ रोड ठीक है वहाँ तो आराम से गाड़ी चली जाती है, लेकिन जहाँ रोड कट गए हैं या नया निर्माण हो रहा है वहाँ तो बहुत परेशानी होती है। कहाँ के रहने वाले हो? यही गांव में रहता हूँ। एक दो गाय भैंसे हैं, एक एकड़ का खेत है, उसमें कुछ न कुछ उगाते रहते हैं। घर का अनाज और सब्जियां हो जाती हैं, बाहर तो काम कभी कभार ही मिलता है। माता पिता को भी चिंता लगी रहती है। तुम्हें क्या लगता है, अपने काम में ज्यादा पैसा मिल जाता है? हाँ वो तो है मैडम, पर कई बार कुदरत की मार पड़ जाती है। बाढ़, ओला या पाला से खड़ी खड़ी फसल भी मर जाती है, दाने काले पड़ जाते हैं। ओला और बेमौसम बारिश पर भला किसका वश चलता है, ड्राइवर बोला। अब तक बादलों ने सूरज को ढांक लिया था। धूप की जगह धूसर रंग चारों तरफ दिखाई दे रहा था। सड़कों के दोनों तरफ हरे भरे खेत थे। वाह, कितना सुंदर मौसम हो गया है, मीनाक्षी ने फिर दोहराया, जैसे उसकी यात्रा का सहयात्री ये मौसम ही हो। मैडम, हम लोग तो आज भी कोशिश करते हैं कि शुद्ध हवा में रहें, शुद्ध पानी पिए। हमारे बोर में इतना पानी आता है कि आसपास के लोग तक पानी लेने आते हैं। मेरी माँ भी मौसम की बहुत बात करती हैं। उन्हें अपने गांव का मौसम अक्सर याद आता है, आप ही की तरह, ड्राइवर बोला। अच्छा, आप यकीन करेंगे मैडम, हमारे खेत के कुएं का पानी हरे रंग का है। अच्छा, कैसे? अरे मैडम, उसके आसपास बहुत सारे पेड़ लगे हैं ना, उनकी पत्तियां उसमें गिरती रहती हैं, तो उसका स्वाद भी अलग है, एकदम शुद्ध हर्बल वाटर की तरह। वाह भाई, तुम्हारी बातें तो बड़ी दिलचस्प हैं। हल्की सी बूंदाबांदी शुरू हो गई थी। इन दो तीन महीनों में बिना मौसम की बरसात बड़ी नुकसानदायक होती है। देखिए ना, फसल पकने को है, अगर ज्यादा पानी गिर गया तो फसल बर्बाद हो जाएगी। वो सोच में पड़ गई। जीवन भी तो किसी फसल की तरह ही होता है, और चाचा तो जीवन में फसलों को ही जीते रहे हैं। चाचा पढ़े लिखे हैं, बाकायदा PhD, कुछ साल नौकरी की, पर नौकरी करते हुए वे ज्यादातर वक्त अपने खेतों पर गुजारते थे। चाचा के साथ शादी से पहले वो भी उनके खेतों पर और गांव जाया करती थी। हाँ, जब उन्होंने शहर में जमीन लेकर फार्म हाउस बनाया था तब चाचा ज्यादातर काम फोन पर ही करवा लिया करते थे। उनके खेत पर होने वाली पार्टी का सबको इंतजार रहता था। चारों तरफ लगे आम के वृक्ष, खेतों में लगी सब्जियां, बीच में बना छोटा सा सरोवर और कतार में लगे बेरों के पेड़ चाचा आने वाले दोस्तों को उपहार में क्या दिया करते थे। 5 किलो मटर, 2 किलो बेर और 1 थैला अमरूद, यानी हरेक के लिए 3-3 थैलियां गिनकर रख दी जाती थी। चाचा के दोस्त हंसते, यार ये बढ़िया है, नींबू पानी पिलाओ, घर की सब्जियां खिलाओ, खेतों में घुमाओ, और गिफ्ट भी अनोखी, वो भी ऑर्गेनिक, क्या बात है। मीनाक्षी के होठों पर मुस्कुराहट थी, पर आंखों में आंसू छलक आए। उसने साइड में गाड़ी रोकने को कहा, पानी पिया, फिर थर्मस में से चाय निकाली। बारिश तेज होने के आसार नजर आ रहे थे। थोड़ा रुक जाते हैं, बिजली गिरने का अंदेशा भी तो रहता है, मीनाक्षी ने ड्राइवर से कहा। जी मैडम, बारिश भी अच्छी लग रही है ना, ड्राइवर बोला। मीनाक्षी को लग रहा था कब वो चाचा के पास पहुंचे। ये रास्ते इतने लंबे क्यों लग रहे हैं? समय इतना भारी और ठहरा हुआ क्यों लग रहा है? ढेर सारी बातें उसके जहन में आ जा रही थीं। बचपन जो किसी बेहद खूबसूरत परिंदों के देश जैसा लगता था, जिसमें सैकड़ों परिंदे होते थे, जानवर होते थे, रंग बिरंगे फूल खिले होते थे, छोटे छोटे कुएं, बावड़ी और नहरें होती थीं। आज भी वो किसी को बताती है तो सबको लगता है कि वो किताबी कहानियां सुना रही है।

पर वो उसका असली बचपन था। बाद के वर्षों में पेड़ कम होते गए, फसलें बिगड़ती गईं, बगीचों के पेड़ उजड़ते गए और उसके आसपास मंडराने वाली तितलियां भी स्वप्न की तरह होती गईं।

चले मैडम, ड्राइवर ने कहा तो उसका ध्यान भंग हुआ। बारिश तो मिलेगी पर रोड अच्छा है, आराम से चलते हैं, जहां तेज बारिश होगी वहां रुक जाएंगे। मीनाक्षी ने किसी को कुछ नहीं बताया, बेकार सबको चिंता हो जाएगी। स्कूल की पढ़ाई, फिर कॉलेज की पढ़ाई के बाद नौकरी, शादी, जिम्मेदारियां, सबने मिलकर बीच के अंतराल को जैसे खामोशियों से भरे बादल में छुपा दिया था। जीवन भी चुपचाप अपनी दिशा तय कर लेता है और हमें लगता है कि हम उसे चला रहे हैं। भीतर की आवाजें लगातार हमें पुकारती रहती हैं और मन बाहर की आवाजों को सुनते हुए भागता रहता था। हम जन्मदिन बड़े उल्लास के साथ मनाते हैं पर नहीं जानते कि एक वर्ष और चुपके से निकल गया, गिनती में एक साल और कम हो गया। चाचा, चाचा का जीवन कितना गतिशील, कितना खूबसूरत रहा है। आधी उम्र आसमान में उड़ते हुए निकल गई और आधी धरती पर काम करते हुए। मैडम, आप चाहें तो आराम कर लें, मैं सीट डाउन कर देता हूं, ड्राइवर बोला। नहीं नहीं, मैं ठीक हूं। ये आसपास की हरियाली देखने का सुख जो मिल रहा है, क्या करूं, पेड़ों और पक्षियों में जान बसती है मेरी। बचपन जिस माहौल में बीतता है वही आपके स्वभाव में रच बस जाता है। हाँ ये तो है मैडम। अब कहने को हमारे पास दो कमरे हैं पर बाहर का एरिया इतना खुला हुआ है कि शहर में कहीं जाने की इच्छा ही नहीं होती। कितनी देर में पहुंच रही हो तुम, बहन का फोन आया था। बस अभी 2 घंटे और लगेंगे, ट्रैफिक अगर न मिले तो, मीनाक्षी बोली। रात का खाना बनवा कर रखे हैं, कुछ खास बनवाएं क्या, बहन ने पूछा। नहीं नहीं, कुछ खास नहीं, बस जल्दी ही पहुंच जाए, बस जल्दी ही पहुंच जाए, उसने मन ही मन कहा। शाम की छाया पहले आसमान में, फिर पेड़ों पर, फिर धरती पर उतरती हुई अंधकार का रूप धारण कर चुकी थी। दूर कहीं एकाध लाइट दिख जाती। घना जंगल है और रोड भी सुनसान, एकाध गाड़ी आती जाती दिख जाती थी। हम सही रास्ते पर तो चल रहे हैं ना भैया? जी मैडम, मेरा देखा हुआ रास्ता है, आप चिंता न करें, थोड़ी दूरी पर ही तो एक चाय का ढाबा है। मीनाक्षी के मन में बुरे ख्याल आने लगे, यहां तक कि ड्राइवर भी अजनबी लगने लगा। पर नहीं, सब ठीक रहेगा, पेट्रोल है, स्टेपनी सही है, कोई दुर्घटना होगी ही क्यों। हाँ, फिल्मी तर्ज पर 4-6 लुटेरे आ जाएं, गाड़ी घेर लें, वो बात अलग है, जंगली जानवर तो बेचारे गाड़ियों की लाइट से ही डर जाते हैं। मीनाक्षी ने देखा दूर बिजलियां टिमटिमाती नजर आ रही थी। चाय पियोगे? जी मैडम, आप? हम भी पी लेंगे। मीनाक्षी को लगा वो लंबी अंधेरी सुरंग से बाहर निकल आई है। गांव में आधी रात को ऐसा ही अंधकार पसर जाता था, पर उस रात का मायावी रूप जैसे और निखरने लगता था। आसमान में चमकते नक्षत्रों को देखकर, चांद और उसके आसपास के नक्षत्रों को गिनते हुए मन का सारा भय दूर हो जाता था।

घर पहुंची तो रात के 11 बज चुके थे। बाहर कुछ लोग वॉक कर रहे थे। कुत्तों का पूरा समूह पेड़ों के आसपास सो रहा था। गाड़ी की आवाज सुनकर एक दो कुत्तों ने ऊंघते हुए देखा, थोड़ा सा गुर्राए, फिर अपनी जगह पर जाकर हाथ पांव पसार कर सो गए। ड्राइवर के लिए ऊपर का रूम खुलवा दिया है। चाची ने उससे गले मिलते हुए कहा, थक गई होगी ना, हाथ मुंह धो लो, खाना लगा दिया है। बाकी लोग? मीनाक्षी बोली, तुम्हारे लिए कुछ मीठा लेने गए हैं। चाचा सो गए क्या? नहीं, तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। वो दौड़कर चाचा के कमरे में गई। क्षणों तक ठिठकी। रेडियो बज रहा था। टेबल लैंप जल रही थी। साइड की रैक में किताबें रखी थी। चाचा की दवाइयां और अन्य सामान भी अलग अलग बक्सों में रखा था। चाचा, चाचा, मीनाक्षी ने धीमे से पुकारा। अरे बेटा मीनाक्षी, आ गई, कोई परेशानी तो नहीं हुई बेटा, आओ आओ। चाचा से गले मिलकर उसके आंसू निकल आए। देर तक वे उसकी पीठ पर हाथ फेरते रहे। चाचा आप ठीक है ना? कोई चिंता वाली बात तो नहीं है ना? हाँ हाँ ठीक हूँ, अभी खाना खाकर सो जाओ, सुबह बात करते हैं। चाचा का चेहरा एकदम दुबला हो गया था, उम्र का असर दिख रहा था। वैसे चाचा हमेशा इकहरे बदन के रहे हैं। दौड़ना, घूमना, व्यायाम करना और बेहद संयमित जीवन जीना। क्या हो गया चाचा को? मीनाक्षी ने चाची से पूछा। हाँ, कुछ दिनों से बेचैन है। जीवन भर काम करने वाला आदमी बिस्तर पर पड़ जाए तो बेचैनी तो होगी ना। उन्हें अपने से ज्यादा अपने खेतों की, पेड़ों की और वहां पले कुत्ते बिल्लियों की चिंता ज्यादा रहती है। क्या कहें, इतने नौकर लगे हैं, पर जब तक अपनी आंखों से खुद नहीं देख लें, उन्हें चैन ही नहीं मिलता है। चाची उसके सामने बैठी थी और उनका चेहरा भरा भरा पर कुछ उदास, चिंतित दिखाई दे रहा था। चाची को शुरू से ही ये सारे काम झंझट भरे लगते हैं, पर चाचा ने उन पर कभी दबाव भी नहीं डाला। चिराग कब आएगा? मीनाक्षी ने पूछा। अगले हफ्ते आ रहा है, लेकिन वो यहाँ स्थायी रूप से रहने वाला नहीं है। उसकी अपनी नौकरी है, दोनों बच्चे स्कूल जाने लगे हैं। चाचा की खेती बाड़ी में उसकी खास रुचि भी तो नहीं है। चाची लंबी बात करने के मूड में थी, पर मीनाक्षी को तो नींद आने लगी थी, इसलिए वो जल्द से जल्द बिस्तर पर जाना चाहती थी। फिर सुबह जल्द उठकर उसे चाचा से बात भी तो करनी है। पता नहीं चाचा क्या कहने सुनने वाले हैं, ये सोचते हुए वो कमरे में सोने चली गई। कमरा बड़ा ही कलात्मक ढंग से सजाया हुआ था। कोने में मनी प्लांट का गमला रखा हुआ था। दीवार पर चिराग और उसकी पत्नी और बच्चों के फोटो लगे हुए थे। दूसरी दीवार पर एक बड़ी सी पेंटिंग टंगी थी। खिड़की के बाहर कई तरह के फूलों और बेलों के गमले लगे हुए थे। सुबह मीनाक्षी की नींद खुली तो देखा बरामदे में चाचा कुर्सी पर बैठे हैं। वे चाय पी चुके थे और अखबार पढ़ रहे थे। उनका केयर टेकर वहीं खड़ा था। चाचा आप कैसी तबीयत है आपकी? ठीक ही है। चाचा ने चश्मा उतारा, अखबार तह करके रख दिया और सीधे बैठ गए। चाचा आप कोई बात छुपा तो नहीं रहे? किस तरह की बात? आपकी तबीयत को लेकर? अरे नहीं नहीं, मैं 79 साल का हो गया हूँ बेटा, अमर होकर थोड़ी ना आया हूँ। एक न एक दिन तो सभी को अपने अंतिम सफर पर जाना ही पड़ता है। नाश्ता करते हैं, उसने बात बदलते हुए कहा। वो अंतिम सफर की कल्पना भी नहीं कर सकती थी।

मीनाक्षी का मन अब बेचैन हो उठा। चाचा ने एकाएक क्यों बुलाया है आखिर, अब जानने की उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। चाचा, आपने फोन करवाया था ना, कोई खास बात है क्या? चाचा क्षणों तक कुछ सोचते रहे, फिर बोले, तुम अब भी वैसी ही हो जैसी बचपन में थी। हाँ चाचा, मन तो वैसा ही है। बेटा तुम्हें पता है ना, अपना अमरूद का जो बगीचा है वो हमसे छिन गया था, वो केस हम जीत गए हैं। 13 साल लग गए उस केस में। सचमुच? पर आपने तो कहा था कि बेच दिया है, मीनाक्षी बोली। इसीलिए कि हम सबको विवादों में नहीं डालना चाहते थे। तो अब वहां 4-5 आदमी रख दिए हैं, वे उसकी देखभाल कर रहे हैं। लेकिन लेकिन क्या चाचा? बगीचे से जुड़ी जो जमीन थी हमने उसे भी खरीद ली है। क्यों, क्या करेंगे उस जमीन का चाचा? वहां केवल पेड़ लगवा रहे हैं, कुछ फलदार और कुछ दूसरी तरह के। ये तो बहुत अच्छी बात है चाचा, गांव भी पास में पड़ता है। देखो बेटा, तुमने अपना जीवन गांव में बिताया है, तुम तो गांव की हवा जानती हो, उसका मूल्य भी समझती हो, और मेरा वहां से बड़ा लगाव है। बस ये सोच लो कि मेरी आत्मा वहीं पर रहती है बेटा। जी चाचा, मैं जानती हूँ, अच्छी तरह से जानती हूँ। हाँ, यहाँ के खेतों में जो पेड़ लगवाए थे वो तो नहीं लग पा रहे हैं, देखेंगे बाद में कुछ और लगवा देंगे। यहाँ उस प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है, वैसे इतना फैलावा करके रखा है कि मालूम है कि बच्चों की इन सारी चीजों में कोई रुचि नहीं है। फिर भी, चाची ने चाचा की शिकायत करते हुए कहा, चिराग की तो कोई रुचि है नहीं, सबका अपना अपना स्वभाव और प्रकृति होती है, हो सकता है कल के दिन उसका मन बदल जाए। फिलहाल मैं गांव वाले मुद्दे पर आता हूं। अगर मैंने बगीचा, वहां की जमीन दूसरों के हाथों में सौंप दी या बेच दी तो वे सब बर्बाद कर देंगे। बेटा, मैं चाहता हूं कि वहां खूबसूरत जंगल जैसा परिवेश हो, बेशक कुछ

कॉटेज रहने के लिए बनवाए जा सकते हैं। जी चाचा, आइडिया तो बड़ा अच्छा है। बेटा, तुम्हारी जिम्मेदारी बढ़ने वाली है। कैसी जिम्मेदारी? मैं निभा पाऊंगी क्या? मैंने बगीचा, उससे लगी जमीन, गांव का मकान और वहां का खेत तुम्हारे नाम कर दिया है सबकी सहमति से। चिराग कुछ नहीं करेगा, यहां की जमीन उसके नाम है चाची के साथ। बस शर्त यह है कि तुम बगीचे को बगीचा और पेड़ों को कभी भी बेचोगी और काटोगी नहीं। बेटा, मैं जानता हूं तुम ही ये चीजें बचा सकती हो, मेरे विरासत को, बच्चों की तरह पाले पोसे वृक्षों को और वहां पलने वाले पशु पक्षियों को। याद है बचपन में उस तोते को तुम ही अस्पताल ले जाती थी बेटा, तुम्हारे ही कारण वो बच पाया था और कितने सालों तक हमारे साथ रहा, याद है ना मीनाक्षी बेटा? मीनाक्षी एकटक चाचा का चेहरा देखे जा रही थी, माथे के आसपास की उभरी हुई नसें, अंदर को धसी आंखें, हाथ और पांव पर फैली उभरी नसों का जाल। तो क्या चाचा को अपना जीवन अस्ताचल की ओर जाता दिखाई दे रहा है?

चाचा, आप अच्छे खासे स्वस्थ हैं, क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं? मैं आपका काम देख लिया करूंगी, पर प्लीज

0: वसीयत असीयत का ख्याल छोड़ दीजिए चाचा, मुझे नाम से कोई मतलब नहीं है। मीनाक्षी ने चाचा का हाथ थाम कर कहा, चाचा आपकी सेवा करना मेरा धर्म है और मुझे सुख भी मिलेगा। वो भावुक होठी, मैं इस जिम्मेदारी से मुक्त होना चाहता हूं बेटा। अपनी विरासत किसी गुणी को, समझदार को और उसके प्रति लगाव रखने वाले को सौंपूंगा तो वो सुरक्षित रहेगी। मुझे मालूम है तुम्हें ये सारे काम आते हैं, तुम वहां की मिट्टी में पली बढ़ी हो, लोगों को जानती हो। मुझे विश्वास है कि तुम वहां की सारी चीजों को संभाल लोगी बेटा। सुनीता, सुनीता जरा मेरी अलमारी में से वो फाइलें ले आना, चाचा ने चाची से कहा। मीनाक्षी चाची को लेकर अचरज में डूबी थी। क्या चाची को कोई एतराज नहीं है? महिलाएं तो अपनी एक चीज तक नहीं देती और चाची एक शब्द नहीं बोल रही हैं। फिर उसे लगा कि चाची बोलेंगी भी कैसे। चाचा ने परिवार का माहौल ही ऐसा बनाकर रखा कि अपने पराये में कोई भेद नहीं। अपने बड़े भाई के जाने के बाद सारी जिम्मेदारी उन्होंने ही संभाली थी। भाभी को हमेशा सम्मान दिया, दूसरे भाई को भी उनका हिस्सा और मकान दे दिया है। सारा परिवार हर त्योहार पर एक साथ मिलता जुलता है। बेटा मीनाक्षी, मैं तुम्हें एक एक बात समझा दूंगा, चाचा उसे आश्वस्त कर रहे थे। चाचा आप थक गए हैं, आराम कर लीजिए, चलिए लेट जाइए, आराम करिए। मीनाक्षी अपने आप को असहज महसूस करने लगी थी। डायलिसिस के लिए जाना है, याद है ना, चाची ने टोकते हुए कहा। देखो मीनाक्षी बेटा, तुम्हारी चाची तो मेरी बात पर नाराज होने लगती है, पर तुम मजबूत दिल की लड़की हो। मेरी एकमात्र आखिरी इच्छा जरूर पूरी कर देना बेटा। हाँ बताइए ना चाचा, बोलिए। मेरा अंतिम संस्कार गांव में ही करवाना। चाचा आप बेकार की बातें करते हैं, तभी तो चाची नाराज होती हैं। क्यों ऐसी बातें करते हैं आप? सत्य को स्वीकारना चाहिए बेटा, जीवन मृत्यु ये तो शाश्वत है।
1: जिंदगी कैसी है पहेली हाय।

0: कभी तो हंसाए।
1: अच्छा चलो चलो नाश्ता कर लो, चाचा ने मीनाक्षी से कहा। मीनाक्षी ने पीछे मुड़कर अपने आंसू पोछे और बैग उठाकर बाहर आ गई। कहाँ जा रही हो तुम मीनाक्षी? आपके साथ हॉस्पिटल, फिर निकलना भी तो है मुझे। अरे इतनी जल्दी, तुम तो एक हफ्ते के लिए आई हो। हाँ अपना बगीचा और नया बन रहा जंगल देखने भी तो जाना है, आपको रिपोर्ट जो सौंपनी है और उन सब से मिलना भी तो पड़ेगा ताकि आपका संदेश पहुंचा सकूं। चाचा पता नहीं मैं कैसे कर पाऊंगी ये सब, आपने इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी है कि आपने मुझ पर जो भरोसा किया है चाचा। अरे क्यों नहीं कर पाओगी तुम ही कर पाओगी, कोई अनजान जगह तो है नहीं, वो तो तुम्हारा तितलियों का देश है, उस देश की तुम रानी हो। जाओ मुलाकात करो अपने नए मित्रों से, मोरों से, खरगोशों से, तोतों से और सुंदर चिड़ियों से। मीनाक्षी ने देखा चाचा के चेहरे पर एक गहरे संतोष की चमक दिखाई दे रही थी।

गीतों भरी कहानी इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे उर्मिला शिरीष की लिखी कहानी तितलियों के देश में। वाचक स्वर ममता सिंह का था, संपादन सहयोग सौरभ घारू का। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे राघवेंद्र सिंह नेकी।

0: जिंदगी सचमुच एक सुहाना सफर है, क्योंकि विविध भारती आपकी हम सफर है। विविध भारती पर हर शाम 4 बजे सजता है पिटारा। सोमवार को सेहतनामा, मंगलवार को सेल्यूलॉइड के सितारे, और गुरुवार को होता है
1: हेलो फरमाइश।
0: बुधवार को आज के मेहमान, शुक्रवार को गीतों भरी कहानी, शनिवार बॉम्बे टॉकीज।
2: मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता।
0: और रविवार
3: उजाले उनकी यादों की।
0: जिंदगी सचमुच एक सुहाना सफर है, क्योंकि विविध भारती आपकी हम सफर है। सुनते रहिए विविध भारती, आपका जीवन संगीत।
4: कुछ दिल ने कहा,
0: सुनहरे ख्वाबों वाली एक लड़की।
4: अगर मेरी माँ बायोलॉजिकल मदर है तो टेक्निकल मदर मेरी विविध भारती है,
0: जिसे बचपन से ही गाने का शौक था।
4: कुर्सी पे बैठ के गा रहे थे और उसको लगा ट्रांजिस्टर ऑन छूट गया है।
5: हम चले तुम चलो सावन की हवा चले।
0: उसने तोड़ी पारंपरिक समाज के बंधन।
4: अब जब हम बाइक लेके निकल गए, जब 3 चक्कर लग गया तब याद आया ये तो अब रोकना ही नहीं आता है।
0: एक कामयाबी जो मिलते मिलते रह गई।
4: कभी सोचते ही नहीं थे कि हम हारेंगे।
0: जिंदगी ने करवाया एक लंबा इंतजार।
5: सुंदर सपनों की है मंजिल कदम के।
0: संघर्ष की डाल पर कामयाबी का फूल खिला।
5: जैसे तो है पास मेरे तेरे पास मैं।
0: जानी मानी गायिका दीपाली सहाय, बॉम्बे टॉकीज, 29 अगस्त से 12 सितंबर, हर शनिवार शाम 4 बजे सिर्फ

0: गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे।
1: किराना अथवा कैराना सहरानपुर उत्तर प्रदेश कुरुक्षेत्र के पास एक छोटा सा गांव है। इस नाम से घराने को ये नाम भी

0: मिल गया ऐसा कहते हैं।
1: अवश्य सुनिए 1 सितंबर से संगीत सरिता में नई श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना सुबह और शाम 6:45 पर सिर्फ विविध भारती पर।
2: इंस्टाग्राम पर आप सेलिब्रिटीज को फॉलो करते हैं,
3: हाँ जी।
2: अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को फॉलो करते हैं,
4: हाँ जी, हाँ।
2: पर क्या आपने विविध भारती को फॉलो किया?
4: नहीं नहीं, अभी नहीं।
2: विविध भारती भी तो आपके परिवार का हिस्सा है,
4: है ना, बोलो, बोलो।
2: तो इंस्टाग्राम पर लिखिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
5: कुछ लिखा,
2: और फॉलो कीजिए विविध भारती के ऑफिशियल पेज को।

0: दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त यूनुस खान हूं और आज मैटिनी शो कार्यक्रम में हम एक बहुत ही जरूरी मुद्दे पर बात करने वाले हैं, जिसके लिए हमने एक बहुत ही खास मेहमान को आमंत्रित किया है। डॉक्टर संजय कुमार शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्हें राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त है। किस लिए प्राप्त है, ये आप इस बातचीत में आगे जानेंगे। डॉक्टर संजय कुमार शर्मा, बहुत बहुत स्वागत आपका।
1: बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे भी बहुत खुशी और प्रसन्नता हो रही है आज विविध भारती के मुंबई स्टूडियो में आकर।
0: जी, मैं आपसे दूसरे नंबर पर यह सवाल पूछूंगा कि आपको राष्ट्रपति पुरस्कार क्यों मिला है। सबसे पहले तो ये जो आपके नाम के आगे डॉक्टर लगा है, जी, तो जी, ये किस मर्ज के लिए लगा है?
1: बेसिकली मैंने MSc मैथमेटिक्स और VET किया।
0: हाँ।
1: और फिर देखा कि कुछ बचपन से ही लगने लगता था मानसिक विक्षिप्त मनोरोगियों,
0: जी,
1: तो फिर मैंने जाके फिर डॉक्टरी की। डॉक्टरी मतलब वो नहीं की थी कि MBBS वाला, नेचुरोपैथी में डॉक्टरी की थी हमने एक्चुअली।
0: अच्छा, गजब गजब, क्या बात है। ये बताइए कि आपको राष्ट्रपति पुरस्कार से किस बात के लिए सम्मानित किया गया था और आपके काम का क्षेत्र क्या है?
1: विगत 36 वर्षों से मैं मानसिक विक्षिप्तों की सेवा स्वयं के व्यय पर करता हूँ,
0: जी,
1: यानी कि मेरी कोई NGO नहीं है।
0: अच्छा।
1: हाँ, और मैं ग्रामीण क्षेत्रों में बुंदेलखंड में, वैसे मेरा कार्य क्षेत्र संपूर्ण भारतवर्ष है, जहाँ से भी मुझे जानकारी मिलती है, कॉल आता है, तो मैं स्वयं के व्यय पर स्वयं का खर्चा लगाकर वहाँ जाके ऐसे मानसिक विक्षिप्तों की सेवा करता हूँ जो कि कई कई वर्षों से जंजीरों से अपने घर के कोने में, आंगन में, अपने खेत में, हार में कहीं बंधे रहते हैं। तो मैं वहाँ जाकर देखकर और पहचान कर उनका रेस्क्यू ऑपरेशन करता हूँ, और जैसे ही उस मानसिक विक्षिप्त को छोड़ा जाता है तो वह किसी का मर्डर कर देते हैं, हत्या कर देते हैं, आगजनी कर देते हैं, बच्चों को उठा के मार देते हैं, तो वो वहाँ जाके मैं ऐसा कार्य करता हूँ। तो शायद भारत सरकार ने इस लायक मुझे समझा कि मुझे महामहिम राष्ट्रपति जी के द्वारा देश का सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति दिव्यांगजन सशक्तिकरण पुरस्कार 2024 मिला।
0: जी, मुझे ये बताएं कि ये काम आपने किस प्रेरणा से शुरू किया था? क्या कोई ऐसी घटना थी जिसने आपको प्रेरित किया, इस काम की तरफ मोड़ा?
1: हमारे जो पिताश्री थे वो शिक्षक थे,
0: जी,
1: तो मैं ये सोचता था कि MSc VET करने के बाद शिक्षक बनूं।
0: आप छतरपुर में थे?
1: जी जी जी, हाँ, मैंने पूरी हमारी जो शैक्षणिक योग्यता है वो मैंने छतरपुर से ली है। तो मैं सोचता था कि चलो, जैसे हमारे पिताजी एक महान शिक्षक थे और अनुशासित थे और बड़े योग्य शिक्षक थे, जिन्होंने बच्चों के प्रति त्याग किया है कि इनको कैसे सफल बनाया जाए, देश का नागरिक बनाया जाए, तो हम सोच रहे थे कि मैं भी पिता के समान एक शिक्षक बनूं, लेकिन ईश्वर हमसे शायद कुछ और ही कराना चाह रहा था। जब मैं नानी के यहाँ जाता था तो मैं बचपन में देखता था कि जब कोई मांगने वाला भिक्षु या कोई मनोरोगी हमारे यहाँ आता था नानी के यहाँ, तो जैसे बच्चे शरारत करते ना उनके साथ, तो शरारत की, कभी भोजन दिया नहीं दिया, या उनके ऊपर पानी फेंक दिया, कंकड़ उनको टच करके भाग गए, कंकड़ मार दिए, तो हमारी नानी कहती थी कि उनके भी हृदय है, जान है, उनके भी, वो भी एक मनुष्य हैं, उनके साथ अच्छा व्यवहार करें, उन्हें भोजन दें, उन्हें खाना दें,

0: और उन्हें कपड़े दें, तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि नानी थी तो निरक्षर, लेकिन एक बहुत ही अनुभव था उनके पास, उनके पास ज्ञान का भंडार था। तो उन्होंने हमें ये प्रेरणा शिक्षा दी कि इन लोगों के साथ अच्छा व्यवहार किया जाए। तो कह सकते हैं वैशाली की महान आत्मा के द्वारा एक महान प्रेरणा हमें जो मिली, चिरस्थायी प्रेरणा मिली, जो निरंतर 36 वर्षों से आज तक चली आ रही है।
1: सबसे पहले आपने क्या किया था, किस व्यक्ति को किस तरह से क्या देखा और कैसे उसके सुधार के लिए और उसके बेहतरी के लिए काम किया?
0: जैसे कि हमारे घर में कुछ लोग मांगने वाले आते हैं, तो उनको भोजन कराना, या कोई इवेंट हुआ, कोई ओकेशन हुआ, फादर का जन्मदिन हुआ या कुछ हुआ, तो उनको घर से भोजन बनाकर इन लोगों के बीच में बांटना, तो अच्छा लगता था इनसे कभी बात करना, मिलना। फिर देखा कि इन लोगों के साथ जो व्यवहार किया जाता है, तो परिवार के लोग भी इन लोगों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे, समाज के लोग भी इनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे, साथ में सरकार भी इनका कोई उचित ध्यान नहीं करती थी। तो सबसे पहले तो हम इनकी कटिंग कराना, कपड़े बदलाना, भोजन कराना इत्यादि करते रहे। फिर जैसे मैंने LLV की, तो मैंने देखा कि इसमें एक एक्ट है, कानून है, कि इनको हम कार्यपालिका और न्यायपालिका के सहयोग से इनको हम मानसिक आरोग्यशाला पहुंचा सकते हैं, वो भी पूर्णतः निशुल्क। तो वो हमने धीमे धीमे शुरुआत की। सबसे पहले एक सेरा नाम का मानसिक विक्षिप्त था, कहीं भी सांप खा ले, किसी को भी मारने दौड़ ले दौड़ जाए, तो सर्वप्रथम आज से 28 वर्ष पहले हमने उसको मानसिक आरोग्यशाला ग्वालियर पहुंचाया था, वो
1: अच्छा,
0: स्वस्थ भी हो गया था। और
1: मतलब ये कि किसी व्यक्ति को आपने वहां पहुंचाया
0: जी
1: और मेंटल हेल्थ सेंटर में, और वो ठीक
0: जी
1: हो गया।
0: हाँ, सभी ठीक हो जाते हैं। इसमें एक चीज और है, जैसे आपने प्रश्न किया जितने पहुंचाए वो क्या सब ठीक हो गए, तो इसमें क्या होता है, जैसे सर्दी खांसी बुखार होता है, वो पहले होता है, मतलब व्यक्ति स्वस्थ होता है, फिर यदि सर्दी खांसी बुखार हो गया तो इलाज से ठीक हो जाती। इसी प्रकार से यदि कोई मानसिक विक्षिप्त रहता है, पहले स्वस्थ था, किन्हीं कारणवश वह मानसिक विक्षिप्त हो गया, तो उसको हम दवाइयों के माध्यम से ठीक करा सकते हैं। और कोई यदि MR है, MR बोले तो मेंटल रिटार्ड, मानसिक मंदता, तो उनको हम फिर संबंधित NGO में पहुंचाते हैं, क्योंकि जो मेंटल रिटार्ड पर्सन होते हैं उनका वो पैदाइशी होते हैं, तो उनको अपन सहायता कर सकते हो, उनको सरकारें पेंशन भी देती हैं, तो उनकी व्यवस्था भी करते हैं।
1: जी, अब तक कितने लोगों को आपने बेहतर दिशा की ओर पहुंचाने का काम किया है?
0: प्रत्येक दिन, ऐसा कोई भी दिन नहीं जाता है हमारे लिए जो कि जहां पर हमें फोन ना आता हो कि भैया, आजकल तो प्रशासनिक अधिकारी हमें फोन करने लगे हैं कि सर इसका जो एक्ट है, कानून है, वो हमें बताएं। तो हमने एक PDF फाइल बना रखी है, तो
1: जी
0: जहां से जैसे भी वो फोन आता है, हम वहां जाके वो PDF फाइल दे देते कि
1: जी
0: एक्ट ये बोलता है,
1: जी
0: प्रोसीडिंग क्या है ये बता देते, कि एक परवाद बनेगा, कथन कटेंगे, मेडिकल से मेडिकल कराएंगे, डॉक्टर से मेडिकल कराएंगे,
1: जी
0: तदुपरांत संबंधित व्यक्ति को
1: जी
0: संबंधित न्यायालय में पेश करके संबंधित मानसिक आरोग्यशाला में पहुंचाया जा सकता है, एक चीज।
1: जी
0: सेकंड चीज, यदि कोई मनोरोगी है, डिप्रेशन में है, या कोई और भी चीजें हैं, तो उनको हम बेहतर इलाज के लिए मार्गदर्शन देते हैं कि आप ऐसा कीजिए। अभी जो आपने प्रश्न किया, अभी तक हमने 2000 प्लस खूंखार मानसिक विक्षिप्त, जिन्होंने की हत्याएं की है, आगजनी की है, जिन्होंने अपने घर परिवार को किसी न किसी की हत्या कर दी, तो 2000 से अधिक मानसिक विक्षिप्तों को कार्यपालिका और न्यायपालिका के सहयोग से मानसिक आरोग्यशाला पहुंचाया। आप विश्वास करेंगे, 2000 प्लस जितने भी थे वो सभी स्वस्थ होकर समाज की मुख्य धारा में जुड़ गए हैं,
1: जी
0: वो अपना व अपने परिवार का भरण पोषण भी कर रहे हैं साथ में। लेकिन एक निर्देश भी देते हम कि इसकी जो इलाज करा के आए हैं, इसकी दवाइयां जब तक डॉक्टर ना कहे बंद ना करे। अधिकांशतः प्रायः देखा गया है कि जैसे ही इलाज करा के आते हैं वो स्वस्थ हो जाते हैं, फिर दवाइयां बंद कर देते हैं, तो दवाइयां कभी बंद ना करें जब
1: अच्छा,
0: तक
1: इस
0: डॉक्टर ना
1: दिशा
0: कहे।
1: में
0: जी जी
1: आपको किस तरह की परेशानियों का, विरोध का सामना करना पड़ा?
0: देखो, ये तो स्वाभाविक है, जब कोई अच्छा कार्य करेंगे तो निश्चित है परेशानियां तो आती ही हैं, वो तो आपका डर संकल्प है कि आप उन परेशानियों को, उन प्रॉब्लम को कैसे फेस करते हैं, कैसे निकालते हैं।

0: तो जब हम जाते हैं तो सबसे पहले तो वो जो मानसिक विक्षिप्त रहता है, जो फोन आया कि आप मिलिए उससे, तो जाते तो वैसे ही बिहेव करता है वो मेरे साथ भी, जैसे आम पब्लिक के साथ बिहेव करता है।
1: हिंसक हो सकता है,
0: हिंसक होते हैं, हो जाते हैं, लेकिन जब धीमे धीमे हम उनके संपर्क में आते हैं, उनकी वस्तुएं खाने पीने के लिए देते हैं, वो हमारी बात समझने का प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं, हम उनकी बात समझने का प्रयास कोशिश करते हैं, ये सिलसिला थोड़ा बढ़ता है, फिर वो हमारी बात मानते हैं, हम उनकी बात मानते हैं, और फिर हम ऐसे खूंखार मानसिक, तो यदि बेघर है, होमलेस है, तो संबंधित थाना प्रभारी को कहेंगे, संबंधित थाना प्रभारी भी हमारे साथ कोऑपरेट नहीं करता, कहने लगते हमारे पास और भी कार हैं, और क्या पुलिस के पास यही कार है, उन्हें हम कानून बताते हैं, है ना, फिर उन्हें ये लगता है कि जे क्यों इस सेवा को कर रहे हैं, फिर हम उन्हें बताते हैं कि हमारी कोई एनजीओ नहीं है, फिर जैसे वो हमारे विषय में मालूम करते हैं कि हाँ ये व्यक्ति
1: जेन्युइन है,
0: जेन्युइन है, निस्वार्थ भाव से सेवा कई वर्षों से करते आ रहे हैं, तब वो हमें कोऑपरेट करते हैं, कभी नहीं करते हैं, कभी जब हम ज़्यादा परेशान करते हैं और तो वो क्या करते हैं, उस मानसिक विक्षिप्त को अपने क्षेत्र से किसी ट्रक में बैठाल कर आगे बढ़ा देते हैं, ऐसे क्रम चलता रहता है।
1: अच्छा मुझे ये बताएं कि आपने कहा कि आप किसी भी मानसिक विक्षिप्त व्यक्ति को देखते हैं कि वो किसी बुरी स्थिति में है, तो आप उसे वहां से रेस्क्यू करते हैं और आप उसे सरकारी यूनिट में पहुंचाते हैं।
0: जी जी,
1: है ना, सुधार गृह में पहुंचाते हैं या
0: मानसिक आरोग्यशाला,
1: आरोग्यशाला जो होती है वहां पहुंचाते हैं। क्या वहां से सहयोग मिलता है, और क्या आपकी बात सुनकर कोई व्यक्ति इस तरह का प्रयास करे तो क्या वो सफल हो पाएगा?
0: क्यों नहीं सफल हो सकता भाई, सफल तो हो, जैसे हमें भी जब शुरू की थी आज से 36 वर्ष पहले तो प्रॉब्लम आई थी, लेकिन एक दृढ़ संकल्प होना चाहिए, एक मन में विश्वास होना चाहिए कि देखो यदि आप संघर्षों से टकराएंगे और लड़ेंगे तभी तो आप ऊंचाइयां छू पाएंगे।
1: जी जी बिल्कुल,
0: तभी आप हटके कोई कार्य करेंगे तभी तो आप ऊंचाइयां छू पाएंगे, अन्यथा आम जनता में तो सब वही रहता है, बगल से निकल जाते, उसको देखते रहते हैं। तो यदि कोई व्यक्ति हमारे जैसा कार्य करना चाहता है तो पहले तो हम उसका बहुत स्वागत करेंगे, लेकिन उसमें एक प्रेरणा कर ले कि हमें ये काम निस्वार्थ भाव से करना है,
1: लगे रहना पड़ेगा,
0: लगे रहना पड़ेगा, और बिना प्रतिफल के, बिना किसी आशा के यदि आप करेंगे तो आज नहीं तो कल, कल नहीं परसों आप भी सफलता की सीढ़ी चढ़ते हुए शिखर पर पहुंचेंगे। जो हमारी कार्य करने की पद्धति है, जैसे आपने पूछा, तो जैसे भी हमें कहीं मिलता है मानसिक विक्षिप्त, हम संबंधित थाने में जाकर उसके विषय में मिसिंग कंप्लेन देखते हैं कि कोई मिसिंग कंप्लेन तो नहीं है, फिर नहीं मिलती है तो एक पुलिस अधिकारी से परवाद बनवाते हैं, उन्हें कानून बताते हैं, फिर मेडिकल से मेडिकल बोर्ड से उसका मेडिकल भी कराते हैं, कथन कटवाते हैं, फिर संबंधित थाना प्रभारी, इसमें कानून है, जैसे हम आपको यही बताना चाहते हैं कि 1912 में था द इंडियन लुनेसी एक्ट, उसमें जो मानसिक आरोग्यशाला में भर्ती करने की जो प्रोसेस थी, प्रक्रिया थी, उसमें एसडीएम डिप्टी कलेक्टर को पावर था कि वो आदेशित कर देते थे, लेकिन देखा गया कि कुछ इसका मिसयूज हो रहा है, व्यक्ति झाड़ फूंक करता है, राख से इलाज करता है, मंदिर मस्जिद पे जाता है, फिर नया एक्ट बना, मेंटल हेल्थ एक्ट 1987, वो भी बहुत अच्छा चल रहा था, उसमें हर चीज़ की डेफिनेशन बताई गई कि मजिस्ट्रेट की डेफिनेशन क्या है, डॉक्टर की डेफिनेशन क्या है, और रिसेप्शन ऑर्डर क्या है, कैसे परवाद बनेगा, किस धारा के अंतर्गत बनेगा, ड्यूटी ऑफ द पुलिस ऑफिसर क्या है, रिहैबिलिटेशन सेंटर क्या है, और जिन बेघर हैं, जिनका कोई नहीं है इस दुनिया में, उनको कैसे आरोग्यशाला पहुंचाए, तो उसके लिए गार्जियनशिप कौन नियुक्त करेगा, कि गार्जियनशिप किसको मिलना चाहिए। तो इस एक्ट में एक चीज़ और हम बता दें, वर्तमान परिवेश में हमारे जो युवा हैं, आप देखते होंगे अखबारों में और माध्यम के, सोशल मीडिया के माध्यम से, हमारे जो युवा हैं वो आत्महत्या की ओर ज़्यादा अग्रसर हो रहे हैं, तो ये एक समाज के लिए एक प्रश्न चिन्ह भी है। तो इसके विषय में हम जरूर बताना चाहते हैं कि इस एक्ट में पहले व्यक्ति, यदि एक ही धारा थी हमारे संविधान में, हमारे कानून में एक ही धारा थी कि यदि आत्महत्या करते हुए कोई भी व्यक्ति पकड़ा जाता है तो उसे एक वर्ष का कारावास होता था, दंड दिया जाता था, और यदि उसने अपराध कर लिया डन, तो वो तो स्वर्गवासी हो गया, इस दुनिया ही में नहीं है। इस एक्ट में जो अभी नया एक्ट आ गया है,

0: मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017, इस एक्ट में इस धारा को विलोपित किया गया है। इस एक्ट में एक और फायदा है, मतलब बताया गया है कि जो दिव्यांग हैं, जो पहले 7 प्रकार के थे, अब 21 प्रकार के किए गए हैं। साथ ही इनके लिए बीमा नहीं मिलता था, इनकी फ़ोटो कोई भी छाप देता था, इनकी इनके दुर्व्यवहार करता था, इन्हें परेशान करता था, घर के लोग भी परेशान करते थे, उन्हें उनकी हिस्सेदारी नहीं देते थे, उनके परिवार में यदि कोई संकट आता था या कुछ भी होता था, परिवार का जो उनका हिस्सा था वो भी गबन कर जाते थे, ले जाते थे। तो अब ऐसे गार्जियनशिप बनाएंगे और ऐसे परिवारों के लिए इनके लिए बीमा का भी प्रावधान किया गया है, और यदि कोई इनसे दुर्व्यवहार करता है, कंट्रोवीन करता है, तो इसमें सजा का भी प्रावधान किया गया है इस एक्ट में।
1: जी,
0: वो सजा है कि पहली बार यदि कोई उल्लंघन करता है, कंट्रोवीन करता है, तो उसको 2 माह की सजा और 10,000 रुपये जुर्माना, या दोनों संयुक्त रूप से कर सकते हैं। फिर यदि दोबारा कंट्रोवीन होता है, उल्लंघन करते हैं, तो इसमें 2 वर्ष की सजा और 50,000 से लेकर 5 लाख तक का जुर्माने का प्रावधान है।
1: जी, आपने ये कानून पहलू तो बताए। दो बातें यहाँ जो है वो मैं आपसे करना चाहता हूँ। एक तो ये है कि ये जो झाड़ फूंक और अंधविश्वास का प्रचलन है, ये मानसिक रोग हों या बहुत ज्यादा खतरनाक बीमारियां हों, इन सब परिस्थितियों में लोग इनकी शरण में जाते हैं।
0: जी जी जी।
1: तो इस तरह के मामले आपने देखे हैं कि किसी व्यक्ति में मानसिक विक्षिप्तता के लक्षण दिखे तो लोग इस तरह का अंधविश्वास अपनाते हैं, इससे मामला कितना बिगड़ता है, ये एक बात हुई। दूसरी बात मैं ये जानना चाहता हूं कि कौन सी ऐसी घटनाएं आपने इन 36 सालों में देखी हैं जिनमें से कुछ का यहां जिक्र किया जाए, तो एक ही बात है कि इन दोनों बातों के जवाब दीजिए।
0: होता क्या था कि नार्कोटेक्स की दवाइयां थी, मनोचिकित्सक पूरे देश में कम थे, और व्यक्ति यदि मनोरोगी हो गया है, एक बात हम आपको और बताते हैं आपके माध्यम से कि हमारे क्षेत्र में तो ज्यादातर, वहां के क्षेत्रों में भी होगा, पढ़ते रहते अखबारों में, एक गांजा पीने से मैरिजुआना, गांजा पीने से हमारे बुंदेलखंड में काफ़ी मानसिक विक्षिप्त मिलते हैं। गांजा यदि खाली पेट पिया जाए तो व्यक्ति आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, 1 साल के अंदर वो मानसिक विक्षिप्त की कगार पर आ जाएगा।
1: ओ,
0: मानसिक गांजा पीने से केवल, तो गांजा नहीं पीना चाहिए, नशा तो किसी भी प्रकार का नहीं करना चाहिए। और हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ईश्वर ने हमें बहुत अच्छा शरीर दिया है। जब पहली बार हम तंबाकू खाते हैं, सिगरेट पीते हैं, अल्कोहल पीते हैं, तो हमारा शरीर मना करता है। जैसे हम सिगरेट पीते हैं, मिठसकी लगती है, तंबाकू खाते उल्टी होती, चक्कर आते हैं, शराब पीते उल्टी होती है, तो भगवान ने इतना अच्छा शरीर दिया, मना करता है। तो गांजा तो भूल के नहीं पीना चाहिए। गांजा पीने से व्यक्ति निश्चित ही आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो नरसों, निश्चित ही एक न दिन मानसिक विक्षिप्त होगा। यदि उसकी डाइट अच्छी रही ना रही तो, डाइट अच्छी रही तो ठीक है, कुछ दिन बाद कुछ सफर कर जाएगा, 10 साल 5 साल, लेकिन गांजा पीने से बुंदेलखंड में बहुत मानसिक विक्षिप्त मिलते हैं। पहली चीज
1: जी,
0: होता यह है कि डॉक्टर मिलते नहीं है, दवाइयां नार्कोटेक्स की रहती हैं, डॉक्टर के पर्चे पे दवाइयां मिलती हैं, तो व्यक्ति जाए तो आखिर जाए कहां। सेकंड चीज जो हम आपको बताना चाह रहे हैं कि हर व्यक्ति ये कहता है कि मैं मानसिक विक्षिप्त नहीं हूं, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है कि पढ़ा लिखा व्यक्ति भी मनोरोगी हो रहे हैं आज के समय में, सबसे ज्यादा हमारे युवा हो रहे हैं, उसका मेन कारण है मोबाइल,
1: अच्छा,
0: सोशल मीडिया। इनके इनके बच्चों के ऊपर जब लाइक डिसलाइक इनके नहीं आते हैं तो इनके मानसिक बोझ बढ़ता है, और माता पिता भी इनके ऊपर बहुत कहते हैं कि देखो फलाने का बच्चा ये बन गया, ढिकाने का बच्चा ये बन गया, और तुम कुछ नहीं कर रहे हो, तो मानसिक बोझ हमारे बच्चों पर पड़ता है, और वो उसको सहन नहीं करते, तो बच्चे फिर गांजा पीने लगते हो, फिर वो आत्महत्या भी करते हैं। तो एक कारण। दूसरी बात, आपने जो प्रश्न किया था कि जो इनके ऊपर, तो एक्चुअली व्यक्ति जाए तो कहाँ जाए, वो तो वो फिर झाड़ फूंक की ओर अग्रसर होता है। झाड़ फूंक करने से क्या होता है कि हमारा शरीर बहुत अच्छा है, तो जब झाड़ फूंक कोई व्यक्ति करता है तो अति विश्वास के कारण हमारे शरीर से ऐसे रसायनों का स्राव होता है जो कि हमें खुशी प्रदान करता है, सेरोटोनिन है, डोपामाइन है, ऑक्सीटोसिन है, तो ये ब्रेन केमिकल है, और जिस सब काय से बनते हैं प्रोटीन से, प्रोटीन में होता है अमीनो एसिड ट्रिप्टोफैन, जब ब्रेन केमिकल कहलाते हैं, जब ये ब्रेन में जाते हैं तो हमें सेरोटोनिन डोपामाइन ऑक्सीटोसिन मिलते हैं।

0: तो होता क्या है कि जब इन जगह पर जाते हैं, मंदिर, मस्जिद, मजार, बाबा, ओझा के यहाँ राख लेके आते हैं, तो अति विश्वास के कारण कुछ समय के लिए अच्छे हो जाते हैं। और
1: असर
0: कहें
1: दिखता है, जो झूठा असर हो सकता है
0: हाँ
1: या
0: कुछ समय के
1: भ्रमित
0: लिए,
1: असर हो सकता है।
0: कुछ समय के लिए, लेकिन वो फिर फिक्रिया अपनी वही अपना लेते हैं तो रहता है। लेकिन हम आपके माध्यम से ये बताना चाहते कि हमारे जो युवा हैं, तो पहले होता क्या था कि जो पहले WHO के जो आंकड़े बताते हैं 2019 के अनुसार, कि पहले 40 सेकंड में एक व्यक्ति सुसाइड करता था, अब प्रति सेकंड हो गया है 2020 में। और एक सर्वे कराया था निमंस ने बेंगलोर में, उसने देखा था 10,000 लोगों पर, तो जो पढ़े लिखे लोग थे उन पे भी कराया था, तो 2,443 लोग मनोरोगी पाए गए। तो कोई भी व्यक्ति मनोरोगी होगा उसको कहते हैं CMD, कॉमन मेंटल डिसऑर्डर। हम मानते ही नहीं है कि हम मनोरोगी हो गए हैं। क्यों नहीं मानते? हमारे घर परिवार में सभ्य समाज के लोग नहीं आएंगे, कहेंगे अरे वो तो मनोरोगियों का परिवार है, हमारे यहाँ शादी विवाह नहीं होगी, कोई हमारे परिवार में नहीं आएंगे, भिन्न भिन्न कारण हो सके, इसलिए कोई बताता नहीं है कि हम मनोरोगी हो गए हैं, और हमें मालूम भी नहीं चलता। इसका इसके कोई टेस्ट भी नहीं होते कि कोई ब्लड टेस्ट हो, यूरिन टेस्ट हो, फलाने टेस्ट हो। इसमें तो बस ऐसा ज्ञात किया जाता है कि व्यक्ति को यदि 15 दिन से अधिक नींद ना आना, भूख नहीं लगना, अजीब सा लगना, और ऐसा लगना, बुरा बुरा लगना, बुरे बुरे ख्याल आना है, तो अजीब, मतलब तो वो समझो कि CMD की ओर अग्रसर है, कॉमन मेंटल डिसऑर्डर की ओर अग्रसर है।
1: ऐसी परिस्थिति में ओझा या झाड़फूंक वाली जगहों पर जाने की बजाय मेडिकल हेल्प लेनी जरूरी
0: मेडिकल
1: है।
0: हेल्प उससे ठीक भी, जैसे हमारे पास उदाहरण है कि हमने 2,000 से ऊपर पहुंचाए, वो स्वस्थ होकर समाज की मुख्यधारा में जुड़ गए हैं।
1: जी, अब मुझे कुछ ऐसी घटनाएं बताइए
0: जी
1: जो
0: जी
1: आपके जीवन की बड़ी यादगार घटनाएं हैं और जिनमें बदलाव के संकेत हैं।
0: एक तो हम अपना बुरा अनुभव बता दें कि हम एक मानसिक विक्षिप्त को जो कि BSc पास था और सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ाता भी था, वो किसी गांजा पीने से हो गया था मानसिक विक्षिप्त। हाँ, तो उसको बांधे थे, जंजीरों से बांधे थे, और उसने आगजनी भी की थी, और बहुत अच्छा हष्टपुष्ट लड़का था। तो न्यायाधीश महोदय से निवेदन किया, थानेदार से भी निवेदन किया, पहुंचाया, तो थाने न्यायाधीश महोदय ने कहा नहीं मैं नहीं करूंगी, SDM करेंगे। हमने उनको कानून बताया, तो उन्होंने कहा इसको बांधे क्यों है? हमने कहा जी हिंसक है, अभी किसी को मार देगा, और एक दो इसके ऊपर 5 अपराध भी दर्ज हैं संबंधित थाने में, इसलिए इसको बांधे हुए हैं। तो उन्होंने एक आदेश दिया कि लड़के को, पिताजी को, जो इनके खास हम खास बने हैं वकील साहब संजय शर्मा, इनको भी अरेस्ट कर लिया जाए 342 में, मौखिक आदेश दिया था। लेकिन फिलहाल उन्हें भी अनुभव हुआ कि नहीं जी मानसिक विक्षिप्त, उन्होंने मेडिकल रिपोर्ट दिखाई, सब दिखाई। तो दूसरी बात हम ये कहना चाहते हैं
1: तो
0: आपके माध्यम
1: आपको
0: से,
1: गिरफ्तार कर लिया गया था।
0: नहीं, उन्होंने मौखिक आदेश दिया था, क्यों आप इसको बांधे हुए हैं? किसी अच्छे पुरुष को आपको बांधे रखना एक कानूनन अपराध है,
1: जी
0: और जो
1: जी
0: बांधे गए उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होती है। तो
1: राइट
0: उन्होंने ऐसा सोचा, लेकिन फिर उन्होंने उसी मानसिक विक्षिप्त को मानसिक आरोग्यशाला में पहुंचाया, वो स्वस्थ भी हो गया और समाज की मुख्यधारा, फिर इस स्कूल में पढ़ाने भी लगा था वो।
1: वाह,
0: फिर एक और उदाहरण दे रहे हैं कि एक मानसिक विक्षिप्त नहीं था, मनोरोगी था वो, तो उसको सुनाई भी नहीं देता था, बोल नहीं पाता था। तो उसके बगल में नया नया कंप्यूटर आया, और जैसे कि बाहर से, दिल्ली से, कहीं से भी कोई रिजल्ट ओपन होता था, तो वो उस गांव में मार्कशीट निकाल देता था, अंक सूची निकाल देता था। तो उसको ऐसा भ्रम हुआ कि हमारा पड़ोसी, जो हम खाते पीते हैं, हमारा खून और हमारा भोजन निकाल लेता है। तो
1: अरे
0: वो,
1: बाप रे,
0: हाँ, तो वो दुबला हो गया था पूरी तरह। वो मेरे पास आया, बोला भैया वो बगल वाला पड़ोसी के पास कंप्यूटर आया है, प्रिंटर आया है, जिस प्रकार वो हमारा खून और खून निकाल लेता है, भोजन निकाल लेता है। हमने कैसे? बोले जिस प्रकार से दिल्ली में कोई रिजल्ट ओपन हुआ, अंक सूची वो अपने घर से निकाल देता है, तो इसी प्रकार से भी हमारा ब्लड और खून निकाल लेता और हमारा भोजन निकाल लेता।
1: भयंकर अंधविश्वास।
0: हाँ, भयंकर। तो हमने कहा कैसे कैसे उसको मना किया जाए? तो उसने कहा हमसे कि यदि आप उसको मना कर दें, हमने वो हमारी बात नहीं मानेगा। तो हमने पुलिस वालों को बताया, क्योंकि वो ना पढ़ा लिखा था, 12वीं पास था वो, और कंपोजिंग करता था प्रेस में। हाँ, पढ़ा लिखा था, लेकिन वो साइको पेशेंट था।
1: जी
0: फिर उसको हमने जब समझाया, बताया, तो पुलिस वालों से कहा, पुलिस वालों से निवेदन किया कि इसको समझा देना। तो उसने लिख के दिया कि हम इनका भोजन हम नहीं निकालेंगे, ना खून। वो विगत विगत एक हफ्ते में स्वस्थ हो गया।
1: मतलब ये सोचिए कि ये नौटंकी नाटक एक तरह का करना
0: हाँ
1: रचना पड़ा कि
0: हाँ
1: भाई एक व्यक्ति की बेहतरी के लिए इस तरह का कुछ।
0: एक चीज और हम बताना चाहते हैं कि 2017 में नोबेल पुरस्कार मिला था जैविक घंटी पर।
1: जी
0: आप जैसा मन में सोचेंगे, जैसे विचार ले आएंगे, सामने आपको आकृति भी आ जाएगी।

0: ये मन का खेल है
1: जी। नोबेल पुरस्कार मिला गया है 2017 में जैविक घंटी जियोलॉजिकल वेल पर, मतलब साइंस है जी। तो हमारे कहने के तात्पर्य आप जैसे मन में विचारने आएंगे, आप यदि सोचेंगे हमें आईएएस बनना है आईपीएस बनना है, रात्रि में अंधेरे में जा रहे हो आपने सोचा कि कोई मुझे चुड़ैल मिल जाएगी भूत मिल जाएगा, एक आपके सामने परिकल्पना जो आप इमेजिंग आप जो मस्तिष्क में बनाए वो सामने आ जाएगी आपके
0: जी,
1: वो मिल जाएगा, तो आप विश्वास हो जाएंगे, डर जाएंगे और वहीं गिर पड़ेंगे।
0: इसलिए जीवन जो है वो थोड़ा तार्किक और वैज्ञानिक होना जरूरी है और अंधविश्वासों से दूर जाना जरूरी है। संजय जी, एक बात जो आपके जीवन की बहुत महत्वपूर्ण बात है उसकी ओर बढ़ते हैं कि राष्ट्रपति महोदया से जिस दिन आपको ये पुरस्कार मिला वो पल और जिस दिन इस पुरस्कार की घोषणा हुई थी वो पल, कैसी कैफियत थी आपकी?
1: देखिए सर, ये तो एक पुरस्कार है, प्रोत्साहन है, किसी ने हमारे कार्यों को रिकॉग्निशन की दिया है, एक हमें मतलब एक प्रकार से अच्छा लगता है, लेकिन इससे ज़्यादा खुशी हमें तब होती है कि जब कई कई वर्षों से जिनका भोजन समाप्त हो जाता है वो अपनी, नहीं कहना चाहिए कि अपनी मल खा जाते हैं, लैटिन खा जाते हैं, वो यदि स्वस्थ होके आ जाते हैं, उससे ज्यादा खुशी का पल कोई नहीं होता है मेरे जीवन में
0: जी।
1: मैं ईश्वर नहीं हूं, भगवान नहीं हूं मैं, लेकिन शायद जो मृत्यु की कगार पे था उसको हमने एक नया जीवन दे दिया, इससे बड़ा खुशी का पल हमारे लिए कोई नहीं हो सकता है।
0: मैं समझता हूं आपकी ये भावना कितनी बड़ी है कि पुरस्कार से बेहतर जो आपको लगता है वो ये है कि आप समाज बदले और जो मानसिक विक्षिप्त लोग हैं उनकी दशा बदले।
1: जी, जी।
0: सबसे आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि समाज में बहुत सारी भ्रांतियां और गलत धारणाएं प्रचलित हैं जिनकी वजह से मानसिक विक्षिप्त लोगों को स्वीकार नहीं किया जाता, उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। आपका एक लंबा अनुभव है, आप उनके साथ काम कर चुके हैं, उनकी हिंसा झेली होगी, उनको बेहतर दिशा में ले गए। आप विविध भारती के हजारों लाखों करोड़ों सुनने वाले लोगों से अपने अनुभव की क्या बात कहना चाहते हैं कि हमें कैसे अपनी सोच और बर्ताव को बदलना चाहिए?
1: बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। पहली चीज तो हम आपके माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि हे श्रोता, आप लोग जैसे सुबह जब हम उठते हैं, नहाते धोते कपड़े बदलते हैं, ब्रश करते मंजन करते हैं, वह क्रिया सभी करते हैं, आंतरिक क्रिया के लिए कुछ नहीं करते। हमें कपड़े बदलना है, सब कुछ करना है, लेकिन मन की शांति के लिए हमने क्या किया? एक छोटा सा उदाहरण देते हम, जिस प्रकार से कंप्यूटर हार्डवेयर है उसमें जितने अच्छे से अच्छे सॉफ्टवेयर डाले जाते हैं उतने अच्छे अच्छे उसके रिजल्ट आते हैं, जितने अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर होंगे उतने अच्छे अच्छे रिजल्ट आएंगे। उसी प्रकार से जे हमारा जो शरीर है वो कंप्यूटर हार्डवेयर के समान है, हम जितने अच्छे अच्छे सुविचार डालेंगे, पॉजिटिव विचार डालेंगे, उतने अच्छे हमारे रिजल्ट आएंगे, कार में हमारा प्रभाव दिखेगा, हमारे रिजल्ट आएंगे। साथ ही मेडिटेशन करें, नशा ना करें, किसी भी प्रकार का नशा ना करें। नशा तब करता है व्यक्ति जब हम किसी गलत काम करते हैं तो उसको छिपाने के लिए, जब हम तनावग्रस्त स्ट्रेस करते हैं तब नशा करने लगते हैं। तो व्यक्ति चीज़ तो ऐसे कार्य ना करें कि हमें तनाव मिले। दूसरी चीज़, मेडिटेशन करें, योग करें, व्यायाम करें, उतना करें जितनी हमारी मानसिक और शारीरिक क्षमता बोले,
0: संतुलन बना ले।
1: क्योंकि हमारा मस्तिष्क भौतिक तुला के समान है, नेगेटिव विचार ज्यादा ले आएंगे अपन मनोरोगी हो जाएंगे। और जे मत सोचे कि कोई भी आजकल तनावग्रस्त तनाव युक्त वातावरण में कैसे रहें तनाव मुक्त, ये भी एक कला है। आजकल फेसबुक बाट से बहुत चीजें आती हैं, तो हमें उतना चलना चाहिए, उतना करना चाहिए कि जितने में हम अच्छी तरह अपने मानसिक संतुलन को रख सकें, और अच्छा भोजन करना चाहिए जिससे हमें प्रोटीन मिले, और तनाव नहीं लेना चाहिए। मैं तनाव है इसका जमान।
0: डॉक्टर संजय कुमार शर्मा, बहुत जरूरी बातें विविध भारती के स्टूडियो में आके आपने की हैं, और इस कार्यक्रम का समय बड़ा सीमित है तो बातचीत को यहीं विराम देना होगा, लेकिन मुझे लगता है कि इस कार्यक्रम को सुनकर कहीं ना कहीं बदलाव की शुरुआत होगी और लोग आपसे जुड़ेंगे, लोग आपसे मार्गदर्शन लेंगे, और हम उम्मीद करें कि मानसिक विक्षिप्तों के साथ बेहतर व्यवहार होगा, उन्हें बेहतर जीवन और बेहतर दिशा मिलेगी। बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए और इतनी सारी जानकारियां देने के लिए,
1: मुझे यहां अवसर देने के लिए, मेरी बात रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: शुक्रिया।

0: मैटिनी शो कार्यक्रम में अभी आपने सुनी डॉक्टर संजय कुमार शर्मा से आपके इस दोस्त यूनुस खान की बातचीत। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग और विविध भारती की ओर से।
1: श्रोताओं, अभी आपने सुनी विविध भारती के कार्यक्रम, ये आकाशवाणी का हाफलंग केंद्र है। अब से कुछ क्षणों में आकाशवाणी की दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार रिले किए जाएंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सुधार उनकी सरकार के लिए मजबूरी नहीं बल्कि प्रतिबद्धता है। उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियां लोगों के हित और देश के विकास को ध्यान में रखकर बनाई जा रही हैं। नई दिल्ली में इकोनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड लीडर्स फोरम में प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार केवल नियम नहीं बदल रही बल्कि नीतियों में भी व्यापक बदलाव कर रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक स्तर पर संसाधनों को लेकर बढ़ता तनाव और दुनिया भर में अविश्वास नई चुनौतियां पैदा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत के विकास के लिए 7 प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
1: मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन, मैंने ऐसे 7 सेक्टर्स की बात की जिन पर भारत का आज बहुत ज्यादा फोकस है और इसलिए भारत आज पॉलिसी लेवल पर नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स कर रहा है ताकि हमारा फ्यूचर सुरक्षित हो, गवर्नेंस पर रिफॉर्म्स कर रहा है, ईज ऑफ लिविंग के लिए रिफॉर्म्स कर रहा है कि रिफॉर्म्स हमारे लिए कंपल्सन नहीं है, ये हमारा कमिटमेंट है, ये हमारा कन्विक्शन है।
0: प्रधानमंत्री ने भारत की G20 अध्यक्षता के मंत्र एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य का उल्लेख करते हुए कहा कि दुनिया के सभी देशों का भविष्य एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। भारत की मेजबानी में आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में आज ब्रिक्स युवा मंत्रियों की बैठक होगी जबकि कल ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक आयोजित की जाएगी। बैठकों की अध्यक्षता युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया करेंगे। राज्य मंत्री रक्षा खड़से भी इसमें शामिल होंगी। युवा कार्य मंत्रियों की बैठक में युवा विकास, शिक्षा, कौशल, रोजगार, उद्यमिता जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। वहीं खेल मंत्रियों की बैठक में 11 ब्रिक्स देशों के मंत्री और प्रतिनिधि खेलों में आपसी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉ एल मुरुगन ने आगामी 57वें अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव इफ्फी की तैयारियों के लिए गठित समिति की पहली बैठक की अध्यक्षता की। 57वां अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव इस वर्ष 20 से 28 नवंबर के बीच गोवा में आयोजित होगा। बैठक को संबोधित करते हुए डॉ मुरुगन ने युवा छात्रों, उभरते फिल्म निर्माताओं और भारतीय फिल्म उद्योग के गुमनाम नायकों के लिए अधिक अवसरों पर जोर दिया। सरकार ने आज 4 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए क्लोरोफेनिरामाइन मैलेट और फिनाइल एफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड वाले सभी फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन के निर्माण, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगा दिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर इन दवाओं पर स्पष्ट चेतावनी देना अनिवार्य किया है ताकि 4 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को ये दवाएं नहीं दी जानी चाहिए। भारत ने 22 भारतीय नाविकों के साथ 2 वाणिज्यिक जहाजों के अपहरण का मामला सोमालिया के अधिकारियों के सामने उठाया है। भारतीय उच्चायोग के अनुसार सभी भारतीय नाविक सुरक्षित बताए जा रहे हैं। भारत ने कहा है कि वो अपने नाविकों की सुरक्षा और कल्याण को सबसे ज्यादा महत्व देता है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने भी कहा है कि भारत अशांत समुद्री क्षेत्रों में काम कर रहे भारतीय नाविकों की सुरक्षा को लेकर गंभीर है। ग्रामीण विकास मंत्रालय की सशक्त समिति ने आज नई दिल्ली में दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के गैर कृषि आजीविका घटक के अंतर्गत प्रस्तावों की समीक्षा की। बैठक का उद्देश्य महिलाओं के नेतृत्व वाले ग्रामीण उद्यमों को मजबूत और व्यापक बनाना तथा स्वयं सहायता समूहों के छोटे उद्यमों को आगे बढ़ाकर विकासोन्मुख व्यवसायों में बदलने का मार्ग तैयार करना था। बैठक की अध्यक्षता ग्रामीण विकास सचिव रोहित कंसल ने की। झारखंड के रामगढ़ जिले में मां छिन्नमस्तिका सीमेंट एंड स्टील पावर प्लांट में कल रात टरबाइन में तेज धमाके के बाद भीषण आग लग गई। इस हादसे में 3 इंजीनियरों की मौत हो गई जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार अत्यधिक तापमान के कारण प्लांट का प्रोटेक्शन सिस्टम काम नहीं कर पाया, इससे टरबाइन की गति अचानक बढ़ गई और इसमें विस्फोट हो गया। प्लांट कर्मचारियों का आरोप है कि कंट्रोल रूम में बढ़ते तापमान और पर्याप्त कूलिंग व्यवस्था नहीं होने की जानकारी प्रबंधन को पहले से ही दी गई थी लेकिन समय पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। तेलंगाना के यादाद्री भुवनगिरी जिले के

0: सुनहरे ख्वाबों वाली एक लड़की।
1: अगर मेरी माँ बायोलॉजिकल मदर है तो टेक्निकल मदर मेरी विविध भारती है,
0: जिसे बचपन से ही गाने का शौक था।
1: कुर्सी पे बैठ के गा रहे थे और उसको लगा ट्रांजिस्टर ऑन छूट गया है।
2: हम चले तुम चलो सावन की हवा चले।
0: उसने तोड़े पारंपरिक समाज के बंधन।
1: अब जब हम बाइक लेके निकल गए, जब तीन चक्कर लग गया तब याद आया ये तो अब रोकना ही नहीं आता है।
0: एक कामयाबी जो मिलते मिलते रह गई।
1: कभी सोचते ही नहीं थे कि हम हारेंगे।
0: जिंदगी ने करवाया एक लंबा इंतजार।
2: सुंदर सपनों की है मंजिल कदम की।
0: संघर्ष की डाल पर कामयाबी का फूल खिला।
2: जैसे तो है पास मेरे तेरे पास में।
0: जानी मानी गायिका दीपाली सहाय, बॉम्बे टॉकीज, 29 अगस्त से 12 सितंबर, हर शनिवार शाम 4 बजे, सिर्फ

परवीन सुल्ताना की आवाज थी कुदरत फिल्म का ये गीत मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा हुआ था। संगीत आरडी बर्मन का, विविध भारती पर चल रही है यादों की महफिल।

0: गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे।
1: किराना अथवा कैराना सहरानपुर उत्तर प्रदेश कुरुक्षेत्र के पास एक छोटा सा गांव है। इस नाम से घराने को ये नाम भी मिल गया ऐसा कहते हैं।
2: अवश्य सुनिए 1 सितंबर से संगीत सरिता में नई श्रृंखला
0: स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना
2: सुबह और शाम
0: 6:45 पर
2: सिर्फ विविध भारती पर।
3: यदु की महफिल कार्यक्रम में अब चश्मे बद्दूर फिल्म का गीत येसुदास और हेमंती शुक्ला की आवाजें।

0: रंगमंच से रुपहले पर्दे तक कुछ अनकहे किस्से, कुछ यादगार किरदार।
1: रावड़ी राठौड़ में मेरा करैक्टर इंस्पेक्टर का था, जो कि पॉजिटिव था, और कर्नाटका में एक जगह है जो बहुत मंदिर है जहाँ, उसकी जगह पे शूटिंग हुई थी इसकी।
0: अभिनय के दुनिया की बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा, सुनिए उनकी जिंदगी, उनके रिश्तों और सिनेमा की बातें।
2: पिज्जा एमएमएस का मैं खास करके बताना चाहूंगी कि दो ही एक्टर थे उसमें, और दो ही एक्टर की 16 मिनट की नॉन कट मतलब फिल्म है वो।
0: सेल्यूलॉइड के सितारे 25 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: इंस्टाग्राम पर आप सेलिब्रिटीज को फॉलो करते हैं?
4: हाँ जी।
3: अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को फॉलो करते हैं?
4: हाँ जी, हाँ।
3: पर क्या आपने विविध भारती को फॉलो किया?
4: नहीं नहीं, अभी नहीं।
3: विविध भारती भी तो आपके परिवार का हिस्सा है,
4: है ना? बोलो, बोलो।
3: तो इंस्टाग्राम पर लिखिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
5: कुछ लिखा,
3: और फॉलो कीजिए विविध भारती के ऑफिशियल पेज को।

इकता नंदन बन छुम छननन तछुम तछुम तकगत इसकदा लिए रंग सब सखा संग मन में उमंग गति तुमंग था खेलत भुज मेलत लपट झपट राधा ललिता चंदा बलि दियो बोर रंग घोर सर बोर बनवारी मैं हारी जा जारी मैं हारी जा जारी।

श्रोताओं, आप सुन रहे थे विविध भारती के कार्यक्रम और अब सुनिए देश विदेश की समाचार। कुछ क्षणों में आकाशवाणी की दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार रिले किए जाएंगे।

0: गृह मंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में सुकना में सहयोगी गोरखा नेताओं के साथ महत्वपूर्ण बैठक कर रहे हैं। गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष बिमल गुरंग के अनुसार बैठक में लंबे समय से चली आ रही स्थायी राजनीतिक समाधान की मांग पर चर्चा होने की संभावना है। बैठक के विस्तृत ब्यौरे की प्रतीक्षा है। इसके बाद आज गृहमंत्री सिलीगुड़ी कॉरिडोर को लेकर एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इसमें बीएसएफ, एसएसबी, आईबी, पुलिस तथा केंद्र और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सुधार उनकी सरकार के लिए मजबूरी नहीं बल्कि प्रतिबद्धता है। उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियां लोगों के हित और देश के विकास को ध्यान में रखकर बनाई जा रही हैं। नई दिल्ली में इकोनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड लीडर्स फोरम में प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार केवल नियम नहीं बदल रही बल्कि नीतियों में भी व्यापक बदलाव कर रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक स्तर पर संसाधनों को लेकर बढ़ता तनाव और दुनिया भर में अविश्वास नई चुनौतियां पैदा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत के विकास के लिए 7 प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
1: मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन, मैंने ऐसे 7 सेक्टर्स की बात की जिन पर भारत का आज बहुत ज्यादा फोकस है। और इसलिए भारत आज पॉलिसी लेवल पर नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स कर रहा है ताकि हमारा फ्यूचर सुरक्षित हो, गवर्नेंस पर रिफॉर्म्स कर रहा है, ईज ऑफ लिविंग के लिए रिफॉर्म्स कर रहा है। ये रिफॉर्म्स हमारे लिए कंपल्सन नहीं है, ये हमारा कमिटमेंट है, ये हमारा कन्विक्शन है।
0: भारत की मेजबानी में आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में आज ब्रिक्स युवा मंत्रियों की बैठक होगी, जबकि कल ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक आयोजित की जाएगी। बैठकों की अध्यक्षता युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया करेंगे। राज्य मंत्री रक्षा खड़से भी इसमें शामिल होंगी। युवा कार्य मंत्रियों की बैठक में युवा विकास, शिक्षा, कौशल, रोजगार, उद्यमिता जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। भारत ने 22 भारतीय नाविकों के साथ 2 वाणिज्यिक जहाजों के अपहरण का मामला सोमालिया के अधिकारियों के सामने उठाया है। भारतीय उच्चायोग के अनुसार सभी भारतीय नाविक सुरक्षित बताए जा रहे हैं। भारत ने कहा है कि वो अपने नाविकों की सुरक्षा और कल्याण को सबसे ज्यादा महत्व देता है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि भारत अशांत समुद्री क्षेत्रों में काम कर रहे भारतीय नाविकों की सुरक्षा को लेकर गंभीर है। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने आगामी 57वें अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव इफ्फी की तैयारियों के लिए गठित समिति की पहली बैठक की अध्यक्षता की। इफ्फी इस वर्ष 20 से 28 नवंबर के बीच गोवा में आयोजित होगा। बैठक को संबोधित करते हुए डॉक्टर मुरुगन ने युवा छात्रों, उभरते फिल्म निर्माताओं और भारतीय फिल्म उद्योग के गुमनाम नायकों के लिए अधिक अवसरों पर जोर दिया। सरकार ने आज 4 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए क्लोरोनिरामाइन मैलेट और फिनाइलएफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड वाले सभी फिक्स डोज कॉम्बिनेशन के निर्माण, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगा दिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर इन दवाओं पर स्पष्ट चेतावनी देना अनिवार्य किया है कि 4 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को ये दवाएं नहीं दी जानी चाहिए। झारखंड के रामगढ़ जिले में मां छिन्नमस्तिका सीमेंट एंड स्टील पावर प्लांट में कल रात टरबाइन में तेज धमाके के बाद भीषण आग लग गई। इस हादसे में 3 इंजीनियरों की मौत हो गई जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ है। मृतकों की पहचान रांची के संजीव कुमार केसरी, बोकारो के विनीत महतो और गढ़वा के अभिषेक पांडे के रूप में हुई है। तेलंगाना के यादाद्री भुवनगिरी जिले के पोचमपल्ली मंडल में स्थित हेजलो लैब्स प्राइवेट लिमिटेड में देर रात बड़ा विस्फोट हुआ। हादसे में 2 कर्मचारियों की मौत हो गई जबकि 9 अन्य घायल हुए हैं। एक केमिकल रिएक्टर के अचानक फटने से औद्योगिक इकाई में जोरदार धमाका हुआ और भीषण आग लग गई। रिएक्टर फटने के कारणों की जांच की जा रही है। मौसम विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, पूर्वी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में तेज वर्षा होने की संभावना है। मौसम विभाग ने मछुआरों को सोमवार तक अरब सागर के पूर्व मध्य हिस्सों और बुधवार तक बंगाल की खाड़ी के पश्चिम मध्य हिस्सों में समुद्र में न जाने की सलाह दी है। भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने लुजान डायमंड लीग में रजत पदक जीत लिया है। उन्होंने 88.05 मीटर तक भाला फेंक कर दूसरा स्थान हासिल किया। एफआईएच पुरुष हॉकी विश्व कप के दूसरे चरण में आज एम्स्टरडैम में भारत का सामना मेजबान नीदरलैंड से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 7:30 बजे शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

एक श्रोता ये लिखती हैं कि यूनुसी, ये संवाद वाली इबारत तो जैसे अब आपकी पहचान हो गई है। हम भी कभी कभी करते हैं गीतों के माध्यम से बातें और बड़ा ही मजा आता है। वहीं दूसरी तरफ एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि भाई आपसे किसी सार गर्भित गद्यांश की उम्मीद रहती है और गानों की आधी अधूरी पंक्तियां जोड़कर आप इबारत न दिया करें। तो भाई हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि ये जो पिछले कुछ हफ्तों से जब भी सुरीला सफर कार्यक्रम में आपका ये दोस्त आता है, दो लोगों की बातचीत को गानों में पिरोता है और उसके जरिए एक इबारत तैयार होती है। अगर आपको लगता है कि ये ठीक तरीका नहीं है तो बाकायदा गद्यांश लिखा जा सकता है जिसमें कोई शब्द होंगे और उन शब्दों पर गाने होंगे। पर जिस तरह से आज बहुत ही मुश्किल पंक्तियों को मैंने पिरो दिया है गानों में, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्हें गाने खोजने में बहुत मजा आया और बहुत देर लगी गाने खोजने में? कई ऐसे लोग हैं मैंने देखा कि जिनके गानों को लेकर जवाब बड़े गलत आए हैं। मतलब ये है कि कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने कुछ पंक्तियों को थोड़ा सा गलत पहचान लिया है, लेकिन फिर भी कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने बाकायदा बहुत अच्छे से पहचाना। कैफी आजमी का लिखा हुआ ये गाना था। कुछ रोता है जिन्होंने से बोला है, गाना है गुलजार साहब का जो कि नहीं है। चलिए अगले गाने की तरफ बढ़ते हैं और ये जो गाना है ये किसी के आने से चेहरे पर चमक जाने वाली खुशी का गाना है। इस वीकेंड आपके घर कौन आ रहा है, क्या आपका चेहरा खिल उठे? आपको अपने घर किसके आने का इंतजार है?

वही कितना मजा आया ये पढ़ के कि एक श्रोता लिखते हैं कि हमारे साथ रूठने वाली तो हमारी नवासी है, एक चॉकलेट और एक आइसक्रीम में मान जाती है। इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो ये लिख रही हैं कि काश मैं इधर बात कर सकती लेकिन अपनी सहेली के साथ अस्पताल में हूं, मतलब किसी मरीज को देखने के लिए गई हुई है। इसके अलावा एक और श्रोता है जो कहते हैं कि मनाने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि कान पकड़ो और कुछ अपनी शक्ल ऐसी बनाओ कि सामने वाले को लगे कि मस्का मारा जा रहा है। भाई बड़े अनुभवी हैं आप, बड़ी स्टाइल से आपने बताया है, एकदम तस्वीर आंखों के आगे खींच गई। इसके अलावा एक और श्रोता है जो ये लिख रहे हैं कि मेरी श्रीमती जब मुझसे रूठ जाती है तब मैं उन्हें अदरक इलायची वाली चाय बनाकर खुद अपने हाथों से पिलाता हूं। देखिए भाई सीखिए कुछ। इसके अलावा और भी बहुत सारे श्रोता हैं जिन्होंने रूठने मनाने के कुछ नुस्खे लिखे हैं। आज के इस कार्यक्रम में ऐसा भी होगा ये तो हमने सोचा ही नहीं था। अगर आप में से किसी श्रोता को रूठने मनाने वाले जो नुस्खे हैं अभी भी पता हैं और उसमें से कुछ नुस्खे इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हैं तो जरा लिख दीजिए, हम जरूर शामिल कर लेते हैं। इसके अलावा एक श्रोता ये लिखते हैं कि मेरी कोशिश ये रहती है कि कोई मुझसे रूठे ना और अगर गलती से कोई रूठ लेता है तो मैं माफी मांग लेता हूं। और इसके अलावा एक और श्रोता है, इन्होंने बड़ा शॉर्टकट मारा है, लिखते हैं कि अब तो बहुत ईजी है, रूठने वाले को मनाने के लिए व्हाट्सअप ऑन करो, फ्लावर्स, केक और सॉरी सेंड कर दो। भाई अगर इतने आसानी से लोग मान जाए तो फिर बात ही क्या है। व्हाट्सएप पर नकली फ्लावर्स, नकली केक, नकली सॉरी, क्या इससे कोई मानता है? चलिए अब ये है कि एक श्रोता जो है उन्हें शायरी सूझी, उन्होंने लिखा, रूठना तुम्हारा भी अजीब मौसम है, तुम चुप हो तो कमरे में रखी चीजें भी जैसे धीरे धीरे बोलने लगती हैं। इसके अलावा एक और श्रोता है जो ये कहते हैं कि रूठते तो हम भी हैं पर एक बात हमें हमारी अच्छी लगती है कि हम मान भी जाते हैं, ज्यादा देर तक हम रूठे नहीं रह सकते, ये भी एक मजेदार चीज है। तो आज के इस कार्यक्रम का रास्ता जो है वो रूठने मनाने की तरफ मुड़ गया है। एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि एक उम्र के बाद कोई किसी को मनाता नहीं है, ये भी अनुभव की बात है। फिर एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि हमारी रूठने की उम्र पार हो चुकी है, अब तो सिर्फ समझौते में गुजर रही है। और इसके अलावा कई श्रोता है जिन्होंने लिखा है कि आज की इबारत कठिन है लेकिन इस इबारत में जो बातचीत का अंदाज है वो पसंद आता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया। और अब चलते हैं भीगने की तरफ। इस बार की बारिश में सबसे ज्यादा कब भीगे आप, ये जरूर बताइएगा कि इस बार की बारिश में सबसे ज्यादा कब भीगे आप। ऐसा अक्सर होता है कि जब हम रेनकोट या छतरी लेकर नहीं निकले तब जरूर ऊपर वाला टॉर्च लगा के देख लेता है और आपके ऊपर बारिश करवा देता है। क्या आपके साथ ऐसा हुआ कि मौका देखकर बारिश ने आपके ऊपर लगाया हो चौका?

0: साथ में मिली एक अजनबी से कोई आगे न पीछे तुम ही कहो ये कोई बात है।
1: इस बारिश में सबसे ज्यादा भीगने का मजा आप में से किसने लिया है ये जरूर बताइए।

भाई हमने चाहा था कि आप में से बहुत सारे लोग भीगने के अपने किस्से बताएं तो बड़ा मजा आए। एक श्रोता है, लिख रहे हैं कि फिलिस्तीन में तो पिछले 7 दिनों में खूब बारिश हुई और काम ही ऐसा है कि बाइक में चाहे रेनकोट भी पहनना पड़ता है तब भी सारा बदन पानी से तर हो जाता है। एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि बारिश में भीगना भी बड़ा मजेदार अनुभव है। पहली बूंद चेहरे पर पड़ती है तो लगता है आसमान ने चुपके से छेड़ दिया हो। फिर बाल कपड़े जूते सब अपनी अपनी शिकायत लेकर बैठ जाते हैं, लेकिन मन है कि बचपन की तरफ लौटना चाहता है। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखती है कि मुझे भीगना पसंद नहीं है लेकिन मुझे भीगने वाले गीत पसंद हैं। इसके अलावा एक और श्रोता है, कहते हैं कि जैसे ही घर से निकले तो बारिश ने भिगो दिया, जब तक गाड़ी तक पहुंचे तब तक भीग चुके थे। इसके अलावा एक और श्रोता है, अचानक बारिश में भीगने का ज्यादा अनुभव तो नहीं पर बारिश के मौसम में धूप खिली हो और छत पर कपड़े सुखाने डालें तो बादल जैसे भागे दौड़े चले आते हैं और हम कितना भी भाग कर जाएं सूखे हुए कपड़ों को गीले होने से बचा नहीं पाते। ये मजेदार बात है। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि बरसात में खेतों की मेड़ों पर भीगते भीगते मजा आता है। बहरहाल खेतों पर छाता लेकर श्रीमती जी गर्मा गर्म नाश्ता लेकर आई हूं तो बात ही क्या है। एक और श्रोता है लिखते हैं कि कहीं बाइक चलाता हूं तो भीग जाता हूं अक्सर। एक और श्रोता है लिखते हैं कि

धर्मशाला ओवर ब्रिज में ड्यूटी जाते समय अचानक बारिश होने लगी और मैं भीग गया। घर वापस गया, कपड़े बदले, रेनकोट पहना और उसके बाद वापस काम पर गया। इसके अलावा एक और श्रोता है जिन्होंने लिखा है, भात लावणी यानी चावल की रोपाई देखने नसरापुर गए थे, तब बारिश में बहुत ज्यादा भीगे थे। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि अगर मेरी वाइफ रूठ जाती है तो मैं सॉरी कहता हूं और जादू की झप्पी देता हूं। इसके अलावा एक और श्रोता है जो ये लिखते हैं कि भाई बहुत ज्यादा वायरल फीवर फैला हुआ है आजकल, तो इसलिए भीगने से हम बचते हैं। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि छत्रपति संभाजी नगर में तो इतनी बारिश ही नहीं हुई कि हम भीग जाएं। और इसके अलावा इतनी सारी बातें लोगों ने बारिश के बारे में की है। एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि हमारे यहाँ सीजन की बारिश कम होती है, लेकिन जब बारिश होती है तो हम अपने टेरेस पर चले जाते हैं और भीगते हैं। बारिश की इतनी सारी बातें, कोई तो ऐसा होगा जो इस वक्त कार्यक्रम सुनते हुए भी बारिश का मजा ले रहा होगा, भीग रहा होगा। ये सच है कि वायरल फीवर का डर रहता है, लेकिन ये भी होता है कि बारिश हुई और लोग निकल पड़े लॉन्ग ड्राइव पर। आपके शहर के आसपास ऐसी कौन सी जगह हैं जहां बारिश में मनाया जा सकता है पिकनिक, जहां लोगों की भीड़ आती है बारिश के मजे लेने के लिए?

भाई इतनी जल्दी गाना खत्म हो गया। जो अच्छे गाने होते हैं उनके खत्म होने पर यही लगता है, अरे ये गाना खत्म हो गया। एक श्रोता है जो कहते हैं कि हमारा सबसे नजदीकी शहर अयोध्या है, जहां राम की पौड़ी पर 12 महीने नहाते भीगते पिकनिक का मजा लीजिए, पुण्य कमाइए। एक और श्रोता है जो अपने जलंधर शहर के आसपास के घूमने के इलाकों के बारे में बता रहे हैं। और इसके अलावा एक और श्रोता है

0: जो कह रहे हैं कि भाई हमारे यहाँ तो नर्मदा जी काफी ऊपर तक आ चुकी हैं और शासन ने मना किया, उसके बावजूद लोग पुल पार कर रहे हैं। और इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो ये कह रहे हैं कि बनारस में बारिश के समय तीन जगहों पर सब लोग पिकनिक करते हैं, सबसे पहले सारनाथ, फिर नमो घाट और फिर बनारस का अस्सी। फिर क्या मजा है, तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन भी मिलते हैं। इसके अलावा एक और श्रोता है जो कह रहे हैं कि आप भोपाल आ जाइए, कोलार डैम चलते हैं, जंगल में चलते हैं, पिकनिक मनाएंगे, बहुत मजा आ जाएगा। इसके अलावा एक और श्रोता है जो ये कहते हैं कि बीते 3 महीनों से हम पुणे में हैं, लोनावाला, तम्हिणी घाट, अनेकों झरने और इस बार तो इंद्रदेव पूना पर बहुत ज्यादा मेहरबान हैं। और जहां तक बारिश में भीगने की बात है तो हमारे एक दोस्त हैं जिनका नाम है शकील आजमी, वो कहते हैं खुद को इतना मत बचाया कर, खुद को इतना मत बचाया कर, बारिशें आए तो भीग जाया कर, क्या समझे आप। एक और श्रोता हैं जो ये लिखते हैं कि बारिश में भीगना तो होता है पर कभी कभी आंसू भी भिगो देते हैं, जज्बाती बात इन्होंने लिखी है। एक श्रोता लंदन में है जो बारिश का इंतजार कर रही हैं और कहती हैं कि इतनी गर्मी कि बगीचे की घास तक सूख गई है। एक और श्रोता है जो इंदौर में है, लिखती हैं कि मांडू बहुत आसपास है और वहां लोगों की बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ रहती है। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखती है कि मैं और मेरे पतिदेव जब भोपाल में मिलते थे तो बड़े तालाब के किनारे हाथों में गर्मा गर्म भुट्टा और फिर भीगने का मजा। एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि हमारे शहर के आसपास कारहांडला का जंगल है और ताडोबा है, पिकनिक मनाने के लिए बड़ी सुंदर जगह है। तो इस तरह से बहुत सारे श्रोताओं ने ये लिखा है कि किस तरह से उन्हें भीगने में मजा आता है और कैसे उनके घर के आसपास बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां बारिश के दिनों में मनाया जा सकता है पिकनिक। और इसके अलावा एक और श्रोता है जो सागर शहर में पिकनिक मनाने की जगहों के बारे में लिख रही हैं। एक श्रोता है जो गोरखपुर में हैं और लिखते हैं कि रामगढ़ ताल गोरखपुर में बारिश में घूमने का बहुत ज्यादा मजा आता है, बिल्कुल अब तो वहां जो चलने के लिए जगह बन गई है वो भी बड़ी सुंदर है। एक और श्रोता है जो लिखते हैं जयपुर में आमेर, जलमहल, नाहरगढ़, जयगढ़, क्या बात है। तो भैया सारे देश की जो बारिश की शानदार जगह हैं उनके बारे में हमें पता चल गया कि कहां कहां कैसे कैसे पिकनिक मनाया जा सकता है। खंडवा के पास हनुमंत्या टापू है, बैक वाटर का बहुत ही सुंदर पिकनिक स्पॉट, वहां भी बहुत मजा आता है। एक और श्रोता है जो लिखती है कि 5 और 6 जुलाई को बहुत बारिश हुई और हम लोग मार्वे बीच चले गए, बिल्डिंग की पूरी टोली गई थी पर भीगने नहीं दिया गया क्योंकि रेड अलर्ट लगा था। बिल्कुल समंदर जब चढ़ा हुआ हो तो वहां नहीं जाना चाहिए, बारिश में दुर्घटनाएं भी बहुत होती हैं। चलिए आज सुबह से आपके होठों पर कौन सा गाना तैर रहा है,
1: रंगीला रे,
0: क्या ये गाना इस गाने की गीतकार कौन है ये आपको है बताना। और हाँ ये भी बताइए कि आपने सबसे सबसे अभी अभी कौन सी फिल्म देखी, नई या पुरानी, एकदम अभी।

भाई बड़ी मजेदार बात है। बहुत सारे श्रोताओं ने बहुत अलग अलग फिल्में देखी हैं, और ये जो सवाल है ना कि अभी आपकी देखी हुई ताजा फिल्म कौन सी है, ताजा फिल्म का मतलब ये है कि व्हाट फिल्म हैव यू सीन वेरी रिसेंटली, चाहे वो नई हो या पुरानी हो, तो कितनी मजेदार फिल्मों का इंद्रधनुष सज गया। बिल्कुल ताजा ताजा रिलीज हुई फिल्मों में से भी कुछ देखी हैं। अब जैसे एक श्रोता है जिन्होंने अपना देश देखी है, एक और श्रोता है जिन्होंने पुरानी वाली खामोशी देखी है, यानी वो खामोशी जिसमें गाना है हमने देखी है, उन आंखों की महकती खुशबू या तुम पुकार लो। इसके अलावा एक और श्रोता है जिन्होंने दोस्ती देखी है, वाह वाह वाह, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत वाली दोस्ती। और इसके अलावा बहुत सारे श्रोता ऐसे हैं जिन्होंने बंटवारा 2 देखी है और आवारापन 2 या 3 जो भी है वो देखी है। इसके अलावा एक श्रोता है जिन्होंने टैक्सी नंबर 9211 उनकी देखी हुई आखिरी फिल्म है। एक श्रोता है जिन्होंने परख फिल्म देखी है और उनके होंठों पर सजा हुआ है गाना मिला है किसी का झुमका। वाह वाह वाह वाह वाह, क्या बात है। इसके अलावा आज का अर्जुन फिल्म कोई श्रोता है जो देख रही थी और लाइट चली गई। और इसके अलावा दीवाना मस्ताना कोई देख रहा है, कोई देख रहा है हम साथ साथ हैं, दो आंखें बारह हाथ, साहब बीवी और गुलाम, और इसके अलावा मैं वापस आऊंगा, और इसके अलावा देखिए मेरे महबूब, ओ हो, नमकीन, गुलजार साहब की फिल्में भी कितने सारे लोग देख रहे हैं, और इसके अलावा भागम भाग, जंगल और कुदरत। देखिए सिर्फ नाम अगर पढ़ें तो कितने सारे लोग क्या क्या फिल्में देख रहे हैं। एक श्रोता लिख रहे हैं कि एक बार लॉन्ग ड्राइव पर निकले थे, सोचा था रास्ते में बारिश होगी, गाने बजेंगे, मौसम रोमांटिक होगा, बारिश हुई, गाने बजे पर रोमांस की जगह पेट ने आवाज लगाई, पहले कुछ खाने का इंतजाम करो फिर आगे बढ़ना, आखिरकार मंजिल से पहले एक ढाबा मिल गया, तो समझ में आया कि कुछ सफर पेट के रास्ते भी तय किए जाते हैं। मजाक की बात लेकिन दिलचस्प। और इसके अलावा कई श्रोता हैं जो अलग अलग तरह की फिल्में देख रहे हैं, जैसे एक श्रोता है जिन्होंने स्पाइडरमैन देखी है, उसके अलावा देखिए कितनी फिल्में भाई, आराधना कोई देख रहा है, कोई गाइड देख रहा है। गाइड से एक चीज याद आ गई, आज गाइड फिल्म में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले एक व्यक्ति का जन्मदिन है, मार्को की भूमिका निभाई।

थी। उनकी याद का दिन आज है। कौन है वो कलाकार ये बताइएगा। योगेश के बोल आ रहे हैं अब। जाहिर है कि सवाल ये तो नहीं होगा। इस गाने के संगीतकार बताइए।

इस गाने के जरिए योगेश जी बहुत बहुत बहुत याद आया, आपके इस दोस्त को उनके साथ बहुत वक्त बिताने का मौका मिला है और एक बेमिसाल इंसान, सादा लेकिन कितने गहरे गीतकार। कभी उनके बारे में बातें की जाएंगी। एक श्रोता हैं जो ये लिख रहे हैं कि गाइड के मार्को यानी किशोर साहू जी, उनकी याद का दिन है। जी हाँ, किशोर साहू, उनकी याद का दिन आज 22 अगस्त 1980 को उनका निधन हुआ था। और किशोर साहू मध्य प्रदेश के राजनांदगांव के रहने वाले थे और वहां से मुंबई आए और एक्टिंग की दुनिया में तो नाम कमाया, लेकिन वो एक निर्देशक भी थे और फिल्म लेखक भी थे। बहुत कम लोगों को पता है कि उन्होंने कुछ फिल्में लिखी हैं और इसके अलावा कई फिल्मों का निर्देशन भी किया है। क्या आपको पता है कि किशोर साहू की निर्देशित मशहूर फिल्में कौन सी हैं? एक फिल्म मैं बताता हूं, बाकी आप बताइएगा। हरे कांच की चूड़ियां किशोर साहू के निर्देशन वाली फिल्म थी। एक श्रोता है जो लिखते हैं कि मायूसी में गाने सुबह पर आते हैं, बड़ी बड़ी सुनी सुनी सी है जिंदगी, किसका रास्ता देखें, जिंदगी देने वाले सुन। एक श्रोता है जो कहते हैं अपनी कहानी छोड़ जा, कुछ तो निशानी छोड़ जा। और इसके अलावा कहानियां सुनाती है पवन नाती जाती, ये श्रोता को बहुत ज्यादा पसंद है। एक श्रोता लिख रहे हैं कि आज तो जैसे गानों का रिवीजन हो रहा है। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि इंदौर में एक पुराना सिनेमा घर है मिल्की वे, जिसकी छत पतरे की थी और बारिश आने पर अलग ही पार्श्व संगीत बजता था। अब मुझे तो जावेद साहब के बोल याद आ गए, बजता है जल तरंग टीम की छत पे यूं। शायद इसी तरह के किसी एहसास के लिए उन्होंने लिखा होगा, बजता है जल तरंग टीन की छत पे यूं। इसके अलावा एक और श्रोता है जिन्होंने ये लिखा है कि किशोर कुमार की मखमली आवाज, योगेश के दार्शनिक बोल, राजेश रोशन का ये संगीत, ये गाना अपने आप में अनमोल है। तो आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारे श्रोता अभी भी किशोर साहू को याद कर रहे हैं, मार्को जिनकी याद का दिन आज है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक बहुत ही अनमोल गाने की तरफ बढ़ते हैं जो एक बहुत नाजुक से एहसास को बयां करता है। सवाल ये है कि इस गाने को किसने लिखा?

143 लिखते हैं कि शायद ये गीत का मालूम रूही ने लिखा है, जो गलत जवाब है। और इसके अलावा एक और श्रोता है जिन्होंने लिखा है कि भाई ये गाना जो है ये कैफ भोपाली का लिखा गाना है और ये सही जवाब है। कैफ भोपाली एक बहुत ही नामी शायर, अगर आप मुशायरों के शौकीन रहे हैं तो वो ये गजल जो है बहुत

तरन्नुम में सुनाया करते थे, तेरा चेहरा कितना सुहाना लगता है, तेरे आगे चांद पुराना लगता है, और तिरछे तिरछे तीर नजर के लगते हैं सीधा सीधा, दिल पे निशाना लगता है, और आग का क्या है पल दो पल में लगती है, बुझते बुझते एक समाना लगता है। ये कैफ भोपाली, बहुत ही मशहूर वयोवृद्ध शायर भोपाल के, और उन्होंने ये गाना लिखा था, बहुत ही मशहूर गाना है। बहुत सारे श्रोताओं के कमेंट्स हैं, एक गुजराती कमेंट है जिसे मैं ट्रांसलेट करके पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं, अगर वो मुझे मिल गया। वो जिस तरह से लिखा है, मैं अगर ये लिपि पढ़ने की कोशिश करूं तो लिख रहे हैं कि मुझे तो उदास गाने बहुत ज्यादा पसंद हैं, आए तुम याद मुझे जब जब बहार आई, इस तरह के गाने पसंद हैं। देखिए मैंने गुजराती लिपि भी पढ़ ली। इसके अलावा एक श्रोता है जो लिखते हैं कि आज की तेज प्रश्नावली जो है और दिलकश गाने हैं, शुक्रिया। और इसके अलावा चिलमन का अंदाज, आनंद बख्शी ने भी चिलमन पर एक गाना लिखा है, सही पहचाना है आपने, उस गाने की बात बाद में करेंगे। इसके अलावा मन्ना डे का भी एक चिलमन वाला गाना है, अगर आपको याद हो तो जिक्र कीजिएगा। यहाँ पर एक श्रोता है जो कह रहे हैं कि धुएं की लकीर का एक गाना लोकप्रिय हुआ था, तेरी झील सी गहरी आंखों में कुछ देखा है। एक श्रोता है जिन्होंने मुझे करेक्ट किया है, राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में है, मध्य प्रदेश में नहीं। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, हम पुराने जमाने के लोग हो गए, उस जमाने में राजनांदगांव मध्य प्रदेश में हुआ करता था, अपने सुधार किया, शुक्रिया राजनांदगांव छत्तीसगढ़। और इसके अलावा बहुत सारे और भी श्रोता है, जरा सामने तो आओ चलिए, उनके अकेलेपन का गाना है। इसके अलावा कुछ और श्रोता है जिन्हें उदास गाने बहुत ज्यादा पसंद आते हैं। आपके लगातार कमेंट्स आ रहे हैं, उसमें से कोशिश ये कर रहा हूं कि देखिए, काली घटा, गृहस्थी, दिल अपना और प्रीत पराई जैसी फिल्में किशोर साहू ने निर्देशित की। दिल अपना और प्रीत पराई, मुझे क्यों लग रहा है कि दिल अपना और प्रीत पराई किशोर साहू की निर्देशित, यस दिल अपना और प्रीत पराई किशोर साहू की निर्देशित फिल्म है, बिल्कुल सही है। और इसके अलावा शुक्रिया इन तमाम जवाबों के लिए। अगला गाना आ रहा है, और ये बताइएगा कि फिल्म प्यासा आपने कितनी बार देखी है।

एक श्रोता लिखती हैं कि प्यासा फिल्म बार बार देखी है फिर भी मन में प्यास रह जाती है। इसके अलावा बहुत सारे अलग अलग श्रोता हैं। एक श्रोता ये हैं जो कहते हैं कि सबसे दिलचस्प लगेगा जब आखिर में आप कहेंगे अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं। आपको कैसे अंदाजा लगा कि आखिर में यही गाना बजेगा, क्योंकि यही गाना तो हमने रख छोड़ा है आखिर में बजाने के लिए। एक दौर था जब दूरदर्शन पर रविवार को फिल्म आया करती थी और रविवार को जो फिल्म आती थी उसका बहुत इंतजार रहता था। उस दौर में देखी गई जो सबसे यादगार फिल्म थी आपकी वो कौन सी थी, ये बताइएगा। दूरदर्शन के जमाने में जो रविवार की सबसे यादगार फिल्म होती थी, एक झलक इस गाने की बजा रहे हैं क्योंकि इस गाने का एक अंश आज की इबारत में था और उसके बाद आपसे विदाई लेने वाला वो गाना जिसके बारे में अभी अभी हमने कमेंट पढ़ा।

0: ये गाना जैसे रोमांच पैदा कर देता है। शैलेंद्र के ये बोल, सली चौधरी के तर्स, बेमिसाल गाना है। इस गाने को काटते हुए अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन इसे शामिल करने का मन था। और अब वो गाना जो आप सभी से ये कहने की इजाजत देता है कि अब हम चलते हैं।
1: अभी न जाओ छोड़ कर,

श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे विविध भारती के कार्यक्रम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का हाफ लंग केंद्र है। अब से कुछ क्षण पश्चात यानी कि 2 बजे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से मिड डे न्यूज तथा 2:15 पर दोपहर समाचार रिले किए जाएंगे।

0: short India of a coveted medal at the prestigious championship. The duo also became only the second Indian women's doubles pair to win a medal at the World Championships. Jwala Gatta and Ashwini Ponappa were the first Indian combination to achieve this feat when they clinched the bronze in London 15 years ago. Earlier in the day, Indian men's doubles pair of Sattvic Sairaj Janki Reddy and Chirag Shetty crashed out of the tournament after losing to China's Liang Weikeng and Wang Chang. The Indian duo went down to the fourth-seeded Chinese pair in straight games 18-21, 9-21 in the quarterfinals. With Vishnu P.S., Bhanu Pratap Singh, Akashwani News, Delhi.
1: And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Government imposes restrictions on manufacturing, sale and distribution of all fixed-dose combinations containing chlorpheniramine maleate and phenylephrine hydrochloride for children aged below 4 years. India to host BRICS Youth Ministers meeting at Vishakhapatnam in Andhra Pradesh this evening. India raises with Somalia issue of hijacking of two foreign flagged commercial vessels with 22 Indian sailors on board. US imposes 50% tariffs on $20 billion worth of Canadian products after trade talks with US fail. Canada says it will retaliate. IMD issues orange alert for very heavy rainfall over East Madhya Pradesh today. And in BWF Badminton World Championships, Indian women's doubles pair of Teresa Jolly and Gayatri Gopi Chand to be up against China's Liu Shengshu and Tan Ning in semi-finals this afternoon. And with that, we end the midday news. Namaskar. आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं फरहत नाज। सरकार ने 4 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए क्लोरोफेनिरामाइन मैलेट और फेनाइलेफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड वाले सभी फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन के निर्माण, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगाया। भारत आज शाम आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में ब्रिक्स युवा मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। भारत ने सोमालिया के साथ 2 विदेशी ध्वज वाले वाणिज्यिक जहाजों के अपहरण का मुद्दा उठाया। इसमें 22 भारतीय नाविक सवार थे। अमेरिका ने व्यापार वार्ता विफल होने के बाद कनाडा के 20 अरब डॉलर मूल्य के उत्पादों पर 50% टैरिफ लगाया। कनाडा ने भी समान स्तर के जवाबी टैरिफ लगाने की बात कही। पूर्वी मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट और BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में भारतीय महिला जोड़ी त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद आज सेमीफाइनल में चीन की लियू शेंगशू और टैन निंग से खेलेंगी। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने आज 4 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए क्लोरोफेनिरामाइन मैलेट और फेनाइलेफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड वाले सभी फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन के निर्माण, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगा दिया है। एक रिपोर्ट।
2: स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर इन दवाओं पर स्पष्ट चेतावनी देना अनिवार्य किया है कि 4 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को ये दवाएं नहीं दी जानी चाहिए। यह कदम छोटे बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। सरकार ने निर्माताओं को निर्देश दिया है कि इन दवाओं के लेबल, पैकेज में दिए गए निर्देशों और प्रचार सामग्री पर स्पष्ट रूप से चेतावनी लिखी जाए। सरकार ने कहा है कि ऐसे दवाओं के इस्तेमाल से 4 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जोखिम हो सकता है और इनके सुरक्षित विकल्प उपलब्ध हैं। इस वर्ष जून में भी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने देश भर में लोगों के इस्तेमाल के लिए 16 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन दवाओं के निर्माण, बिक्री और वितरण पर रोक लगाई थी। शिवांग के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: वहीं सरकार ने टेलीविजन चैनलों के लिए भी विज्ञापन की 12 मिनट की अधिकतम अवधि की सीमा हटाने की अधिसूचना जारी कर दी है। यह फैसला केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम 1994 में संशोधन को राजपत्र में अधिसूचित किए जाने के साथ लागू हो गया है। इससे पहले सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने एक बयान में कहा था कि टेलीविजन प्रसारण क्षेत्र में हुए बदलावों को देखते हुए विज्ञापन की अवधि से जुड़े प्रावधानों की समीक्षा करने की जरूरत महसूस की गई। मंत्रालय ने कहा कि भारत में टेलीविजन क्षेत्र विज्ञापनों पर काफी निर्भर है, चाहे कोई चैनल पेड हो या फ्री टू एयर। भारत की मेजबानी में आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में आज ब्रिक्स युवा मंत्रियों की बैठक होगी, जबकि कल ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक आयोजित की जाएगी। बैठकों की अध्यक्षता युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया करेंगे। राज्य मंत्री रक्षा खडसे भी इसमें शामिल होंगी। युवा कार्य मंत्रियों की बैठक में युवा विकास, शिक्षा, कौशल, रोजगार, उद्यमिता जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी।
3: डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज

0: ब्रिक्स देशों के मंत्रियों और वरिष्ठ प्रतिनिधियों के साथ आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम के निकट ऐतिहासिक थोटल कोंडा बौद्ध विरासत स्थल का दौरा किया। डॉ मांडविया ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत थोटल कोंडा में पौधारोपण भी किया। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा है कि समय पर फैसले देने वाली न्याय व्यवस्था वैश्विक विश्वास बढ़ाती है, कारोबार सुगमता को मजबूत करती है और किसी देश को निवेश तथा आर्थिक विकास के लिए अधिक भरोसेमंद बनाती है। नई दिल्ली में 11वें ब्रिक्स लीगल फोरम को संबोधित करते हुए न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि मजबूत संस्थान, विशेष रूप से प्रभावी न्याय व्यवस्था आर्थिक विकास की आधारशिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ने लाइसेंस राज के दौरान उत्पादन को दंडित करने के अपने दृष्टिकोण में मौलिक परिवर्तन किया है। अब उसके स्थान पर सरकारी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव पीएलआई योजना के माध्यम से इसे पुरस्कृत किया जाता। इकोनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड लीडर्स फोरम 2026 को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने पिछली सरकारों की उस सोच की आलोचना की जिसमें जानबूझकर चीजों की कमी बनाए रखी जाती थी ताकि लोगों को सरकार पर निर्भर रखा जा सके। शासन की सोच में परिवर्तनकारी बदलाव का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने नकारात्मक प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव मॉडल की तुलना वर्तमान पीएलआई योजना से की।
1: जहां पहले प्रोडक्शन बढ़ाने पर पनिशमेंट मिलता था, वहीं आज हमारी सरकार प्रोडक्शन बढ़ाने पर इंसेंटिव दे रही है। पीएलआई स्कीम की सक्सेस दुनिया देख रही है। सिर्फ इस एक योजना की वजह से करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए का एक्चुअल इन्वेस्टमेंट हुआ है। 22 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का प्रोडक्शन और सेल्स हुई है। 15 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का एक्सपोर्ट हुआ है और 14 लाख से ज्यादा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब बनी है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार सप्तधारा पर विशेष ध्यान दे रही है। इसमें विनिर्माण, प्रौद्योगिकी और हरित अर्थव्यवस्था सहित 7 प्रमुख क्षेत्र शामिल हैं।
1: मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन, मैंने ऐसे 7 सेक्टर्स की बात की जिन पर भारत का आज बहुत ज्यादा फोकस है और इसलिए भारत आज पॉलिसी लेवल पर नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स कर रहा है ताकि हमारा फ्यूचर सुरक्षित हो, गवर्नेंस पर रिफॉर्म्स कर रहा है, ईज ऑफ लिविंग के लिए रिफॉर्म्स कर रहा है कि रिफॉर्म्स हमारे लिए कंपल्सन नहीं है, ये हमारा कमिटमेंट है, ये हमारा कन्विक्शन है।
0: गृहमंत्री अमित शाह ने आज सिलीगुड़ी में पश्चिम बंगाल के पहाड़ी क्षेत्रों से जुड़े सभी पक्षों के साथ बैठक की। इसमें उत्तर बंगाल के पहाड़ी क्षेत्रों की समस्याओं के स्थायी समाधान के लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा के पूर्व अधिकारी पंकज सिंह की अध्यक्षता में एक मध्यस्थ समिति गठित करने का निर्णय लिया गया। ये समिति अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपेगी। ये समाचार हमारी न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत ने 22 भारतीय नाविकों के साथ 2 वाणिज्यिक जहाजों के अपहरण का मामला सोमालिया के अधिकारियों के सामने उठाया है। भारतीय उच्चायोग के अनुसार सभी भारतीय नाविक सुरक्षित बताए जा रहे हैं। भारत ने कहा है कि वो अपने नाविकों की सुरक्षा और कल्याण को सबसे ज्यादा महत्व देता है। पहला जहाज एमटी सिवू 20 अगस्त को यमन के तट के पास अदन की खाड़ी में अगवा किया गया। इसमें 16 भारतीय नाविक समेत 20 लोग सवार थे। दूसरा जहाज एमवी लुत्फ 17 अगस्त को सोमालिया के पुंटलैंड तट के पास अगवा किया गया। इसमें 6 भारतीय नाविक समेत 10 लोग सवार थे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने भी कहा है कि भारत अशांत समुद्री क्षेत्रों में काम कर रहे भारतीय नाविकों की सुरक्षा को लेकर गंभीर है।
2: 2 जहाज हैं, दोनों पर विदेशी झंडे लगे हैं। उन पर कुल 22 भारतीय नाविक सवार हैं। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक वे सभी सुरक्षित हैं। सरकार उनकी सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित करने के लिए इस मामले में संबंधित अधिकारियों से संपर्क में है।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर कल से रूस की 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। यात्रा के दौरान श्री जयशंकर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग से जुड़ी 27वीं बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। अमेरिका ने 20 अरब डॉलर मूल्य के कनाडा के उत्पादों पर 50% टैरिफ लगा दिया है। ये टैरिफ आज लागू हो गए। अंतिम समय में तनाव कम करने के लिए हुई वार्ता विफल रहने के बाद कनाडा ने तत्काल जवाबी कार्रवाई करने की बात कही है। नए अमेरिकी टैरिफ से कनाडा के अमेरिका को होने वाले सालाना निर्यात का करीब 5% हिस्सा प्रभावित होगा। प्रभावित उत्पादों में हॉकी स्टिक और मेडिकल जांच में इस्तेमाल होने वाली लकड़ी की स्टिक भी शामिल है। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने कहा है कि कनाडा

0: भी डॉलर के बदले डॉलर के आधार पर समान टैरिफ लगाएगा। प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने वार्ता विफल होने के लिए वॉशिंगटन को जिम्मेदार ठहराया। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने आगामी 57वें अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव इफ्फी की तैयारियों के लिए गठित समिति की पहली बैठक की अध्यक्षता की। इफ्फी इस वर्ष 20 से 28 नवंबर के बीच गोवा में आयोजित होगा। बैठक को संबोधित करते हुए डॉक्टर मुरुगन ने युवा छात्रों, उभरते फिल्म निर्माताओं और भारतीय फिल्म उद्योग के गुमनाम नायकों के लिए अधिक अवसरों पर जोर दिया। भारतीय जनता पार्टी ने आज राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के सम्मान और संरक्षण के संबंध में एक प्रस्ताव पारित किया। सोशल मीडिया पोस्ट में भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि बीजेपी कांग्रेस पार्टी की कार्यसमिति के उस निर्णय की कड़ी निंदा करती है और स्पष्ट रूप से विरोध करती है जिसमें पार्टी कार्यक्रमों में वंदे मातरम के केवल पिछले दो छंद गाने का निर्णय लिया गया था। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC ने पंजाब सरकार को एक दुष्कर्म के मामले को दबाने के लिए नोटिस जारी किया है। आयोग ने एक शिकायत का संज्ञान लेते हुए आरोपों की जांच कराने को कहा है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि मुख्यमंत्री भगवंत मान की पत्नी ने मामले को दबाने के लिए 5 करोड़ रुपए की मांग की। रामगढ़ में देर रात एक सीमेंट और इस्पात पावर प्लांट में टरबाइन फटने के बाद भीषण आग लग गई। हादसे में 3 इंजीनियरों की मौत हो गई जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है। एक रिपोर्ट।
1: प्रारंभिक जानकारी के अनुसार अत्यधिक तापमान के कारण प्लांट का प्रोटेक्शन सिस्टम फेल हो गया जिससे टरबाइन ओवर स्पीड हो गया और विस्फोट हुआ। प्लांट कर्मचारियों का आरोप है कि कंट्रोल रूम में अत्यधिक तापमान और खराब कूलिंग व्यवस्था की जानकारी प्रबंधन को पहले ही दी गई थी लेकिन समय रहते कोई कार्रवाई नहीं की गई। विस्फोट और आग की सूचना मिलते ही दमकल की कई गाड़ियां घटनास्थल पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हादसे से आक्रोशित ग्रामीणों और स्थानीय लोगों ने प्रभावित परिवारों को मुआवजा और नौकरी देने की मांग को लेकर आज रामगढ़ पतरातु मार्ग जाम कर दिया। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: तेलंगाना के यदाद्री भुवनगिरी जिले के पोचमपल्ली मंडल में स्थित हेजलो लैब्स प्राइवेट लिमिटेड में देर रात बड़ा विस्फोट हुआ। हादसे में 2 कर्मचारियों की मौत हो गई जबकि 9 अन्य घायल हुए हैं। रिएक्टर फटने के कारणों की जांच की जा रही है। मौसम विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मध्य प्रदेश के जिलों में लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है।
2: मध्य प्रदेश में मानसून सक्रिय है, इसके चलते प्रदेश के पूर्वी हिस्से में पिछले 2 दिन से भारी बारिश हो रही है और कई जगह नदियां उफान पर हैं। मौसम विभाग ने आज सिवनी और बालाघाट में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं दतिया, भिंड, निवाड़ी, टीकमगढ़ समेत 12 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। इसके अलावा कई अन्य जिलों में तेज बारिश और हल्की बारिश होने की संभावना जताई गई है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
0: ओडिशा में बाढ़ की स्थिति में सुधार है लेकिन उत्तर और तटीय ओडिशा के कई इलाकों में अब भी पानी भरा हुआ है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य के कई जिलों में करीब 14 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं।
3: उड़ीसा में बाढ़ का संकट अभी भी बना हुआ है और 7 जिलों में लगभग 14 लाख लोग इससे प्रभावित है। हालांकि मुख्य नदियां का जलस्तर घट रहा है लेकिन कई गांव अभी भी पानी से घिरे हुए हैं। बालेश्वर में पानी में डूबे कई गांव के लोग अभी भी नाव पर निर्भर हैं और उन्होंने पके हुए भोजन, सूखे राशन और पीने का पानी की भारी कमी की शिकायत की है। अब तक इस बाढ़ में 13 लोगों की मौत हो चुकी है। इस बीच IMD ने आज से इसी महीने की 26 तारीख तक उड़ीसा में बहुत भारी बारिश का अनुमान लगाया है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: वहीं मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, पूर्वी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी तेज वर्षा होने की संभावना व्यक्त की है। वहीं बिहार, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, उत्तराखंड और पूर्वोत्तर भारत में अगले 2 से 3 दिन के दौरान इसी तरह की स्थिति रहने की स्थिति है। मौसम विभाग ने मछुआरों को सोमवार तक अरब सागर के पूर्व मध्य हिस्सों और बुधवार तक बंगाल की खाड़ी के पश्चिम मध्य हिस्सों में समुद्र में न जाने की सलाह दी है। भारतीय सेना ने हवाई निगरानी, त्वरित प्रतिक्रिया और युद्ध क्षेत्र तक पहुंच बढ़ाने के लिए सीमावर्ती राज्य पंजाब में अत्याधुनिक ड्रोन से लैस अपनी पहली बाज बटालियन का गठन किया है। ये बटालियन आकाश में निगरानी तंत्र और युद्ध क्षेत्र में दुश्मन पर बढ़त के रूप में काम करेगी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO ने प्रतिष्ठानों से आग्रह किया है कि वो EPF के दायरे से बाहर कर्मचारियों के लिए सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कर्मचारी नामांकन अभियान 2026 का लाभ उठाएं। इस अभियान का उद्देश्य नियोक्ताओं के स्वैच्छिक अनुपालन को सुगम बनाना और पात्र श्रमिकों को भविष्य निधि, पेंशन और बीमा के लाभ प्रदान करना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल X

0: @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है और अब बात खेलों की। BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में आज महिला डबल्स के सेमीफाइनल में भारत की त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद का मुकाबला शीर्ष वरीयता प्राप्त चीन की लियू शेंगशू और टैन निंग से होगा। ये मुकाबला नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में खेला जाएगा।
1: भारतीय जोड़ी ने कल चीन की चौथी वरीयता प्राप्त जिया यी फैन और झांगशू जियान को 16-21, 21-15 और 21-13 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। इस जीत के साथ त्रिशा और गायत्री ने इस चैंपियनशिप में भारत के लिए एक पदक पक्का कर लिया है। त्रिशा और गायत्री विश्व चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला युगल जोड़ी भी बन गई है। ज्वाला गुट्टा और अश्विनी पोनप्पा पहली भारतीय जोड़ी थी जिन्होंने 15 साल पहले लंदन में कांस्य पदक जीतकर ये उपलब्धि हासिल की थी। विष्णु पीएस की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से भूपेंद्र सिंह।
0: वहीं FIH पुरुष हॉकी विश्व कप के दूसरे चरण में आज एम्स्टल फेन में भारत का सामना शाम 7:30 बजे से नीदरलैंड से होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने 4 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए क्लोरोफेनिलामाइन मैलेट और फिनाइलेफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड वाले सभी फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन के निर्माण, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगाया। भारत आज शाम आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में ब्रिक्स युवा मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। अमेरिका ने व्यापार वार्ता विफल होने के बाद कनाडा के $20 अरब मूल्य के उत्पादों पर 50% टैरिफ लगाया। पूर्वी मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: श्रोताओं, आपने पहले सुने मिडडे न्यूज, तत्पश्चात दोपहर समाचार जो आकाशवाणी की दिल्ली केंद्र से रिले किए गए थे। ये आकाशवाणी का हाफलंग केंद्र है। अब पुनः एक बार आपको सुनवाते हैं विविध भारती के कार्यक्रम जो आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से रिले किए जाएंगे।

0: मजू सुल्तानपुरी के बोलते एस डी बर्मन की तर्ज। अशोक भोसले की आवाज थी, फिल्म का नाम था सुजाता।
1: रिमझिमी बरसे पानी, आज मोरे अंगना रिमझिमी।

0: सुनहरे ख्वाबों वाली एक लड़की।
1: अगर मेरी माँ बायोलॉजिकल मदर है तो टेक्निकल मदर मेरी विविध भारती है,
0: जिसे बचपन से ही गाने का शौक था।
1: कुर्सी पे बैठ के गा रहे थे और उसको लगा ट्रांजिस्टर ऑन छूट गया है।
2: हम चले तुम चलो सावन की हवा चले।
0: उसने तोड़े पारंपरिक समाज के बंधन।
1: अब जब हम बाइक लेके निकल गए, जब तीन चक्कर लग गया तब याद आया ये तो अब रोकना ही नहीं आता।
0: एक कामयाबी जो मिलते मिलते रह गई।
1: कभी सोचते ही नहीं थे कि हम हारेंगे।
0: जिंदगी ने करवाया एक लंबा इंतजार।
2: सुंदर सपनों की है मंजिल कदम के।
0: संघर्ष की डाल पर कामयाबी का फूल खिला।
2: जैसे तो है पास मेरे तेरे पास मैं।
0: जानी मानी गायिका दीपाली सहाय, बॉम्बे टॉकीज, 29 अगस्त से 12 सितंबर, हर शनिवार शाम 4 बजे, सिर्फ

अभिनेत्री फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर की आवाज में था, मजरू सुल्तानपुरी के बोल, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। इसी के साथ अब आज का

0: तदबाहर नगमे कार्यक्रम खत्म होता है।
1: संगीत सरिता कार्यक्रम में नई श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना हम

0: गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे।
1: किराना अथवा कैराना सहरानपुर उत्तर प्रदेश कुरुक्षेत्र के पास एक छोटा सा गांव है। इस नाम से घराने को ये नाम भी मिल गया ऐसा कहते हैं।
0: अवश्य सुनिए 1 सितंबर से संगीत सरिता में नई श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना सुबह और शाम 6:45 पर सिर्फ विविध भारती पर।
2: रंगमंच से रुपहले पर्दे तक कुछ अनकहे किस्से कुछ यादगार किरदार।
3: रावड़ी राठौड़ में मेरा करैक्टर इंस्पेक्टर का था जो कि पॉजिटिव था और कर्नाटका में एक जगह है जो बहुत मंदिर है जहाँ उसकी जगह पे शूटिंग हुई थी इसकी।
2: अभिनय के दुनिया की बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा। सुनिए उनकी जिंदगी उनके रिश्तों और सिनेमा की बातें।
4: पिज्जा एमएमएस का मैं खास करके बताना चाहूंगी कि दो ही एक्टर थे उसमें और दो ही एक्टर की 16 मिनट की नॉन कट मतलब फिल्म है वो।
2: सेल्यूलॉइड के सितारे 25 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: मन चाहेगी।
1: मन चाहेगी।
0: मन चाहेगी।
2: मन चाहेगी कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान।
3: कार्यक्रम शुरू करने से पहले कुछ जरूरी बातें।
1: एक व्यक्ति या परिवार की चिट्ठियां एक महीने में एक बार ही शामिल की जाएंगी।
3: एक चिट्ठी में केवल अपने परिवार के नाम लिखें, दूसरे शहर के, दूसरे व्यक्तियों के, अपने दोस्तों के नाम नहीं लिखें, इन्हें शामिल नहीं किया जाएगा।
1: हम अपने हर श्रोता की चिट्ठियों को शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे, पर इसमें समय लग सकता है। कृपया धैर्य बनाए रखें।
4: और हाँ, हस्तलिखित चिट्ठियों को प्राथमिकता दी जाएगी। कृपया सील ठप्पे वाले और छपे हुए पोस्टकार्ड ना भेजें। अंतरदेशीय नहीं, केवल पोस्टकार्ड भेजें। और ये चिट्ठियां आपको भेजनी कहाँ है?
3: कार्यक्रम मन चाहेगी,
1: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
4: पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091।
2: तो भाई, मनचाही गीत कार्यक्रम में आज का सिलसिला शुरू किया जाए। और आप सभी श्रोताओं की चिट्ठियां आई हैं। नागपुर जिला पाटन सावंगी से गजानन लिखार, मनोज लिखार और संजना लिखार, महमूद आरिफ, आरिफ फातिमा, एम एच शरीफ, आरिफ हुसैन और साथियों की चिट्ठी रामना हल्ली बेंगलोर से आई है। और ये जो चिट्ठी है, मौजे गोवर्धन जिला वाशिम से रविंद्र पवार, मीना पवार और श्रीकांत की है। जवाहरगंज जबलपुर से जिनेंद्र जैन और महेंद्र जैन की चिट्ठी, कनेरा मोहल्ला पटियाले से मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन पलक, कर्ण, गीतू, निहारिका, हार्दिक और वंश। और इसके अलावा हयात कॉलोनी अररिया बिहार से फैसल इमाम, मोहम्मद अफजल, मोहम्मद अकमल, नफीसा परवीन, न्यूटन चिखली परासिया।

छिंदवाड़ा से अनिल वाघ, संगीता वाघ, रविंद्र वाघ, वंदना वाघ, अंकेश वाघ, अनुतेश वाघ और ऋतिक वाघ की फरमाइश पर ये गाना लता मंगेशकर और किशोर कुमार, गुलजार, राहुल देव बर्मन, फिल्म का नाम आंधी।

विविध भारती पर आप मन चाहे गीत कार्यक्रम सुन रहे हैं और जी हाँ बिल्कुल सही झलक सुनाई दी आपको, यही गाना आगे बजने वाला है। लेकिन पहले उन श्रोताओं के नाम तो आपको बता दें जिनकी चिट्ठियां हमें मिली हैं। पुणे से पंकज वडोदे, आर्या, प्रियंका, वीटी वडोदे और चंद्र प्रभा वडोदे, और ये चिट्ठी अलंकार मार्केट देवा से मकबूल हुसैन बोहरा, मुस्तफा हुसैन और नजमुद्दीन की है। बाबू रामानंद, बीना आनंद और खुशी आनंद ने नंदग्राम गाजियाबाद से हमें खत लिखा है। रामगंज खंडवा से विजय महोबिया, कविता महोबिया और प्यारे बाबू, और गोल बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभयानंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज और प्रमोद, आनंद रत्नानी, अजय, रेखा रत्नानी, अभय, भाग्या और मीरा रत्नानी ने नर्मदापुरम से इस गाने की फरमाइश भेजी है। सुनते हैं हीरांझा फिल्म का गाना।

अगले गाने के लिए आप सभी की फरमाइश आई हैं। छत्तीसगढ़ बेमित्रा जिला से सुरेश कुमार सारथी, कमलकांत सारथी, सुनील कुमार, वीरेंद्र सारथी, रुद्र कुमार और व्रिज कांत सारथी। कस्बा बराड़ा जिला अंबाला से रवि कुमार राहू, रंजीत कौर मन्नत, गुरकीरत और गुरशब्द सिंह राहुल। आदर्श रेडियो श्रोता संघ कन्हरिया बाजार पूर्णिया से दिलीप कुमार सेंचुरी, बिमला रानी सेंचुरी, शिम्पी रानी साह, सुरेश लाल साह और अमित राजा। और ये फरमाइश आई है कर्नाटक बेंगलोर से मेनका नतारा की। इसके अलावा जी यही एक नाम है और अनीता, प्रीति, येसु और निसार की फरमाइश है। और कृष्ण गोपाल शर्मा, राज शर्मा, मंजू शर्मा, आशीष शर्मा,

बिट्टू जैन और दीपक जैन की लुधियाना पंजाब से फरमाइश हमें मिली है। इसके अलावा एक और चिट्ठी, और वो चिट्ठी भेजी है पूरे बाकड़े परिवार ने, जिसमें पवन कुमार, ज्योतिताई, संतोष राव बाकड़े शामिल हैं अकोला से। और ये है आपकी पसंद का गाना, फिल्म का नाम है अनजाना।

0: इंस्टाग्राम पर आप सेलिब्रिटीज को फॉलो करते हैं, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को फॉलो करते हैं, पर क्या आपने विविध भारती को फॉलो किया?
1: नहीं नहीं, अभी नहीं।
0: विविध भारती भी तो आपके परिवार का हिस्सा है, इंस्टाग्राम पर लिखिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
2: कुछ लिखा,
0: और फॉलो कीजिए विविध भारती के ऑफिशियल पेज को। मनचाहे गीत कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती से, और अगली फरमाइश है चेतक सर्कल उदयपुर से मुकेश जीनकर, रेणु जीनकर, अजय प्रिंस और कुलदीप की शाहूनगर यवतमाल से, राहुल मनवर, सरला मनवर, विशाल, चेतन मनवर, रोशनी मनवर, स्वीटी बेबी प्रियांशी, कस्बा हरदुआ गंज अलीगढ़ से, मुन्ना खान अंसारी, शहीद अहमद, नफीस अंसारी, अनाविया अजान और अयान, तेलंगाना निजामाबाद से शेख अल्लाह बख्श, बेगम राबिया, रहीम, मुन्ना, महीन, फातिमा, अदीब, दानिश, आसिफ, जोहरान शेख, मालवा मिल कंपाउंड इंदौर से प्रमिंद्र कुशवाहा, कैलाश कुशवाहा, रमेश कुशवाहा, मंजू चौहान और कामिनी चौहान। कलाकार फिल्म का गाना, इंदीवर के बोल कल्याण जी आनंद जी की तर्ज, किशोर कुमार की आवाज़।

और अब कार्यक्रम का आखिरी गीत आप सभी की फरमाइश है, महादेव डोंगरे राधा नगरी कोल्हापुर से। ये श्रोता संजय पंचोलिया, प्रियंका, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और इनके साथी घंटाघर चौक खंडवा के श्रोता हैं। काटोल नागपुर से सुरेश मलमकार, श्रीमती रजनी मलमकार। ये फरमाइश बीड शहर से रंजीत कुमार, नामदेव थोरात, रितेश, आकाश, रंजना, रश्मि और गबरू, पहलवान की महेंद्र सटकरकटे, विजया सरकटे और मिलिंद वरुण जौलका से, और वर्धा से दिलीप खैर का, शोभा, रविंद्र सारिका और स्वरा।

नाट्य तरंग कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं नाटक जैसी करनी वैसी भरनी। लेखक रोमी शिराज, निर्देशक मुद्रा राक्षस।

0: सुभद्रा सुभद्रा,
1: ये मकान मालिक तो कुछ करता नहीं, इतने दिन से कहा जा रहा है, छत तक ठीक नहीं करवाई, अब देखो ये देखो जगह जगह से टपक रही है।
0: अरे मैं कहता हूँ तुम मेरी बात सुनती क्यों नहीं? शाम को जो चाट खाई थी लगता है बहुत खराब थी, खाकर और तबीयत खराब हो गई।
1: तुम्हारी तो तबीयत ही खराब रहती है।
0: अरे ऊपर कुछ ऐसी आवाज हुई जैसे कोई कूदा हो।
1: अरे तेज हवा की वजह से कुछ गिर गया होगा।
0: हा?
1: तुम भी बस बुढ़ापे में लगता है ज्यादा सुनने लगे हो।
0: क्या क्या क्या, अरे अरे अरे जी जी जी जी, क्या बात हुई है? क्या बात हुई है? मैं बूढ़ा कब से हो गया जी है? कब बूढ़ा हुआ मैं? कौन आ गया?
2: कौन? जीवनलाल जी यहीं रहते हैं क्या?
3: अरे भाई दरवाजा खोलिए।
0: कौन है देखूं तो जरा।
2: कौन है?
0: अरे पुलिस?
2: जीवनलाल जी आप ही हैं?
3: हाँ यही है जीवनलाल जी। अरे बाबा बहुत गंडगोल हो गया है। तुम्हारा जो फादर था ना,
0: हाँ।
3: वो हमारा पागल खाने में सुसाइड कर लिया।
0: क्या?
3: ये इंस्पेक्टर साहब बोलता है उसका लाश को आइडेंटिफाई करना है।
0: हाँ।
3: अभी चलना है।
0: अच्छा अच्छा चलता हूँ, जरा कपड़े पहन लूँ, अभी आया।
1: बात क्या है? अरे कुछ बोलते क्यों नहीं?
0: पागल खाने से इंस्पेक्टर साहब खबर लाए हैं।
1: पागल खाने से क्या?
0: पिताजी ने आत्महत्या कर ली है।
1: आत्महत्या?
0: हाँ।
1: जब तक जिंदा थे तब तक तो हमारे लिए मुसीबत थे ही, अब मर कर भी चैन नहीं लेने देंगे।
0: अरे ये सब बातें बाद में भी तो हो सकती हैं। लाओ देखो मेरा छाता कहाँ रखा है, लाओ जरा।
1: अरे अरे इस आंधी तूफान में कहाँ निकले जा रहे हो, कल सुबह चले जाना।
0: अरे बेकार की बातें मत करो, अभी जाना होगा मुझे, इंस्पेक्टर साहब लेने आए हैं मुझे।
1: लो अब उनकी वजह से द्वारे पुलिस आकर भी खड़ी हो गई।
0: बकबक बंद करो, देखो भाई छाता कहाँ रखा है, और सुनो कुछ पैसे भी दे देना। मेरा कुर्ता कहाँ रख छोड़ा है?
1: कुर्सी के पीछे टंगा तो है।
0: हाँ हाँ
1: ये लीजिए।
0: हाँ हाँ अच्छा सुनो मैं चलता हूँ, वो गुड्डू के हाथ अपने देवर को भी खबर भिजवा देना।

0: आइए, इस तरफ से आइए।
1: जी वेरी सैड, वेरी सैड। वो कल दोपहर से ही गायब था, आज पागलखाना का पीछा का कुआं से उनका लाश को निकला गया। हाँ,
2: अरे
1: शायद वो कुआं में कूदकर ही उन्होंने जान दे दिया। हाँ, ओ ना अंदर है। ओरे बाबा, तुम्हारा फादर, माय गॉड, अजीब मैन था, माय गॉड, कल से गायब। इधर ढूंढा उधर ढूंढा, माय गॉड, पता नहीं कब कुआं में गिर गया।
2: कुएं में कूद गया। अरे डॉक्टर साहब, आपको अपने रोगियों का ख्याल तो रखना चाहिए।
1: ओरे बाबा, की रकम बात करता है तुम। हा? हम सभी का पूरा ख्याल रखता है, खाना कपड़ा।
2: हाँ, सब जानता हूँ, खाना कपड़ा। अरे इस तरह का खाना तो शायद जानवर भी खाना पसंद नहीं करेंगे, और कपड़ा, शायद ही किसी मानसिक रोगी को कपड़े पहने देखा हो हमने।
1: माय गॉड, जब पागल लोग अपना कपड़ा फाड़ देगा तो कोई कितना बार पहनाएगा।
2: अरे डॉक्टर साहब, आपके पास तो हर चीज का जवाब हाजिर है।
1: जीवनलाल बाबू, ये सब बात तो होता रहेगा, पहले आप डेड बॉडी को आइडेंटिफाई कर लीजिए। इंस्पेक्टर साहब,
0: अच्छा।
1: आप चलिए, हम कल सुबह इनको थाने भेज देगा।
0: अच्छा।
2: कितनी बदबू है यहाँ।
1: देखिए, इनको पहचानता है?
2: जी, यही है, यही मेरे पिताजी हैं। इनका इनका ये शरीर इतना फूल कैसे गया?
1: उफ,

0: फादर, माय गॉड, ऐसा पागल तो हमने अपना लाइफ में कभी नहीं देखा। कभी बोलता हम पागल नहीं, कभी बोलता हम पागल है। कई बार पांच पांच दिन खाना नहीं खाता, और कभी जितना दो बोलता और लाओ, नहीं देने से सब कुछ तोड़ता फोड़ता। ओ ओ देखो, ओ खिड़की का ग्लास सब उसी ने तोड़ा। माना करा तो हम पर अंडा खींच कर मारा। रियली ही वाज ए डिफरेंट काइंड ऑफ ए लूनेटिक।
1: मैं पागल नहीं हूँ, मैं पागल नहीं हूँ। मुझे जाने दो, मैं पागल नहीं हूँ। डॉक्टर साहब, मेरे बेटा को घसा कर लीजिए। उन्होंने मुझे यहाँ बंद कराया है, मैं पागल नहीं हूँ।
0: ओरे बाबा, ये यहाँ कहाँ से आ गया है? तुम उधर चलो, उधर चलो तुम।
1: मैं पागल नहीं,
0: इधर आ जाओ, तुम काम बोलता है।
1: पागल नहीं हूँ,
0: चलो बाहर जाओ।
2: डॉक्टर साहब, ये कौन है?
0: पागल है, इसका लड़का लोग छोड़ गया था।
2: हाँ, लड़का लोग छोड़ गया था।
0: हाँ,
2: लेकिन देखने से तो पागल नहीं लगते।
0: हाँ, नहीं लगता, पर हाय, ठीक आपका फादर की तरह तो नहीं लगता, पर हाय।
2: लेकिन मेरे पिताजी तो पागल थे ना, वो तो पागल थे। हाँ,
1: मैं पागल नहीं हूँ, मुझे जाने दो, मेरे बेटे को पकड़ो, उन्होंने बंद करा मुझे।
0: अब आप घर जाइए, समझा? बारिश भी थम गया है ना, और कल सुबह थाने में पहुंच जाइएगा। हाँ
2: जी, खुश बाबू, आप ऐसा करिए, आप जाइए, मैं थोड़ी देर यही पिताजी के पास बैठूंगा।
0: अरे बाबा, यहाँ बैठेगा? ठीक है, तो तुम बैठो, हम फिर जाता है।
2: पिताजी, ये आपने क्या कर डाला आपने पिताजी?

0: पिताजी, पिताजी, ये आपने क्या कर डाला?
1: क्यों, क्या हुआ?
0: इतनी मुश्किल से प्रॉपर्टी डीलर ने दो लोगों को राजी किया था, वो आए और आपने उनसे बात तक नहीं की।
2: मुझे नहीं बेचना है अपना मकान। जानते हो कितनी यादें जुड़ी हैं इस घर से।
0: 40,000 में खरीदे इस टूटे फूटे मकान के 15 लाख रुपए देने को तैयार हैं होटल वाले।
2: 50 लाख भी अगर दें तब भी नहीं बेचूंगा। और फिर इस उम्र में 15 लाख लेकर करूंगा क्या मैं?
0: पिताजी, मेरा नहीं तो कम से कम अपने पोतों का तो ख्याल कीजिए आप।
2: उनका ख्याल तुम करो जीवन, वो तुम्हारे बेटे हैं।
0: पिताजी, आप कुछ समझिए तो सही।
2: क्या समझूं? क्या समझूं मैं?
0: 15 लाख में इस मकान को बेचकर किराए का मकान ले लीजिए, कुछ पैसा बैंक में डाल दीजिए और
2: क्या?
0: और फिर पिताजी, मुझे भी तो नए सिरे से अपना बिजनेस जमाना है, कुछ पैसा मुझे भी दे दीजिएगा, भले ही उधार दे दीजिए।
2: अपने रिटायरमेंट के पैसे से 30,000 मैंने दिए हैं तुम दोनों भाइयों को।
0: 30,000? अरे 30,000 में तो पिताजी बाहर एक छींका भी नहीं आता है।
2: होश में रह के बात करो जीवन।
0: होश में तो पिताजी आप नहीं हैं। मैं चाहूं तो कानूनन अपना हिस्सा ले सकता हूं आपसे।
2: क्या? तो फिर कान खोल कर सुन लो जीवन, मैं ये मकान नहीं बेचूंगा। और यही कह देना छोटे से भी, ज्यादा बहस की तो सारा मकान किसी संस्था को दान कर दूंगा।
0: अरे अरे अरे अरे, आप तो काफी लंबी सोच के बैठे हैं पिताजी। मैं भी देखता हूं आपके सपने कैसे पूरे होते हैं।
2: क्या मतलब, क्या चाहते हो तुम?
0: आग लगाना चाहता हूं इस घर को। यही चाहते ना, तो लीजिए, ये रही माचिस।
2: जीवन, पागल हो गया तुम?
0: हाँ हाँ,
2: बिल्कुल पागल हो
0: गया हूं मैं। पागल, मकान बेचकर दो मुझे पैसे, वरना रोकर तुम अभी इसका भाव उठाने को। मैं
2: बदतमीज, तेरी इतनी हिम्मत, छोड़, छोड़ माचिस को।
0: नहीं,
2: मैं कहता हूँ माचिस मुझे
0: नहीं छोड़ूंगा।
2: छोड़ दे माचिस,
0: नहीं छोड़ूंगा।
2: आग लगा दूंगा इस घर को। जो चीज मेरी नहीं है वो फिर किसी की भी नहीं हो सकती।
0: नीच बेहूदे, बाप से हाथा

0: भी करता है। छोड़ माचिस, मैं कहता हूँ।
1: पकड़ो, लो पकड़ो ये माचिस, काम आएगी तुम्हारे कभी।
0: हे भगवान, इसी दिन के लिए पढ़ा लिखा कर बड़ा किया था मैंने तुम दोनों को।
1: अरे इस बात की क्यों धौस मारते हैं आप? कौन बाप नहीं पढ़ाता लिखाता अपनी औलादों को?
0: इस तरह की औलाद से तो बे औलाद ही होना ठीक था। पता नहीं मेरे किस जन्म का पाप हो तुम दोनों भाई।
1: क्या पता कौन किसका पाप है। अरे मेरा मतलब है अंजनी को देखिए, नई फैक्ट्री के लिए 7 लाख रुपया दिया है उसके बाप ने उसे।
0: अंजनी, अंजनी जैसे अगर तुम होते ना जीवन, तो 7 क्या 70 लाख का इंतजाम करता मैं तुम्हारे लिए।
1: पता नहीं क्या जिद है आपकी। देखिए पिताजी, मैं आपसे आखिरी बार पूछ रहा हूं, ये मकान आपको बेचना है या नहीं?
0: एक ही जवाब तुम कितनी बार सुनोगे जीवन?
1: ठीक है, तो मैं भी आपकी जिद तुड़वा करके ही दम लूंगा।
0: हद से आगे बढ़ने की कोशिश मत करो जीवन, एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा मैं तुमको। और ये मकान भी किसी संस्था को दान कर दूंगा। कान खोल कर सुन लो, और ना सुन सको तो निकल जाओ इस घर से।
2: अरे पिताजी क्या हो गया?
0: अच्छा हुआ तुम भी आ गए। अपने भाई के साथ बैठकर फैसला कर लो। अगर इस घर में रहना है तो शांति से रहो, वरना निकल जाओ तुम भी। और ये भी, मैं शाम तक वापस आऊंगा।
2: अरे क्या बात हो गई भैया?
1: अरे वही उनकी पुरानी जिद, घर नहीं बेचेंगे।
2: ओ तो क्या बात ज्यादा बढ़ गई थी?
1: अरे ज्यादा, ये तो कहो संपत मैं ही अपने पर काबू किए था, वरना आज तो
2: इस तरह काम नहीं चलेगा भैया। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। एक दुकान खरीदने के लिए मेरी भी बात चल रही है विवेक नगर में। मेन मार्केट में ही दुकान है और 3 लाख रुपया पगड़ी मांग रहा है। अगर ये मकान बिक जाए तो मजा आ जाए। वो होटल वाले आए थे?
1: अरे आए थे, 15 लाख रुपए दे रहे थे।
2: 15 लाख? फिर
1: जी बात ही नहीं की इस बुढ़ो ब, ब, ब, ब, तुम्हारे बाप ने।
2: आखिर क्यों?
1: नहीं बेचेंगे। अरे हम सबकी कब्र जो बननी है यहाँ।
2: 15 लाख? तब तो मैं वो कोनी वाली बड़ी दुकान भी ले सकता हूँ। 4.5 लाख रुपए पगड़ी है उसकी। ओफो, इस समय पता नहीं कौन आ गया। कौन है भाई?
3: अरे भाई मैं हूँ अवधेश।
2: पता नहीं कहाँ से आमर आई है।
1: सुनो, पैसे वैसे उधार मांगे तो मना कर देना।
2: अरे पहले पिछला उधार चुकाए तो।
3: अरे क्या हो रहा दोस्तों, बड़ा मुंह लटकाए बैठे हो।
4: भाभी जी कहाँ?
1: भाभी तुम्हारी बाजार तक गई है।
4: बड़े दुखी नजर आ रहे हो, क्या हुआ?
1: अब क्या बताएं यार अवधेश, हम दोनों को पैसे की जरूरत है। पिताजी से मकान बेचने को जब भी कहते हैं मानते ही नहीं। बस आज इसी बात को लेकर काफी बकझक भी हो गई। आज तो उन्होंने हम दोनों को घर से निकल जाने की भी धमकी दी है। समझ में नहीं आता यार क्या करें। धमका रहे हैं कि ये मकान किसी संस्था को दान कर देंगे।
3: लो यार पान खाओ। तब तो ऐसा करो, एक संस्था तुम लोग भी खोल डालो।
2: देखो आदेश, मजाक मत करो।
1: अच्छा एक बात बताओ, पिताजी के रहते क्या हम लोग इस मकान को बेच सकते हैं?
3: जब तक वो जिंदा हैं तब तक तो नहीं, मेरा मतलब है उनके रहते।
1: अरे यार उन्हें अभी क्या होने वाला है, इतनी दूर की तो फिर बेकार ही की सोचना।
2: बताओ भला, इतना पैसा पास में है फिर भी जैसे नहीं है।
1: अरे जी तो करता है जबरदस्ती उनसे मकान अपने नाम लिखवा कर बेच डाला।
3: अगर इस तरीके की मूर्खताएं सोचनी है तो मैं चलता हूँ यहाँ।
2: अरे भाई तुम तो भाई तुम ही कुछ अकल की बात बोलो ना।
3: भाई तरीका तो मेरी खुराफाती खोपड़ी में है, पर जरा मुश्किल है।
2: असंभव तो नहीं है?
3: कदापि नहीं बालकों, कदापि नहीं। वो नवजोत चिकित्सा केंद्र का नाम सुना?
2: वो नवजोत चिकित्सक? अच्छा अच्छा, वो पागलों वाला अस्पताल। अरे वहाँ जहाँ वो 2-3 बार छापा भी पड़ चुका है।
3: और उसका आर्डन तो सरकारी धन दुरुपयोग में पिछले साल गिरफ्तार होते होते बचा था। क्यों ठीक है ना?
2: ठीक, मगर ये पागल खाने का क्या चक्कर है उदेश बाबू?
3: देखो भाई, अगर तुम्हारे पिता को पागल करार करके इस पागल खाने में बंद करवा दिया जाए।
1: क्या बच्चों जैसी बातें करते हो यार, एक अच्छे खासे आदमी को पागल खाने में भर्ती कैसे करवा सकते?
3: एक आधे पागल को तो भर्ती करवाया ही जा सकता है ना।
2: अरे यार क्या पहेलियां बुझा रहे हो, सीधी तरह ये बताओ ना कि कैसे संभव होगा।
3: देखो, अपने पिता को रोज थोड़ा थोड़ा वो चूर्ण देना जो मैं बताऊंगा।
2: खा चुके वो ये चूर्ण?
3: अरे खाना

0: खाएंगे, बस उसी में चुटकी भर मिलाकर दे देना, मगर खिलाना जरा प्यार से। अब फिर चमत्कार देखना, धीमे धीमे वो शारीरिक और मानसिक रूप से बेहद कमजोर हो जाएंगे।
1: क्या?
0: और उसके बाद ही उन्हें पागल खाने में भर्ती करा दिया जाएगा।
1: लेकिन अवधेश, पागल खाने में तो काफी तकलीफ रहेगी उन्हें।
2: और क्या?
0: अरे हर महीने कुछ पैसे मुझे दे दिया करना, मैं उन्हें दे आया करूंगा, कोई कष्ट नहीं होने पाएगा उन्हें।
1: लेकिन मकान तो फिर भी पिताजी के ही नाम रहेगा ना।
3: और क्या,
0: एक दो कागजों में उनका अंगूठा लगवा लेंगे, नहीं काम बना तो दो तीन जाली कागज मैं बनवा दूंगा।
1: मगर नवजोत वाले उन्हें पागल कैसे मानेंगे?
0: तुम दोनों यार आते तो बेवकूफों की श्रेणी में ही हो। मैं तुम लोगों को एक बात पहले से साफ कर दूं कि ये फार्मूला अंधेरे में चलाएगा तीर जैसा है, और ये तीर निशाने पर लगेगा या नहीं इसकी 50-50% उम्मीद ही रखो। हाँ, वैसे तुम लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि नवजोत में तमाम लोग छुटकारा पाने के लिए अपने पिता से लेकर दूसरी शादी के चक्कर में अपनी पत्नी तक को भर्ती करवा चुके हैं।
1: अच्छा? मगर अवधेश, इसकी जांच भी तो कभी हो सकती है।
0: एक अच्छा भला आदमी साल भर इस कैद खाने में रह ले तो पागल तो हो ही जाएगा। अब वैसे तुम लोग चाहो तो अपने पिता के मरने का इंतजार कर लो, 20 साल 25 साल या।
4: अरे नहीं नहीं भाई, अब तो लगता है 20-25 साल तक भीख मांग करके ही गुजारा करना ही पड़ेगा।
1: मेरे ख्याल से अवधेश की बात ठीक ही है भैया, कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना तो पड़ेगा ना।
0: अब पिताजी जैसी पुरानी चीज खोकर अफसोस ही क्या होगा।
4: क्या कर डाला आपने, क्या किया पिताजी?
5: अरे जीवनलाल बाबू, अभी गया नहीं आप, यही बैठा है।
4: जाता हूँ डॉक्टर साहब, जाता हूँ।
6: बड़ी देर कर दी आपने आने में, संपत भैया 1 घंटे से इंतजार कर रहे हैं आपका।
4: संपत,
1: नमस्ते भैया।
4: नमस्ते नमस्ते, बड़े कमजोर नजर आ रहे हो।
1: अब हम पोड़े हो गए भैया, फिर पास ऐसा है ही क्या जो खुश रखे, स्वस्थ रखे?
4: पिताजी के बारे में पता चला तुम्हें?
1: पता चला, ये तो होना ही था एक दिन।
4: एक नई मुसीबत भी तो खड़ी हो गई
1: जी।
4: पुलिस सारी बातों की जांच करेगी, तुमको तो पता ही है, उनको पागल सिद्ध करने वाले कागज भी तो जाली ही थे। अवधेश ने जिससे बनवाए थे वो डॉक्टर ही कहाँ था, शायद कोई कंपाउंडर वगैरह था।
1: यानी एक और मुसीबत।
4: हाँ, एक और मतलब?
1: अब आपसे क्या छुपाना भैया, मेरे लड़कों ने मुझे घर से जाने के लिए कह दिया।
4: अरे अरे, लेकिन संपत, ये सब कैसे हुआ, कब हुआ?
1: क्या बताऊं, मैं आपसे सब छुपाए रहा भैया। मैंने अपने लड़कों पर भरोसा करके उन्हें सारा पैसा दे दिया, दुकान उनके नाम कर दिया, और पैसा पाते उनकी आंखें पलट गई। रोज ही रोज मेरा अपमान होता है, घर से जाने के लिए कहा जाता है, जी तो करता है आत्महत्या कर लूं।
4: लेकिन पिताजी वाला मकान बेचने पर तो 7.5 लाख रुपए मिले थे तुम्हें।
1: हाँ, मिले थे भैया, ज्यादा पैसा होने पर खर्च भी कुछ ज्यादा होता है, फिर पैसा पिताजी की मेहनत का था, हमारी मेहनत का नहीं था, जो ज्यादा खर्च होने पर दर्द होता।
4: सच कहते हो संपत, वो रुपए तो ऐसा लगा मानो सड़क पर पड़े मिले हो। पिताजी की बात और थी, हर काम करने से पहले 20 बार सोचते थे। अब लगता है मकान न बेचने का

0: उनका फैसला भी ठीक ही था। अब देखो किराए के मकान में आए दिन मकान मालिक किराया बढ़ाता रहता है, न बढ़ाओ तो निकालने की धमकी ऊपर से।
1: अच्छा भैया, पुलिस जांच से अगर सारी बातों का खुलासा हो गया तो?
0: अरे नहीं नहीं तब तो बुढ़ापा ही खराब होगा और जग हंसाई ऊपर से होगी।
1: खैर जो भी हो, मेरे से तो बेहतर स्थिति है आपकी।
0: हाँ ठीक कहते हो, फिलहाल तो बेहतर ही है। लड़की की शादी कर दी, लड़का है बस जरा चुप रहता है, घर आएगा आते ही अपने कमरे में घुस जाएगा, न किसी से बोलना न किसी से चालना।
1: अच्छा भैया चलता हूँ, वो फिर आऊँगा।
0: अच्छा अच्छा
1: वो भैया वो
0: हाँ?
1: वो
0: कुछ कहना चाहते हो?
1: भैया पिताजी के अंतिम संस्कार के लिए मेरा मेरा मतलब है कि
0: अरे नहीं नहीं चिंता मत करो, पैसे का इंतजाम कर दूंगा। और कुछ?
1: वो कहते तो ठीक नहीं लगता भैया। वैसे वैसे अगर मेरे लड़कों ने मुझे निकाल दिया तो मैं कुछ दिनों के लिए यहाँ
2: सुनो
1: आकर।
2: जी, बात सुनो जरा।
0: हाँ हाँ ठीक है भाई, संपत्ति तुम्हारे रहने पर तो हमें कोई एतराज नहीं है, पर तुम तो जानते हो एक ही कमरा फालतू है और मेहमान है कि आते ही रहते हैं। अब अपनी सुविधा के लिए तुम मुझे तो तकलीफ में डालना पसंद नहीं करोगे ना?
1: क्या कोई बात नहीं भैया, कोई बात नहीं, कोई बात। अच्छा चलता हूँ। नमस्ते
0: अच्छा,
1: भैया।
0: अच्छा, नमस्ते।
1: नमस्ते भाभी।
0: मुसीबत पर मुसीबत, अपने बच्चों से बनाकर रखेगा नहीं और यहाँ टिकने के लिए हाथ फैलाए हैं। एक तो पिताजी ने आत्महत्या करके और मुसीबत खड़ी कर दी, अगर जांच हुई तो बचना भी मुश्किल हो जाएगा।
2: अरे क्या अशुभ बोल रहे हो?
0: अरे ठीक ही कह रहा हूं। ये छड़ी किसकी रखी है?
2: अवधेश की होगी, भूल गया होगा।
0: हा? अवधेश? अवधेश कब आया था यहाँ?
2: कल जब आप काम पर गए थे। वो तो आता ही तब है जब आप घर पर ना हो।
0: अरे लेकिन लेकिन वो आता क्यों है यहाँ?
2: क्या पता, अपने बेटे अनिल से पूछिए ना। हा? उसी से मिलता है, शायद कोई बिजनेस करना चाहता है अनिल।
0: बिजनेस? बिजनेस क्या मतलब? बिजनेस और अवधेश के साथ? अरे पता है सांप है वो, सांप सब कुछ बेच कर खा जाएगा।
2: क्यों, आपकी तो बहुत दोस्ती थी उससे, खाना पीना उठना बैठना।
0: अरे हाँ हाँ जब थी तब थी, इसी बेवकूफ की बातों में आकर ही मैंने न जाने कितनी गलतियां कितने पाप कर डाले। जवानी के जोश में पता ही नहीं था चला कि मैं पिताजी के साथ क्या सुलूक कर रहा हूं। उस समय तो बस इसी अवधेश और संपत ने मिलकर पिताजी के खिलाफ भड़की आग में घी डाला था।
2: उन्होंने भड़काया और आप भड़क गए।
0: अच्छा अच्छा ठीक है, अब तुम भी मुझे ही दोष दे लो। नोच खाओ मुझे, नोच खाओ। समय पिताजी को पागल खाने भेजने से तुम भी तो मना कर सकती थी मुझे।
2: हाँ हाँ जरूर, उस समय लाखों रुपए के आगे कुछ सूझ रहा था आपको? उस समय तो खाने में जाने किस किस चीज का चूरन मिलाकर खिलवाते थे आप।
0: क्या बोली क्या बोली क्या बोली? बोलो बोलो, जोर से बोलो, चीखो चीखो ताकि मोहल्ले वाले भी तो सुन ले।
3: अरे बाबूजी क्या हुआ, क्यों इस तरह से चिल्ला रहे हैं आप?
0: ये एक बात बताओ अनिल, ये अवधेश क्यों आता है यहाँ? हाँ क्या करना चाहते हो तुम उसके साथ? बिजनेस? बिजनेस करना चाहते हो? पता है बेचकर खा जाएगा तुम्हें और तुम्हारे कपड़े भी।
3: मगर वो तो आपके दोस्त हैं।
0: कोई दोस्त वोस्त नहीं है, कोई दोस्त वोस्त नहीं है मेरा, समझे?
3: मगर क्या बिगाड़ा अवधेश चाचा ने?
0: उसकी वजह से ही तुम्हारे बाबा ने आत्महत्या कर ली।
3: बाबा ने? वो जो पागल खाने में बंद थे?
0: हाँ हाँ वही।
3: बाबा ने आत्महत्या की?
0: क्या क्या बिजनेस समझा रहा था तुम्हें? क्या बिजनेस समझा रहा था वो तुम्हें?
2: बेटे तुम्हारे बाबा ने अवधेश की वजह से नहीं, इनकी वजह से आत्महत्या की है। इन्होंने
0: चुप कर, मैं कहता हूँ चुप कर।
3: पिताजी क्या हो गया है आपको, माँ पर क्यों बिगड़ रहे हैं? बिजनेस में बुराई ही क्या है, आखिर मुझे अपने भविष्य के बारे में भी सोचना।

0: महज 3 लाख से मेरा बिजनेस शुरू हो जाएगा।
1: अच्छा, और ये 3 लाख रुपए तुझे देगा कौन?
0: अवधेश चाचा ने कहा है कि रुपया आपके पास है, आखिर आपने भी तो बाबा से पैसा लिया होगा।
1: मैंने क्या मतलब? और क्या बताया अवधेश ने तुझे? और क्या क्या बताया तुझे? कौन खोल कर सुन लो, एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा तुम्हें, समझे? एक कौड़ी भी नहीं दूंगा।
0: समझिए आप, आप अगर मुझे पैसे नहीं देंगे तो कानूनन अपना हक ले लूंगा मैं आपसे।
1: क्या कहा तुमने? कानूनन अपना हक लोगे? तो जाओ सड़क पर और मांगो कानून से अपना हक।
0: नहीं जाऊंगा, देखता हूं कौन निकालता है मुझे यहां से।
1: और ये हाथ में क्या है तुम्हारे?
0: हाथ में आपसे क्या मतलब? आप तो घर से निकाल रहे थे मुझे, वैसे ये आप ही के खाने के लिए लाया हूं मैं।
1: खाने के लिए? मेरे खाने के लिए? हो तो ये हो रहा है इस घर में, ये हो रहा है। अरे खुले आम क्यों नहीं खिला देते जहर? अरे गला घोट कर क्यों नहीं मार देते मुझे? खिलाओ खिलाओ खिलाओ जहर मुझे, खिलाओ।
0: ये खिलाओ। क्या अनशन बक रहे हैं आप? कौन क्या खिला रहा है आपको?
1: अरे मैं सब समझ गया हूँ तुम लोगों की चाल, मैं सब समझ गया हूँ। कौन खोल कर सुन लो, आज से अपने लिए खाना मैं खुद बनाऊंगा, और तुम माँ बेटे को निकाल करके ही दम लूंगा। अवधेश के साथ मिलकर मेरी दौलत हड़पना चाहते हो, मुझे पागल खाने में भर्ती कराना चाहते हो? अरे अरे कमबख्तो, शहर खिलाकर आधा तो मार ही दिया है मुझे।
2: ये क्या कह रहे हैं आप?
3: अरे भाई क्या हो रहा है?
0: देखिए ना चाचा, इनका तो लगता है दिमाग चल गया है, पागल हो गए लगता है।
1: अरे मैं पागल? अरे मैं नहीं हूँ पागल, तुम सब हो पागल, नहीं हूँ मैं पागल। तुम अगर मुझे पागल खाने भेजोगे तो नहीं जाऊंगा मैं, हरगिज नहीं जाऊंगा वहां।
3: हाँ, आपकी बात भी सही हो सकती है, बिल्कुल सही हो सकती है, लेकिन सच तो बताएगा डॉक्टर ही। हा? क्यों अनिल भतीजे?
1: क्या कहा? डॉक्टर? नहीं, मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगा, मैं जाऊंगा।

0: जैसी करनी वैसी भरनी। अभी आपने रोमी शिराज का लिखा ये नाटक सुना। निर्देशक थे मुद्रा राक्षस और ये नाटक आकाशवाणी।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे विविध भारती के कार्यक्रम, ये आकाशवाणी का हाफलंग केंद्र है। अब से कुछ क्षणों में आकाशवाणी की दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार रिले किए जाएंगे।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। सरकार ने आज 4 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए क्लोरोफेनिरामाइन मैलिएट और फिनालेफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड वाले सभी फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन के निर्माण, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगा दिया है। एक रिपोर्ट।
3: स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर इन दवाओं पर स्पष्ट चेतावनी देना अनिवार्य किया है कि 4 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को ये दवाएं नहीं दी जानी चाहिए। सरकार ने निर्माताओं को निर्देश दिया है कि इन दवाओं के लेबल, पैकेज में दिए गए निर्देशों और प्रचार सामग्री पर स्पष्ट रूप से चेतावनी लिखी जाए। सरकार ने कहा है कि ऐसे दवाओं के इस्तेमाल से 4 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जोखिम हो सकता है और इनके सुरक्षित विकल्प उपलब्ध हैं। शिवांग के साथ सकलेन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज ब्रिक्स देशों के मंत्रियों और वरिष्ठ प्रतिनिधियों के साथ आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम के निकट ऐतिहासिक थोटलकोंडा बौद्ध विरासत स्थल का दौरा किया। प्रतिनिधियों ने महास्तूप, ध्यान केंद्रों, कुआं और रसोई क्षेत्रों सहित प्राचीन बौद्ध अवशेषों को देखा। उन्हें स्थल के ऐतिहासिक महत्व और सदियों पहले यहां रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के जीवन के बारे में जानकारी दी गई। डॉक्टर मांडविया ने एक पेड़ मां के अभियान के तहत थोटलकोंडा में पौधारोपण भी किया। यह दौरा भारत की वर्ष 2026 की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत विशाखापट्टनम

0: आयोजित कार्यक्रमों का हिस्सा है। इसमें 11 ब्रिक्स देशों के मंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। ब्रिक्स देशों के युवा मंत्रियों की बैठक आज शाम विशाखापट्टनम में होगी। ब्रिक्स देशों के खेल मंत्रियों की बैठक कल विशाखापट्टनम में होगी। बैठक में खेल के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा होने की उम्मीद है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि समय पर फैसले देने वाली न्याय व्यवस्था वैश्विक विश्वास बढ़ाती है, कारोबार सुगमता को मजबूत करती है और किसी देश को निवेश तथा आर्थिक विकास के लिए अधिक भरोसेमंद बनाती है। नई दिल्ली में 11वें ब्रिक्स लीगल फोरम को संबोधित करते हुए न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि मजबूत संस्थान, विशेष रूप से प्रभावी न्याय व्यवस्था आर्थिक विकास की आधारशिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ने लाइसेंस राज के दौरान उत्पादन को दंडित करने के अपने दृष्टिकोण में मौलिक परिवर्तन किया है। अब उसके स्थान पर सरकारी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव पीएलआई योजना के माध्यम से इसे पुरस्कृत किया जाता है। इकोनॉमिक टाइम्ड वर्ल्ड लीडर्स फोरम 2026 को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने पिछली सरकारों की उस सोच की आलोचना की जिसमें जानबूझकर चीजों की कमी बनाए रखी जाती थी ताकि लोगों को सरकार पर निर्भर रखा जा सके। प्रधानमंत्री ने नकारात्मक प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव मॉडल की तुलना वर्तमान पीएलआई योजना से की। भारत ने 22 भारतीय नाविकों के साथ दो वाणिज्यिक जहाजों के अपहरण का मामला सोमालिया के अधिकारियों के सामने उठाया है। भारतीय उच्चायोग के अनुसार सभी भारतीय नाविक सुरक्षित बताए जा रहे हैं। पहला जहाज एमटी सीबू 20 अगस्त को यमन के तट के पास अदन की खाड़ी में अगवा किया गया। इसमें 16 भारतीय नाविक समेत 20 लोग सवार थे। दूसरा जहाज एमवी लुत्फ 17 अगस्त को सोमालिया के पुटलैंड तट के पास अगवा किया गया। इसमें 6 भारतीय नाविक समेत 10 लोग सवार थे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने भी कहा है कि भारत अशांत समुद्री क्षेत्रों में काम कर रहे भारतीय नाविकों की सुरक्षा को लेकर गंभीर है। अमरीका ने $20 अरब मूल्य के कनाडाई उत्पादों पर 50% टैरिफ लगा दिया है। ये टैरिफ आज तड़के लागू हो गए। अंतिम समय में तनाव कम करने के लिए हुई वार्ता विफल रहने के बाद कनाडा ने तत्काल जवाबी कार्रवाई करने की बात कही है। नए अमरीकी टैरिफ के से कनाडा के अमरीका को होने वाले सालाना निर्यात का करीब 5% हिस्सा प्रभावित होगा। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, पूर्वी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में तेज वर्षा की संभावना है। बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, उत्तराखंड और पूर्वोत्तर भारत में अगले 2 से 3 दिन के दौरान इसी तरह की स्थिति रहने का अनुमान है। और खेलों में बीडब्ल्यूएफ बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में आज महिला डबल्स के सेमीफाइनल में भारत की त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद का मुकाबला शीर्ष वरीयता प्राप्त चीन की लियू शेंगशू और टैन निंग से होगा। यह मुकाबला नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: श्रोताओं, हिंदी में समाचार के पश्चात हम पुनः लौट कर आते हैं विविध भारती के कार्यक्रमों में जो आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से रिले किए जाएंगे।
2: टीचर बनने का जो एक पहला अनुभव रहा वो मुझे ऐसे लगा कि नहीं यार, यहाँ तो अच्छा लग रहा है। उसके बाद फिर नुक्कड़ नाटक जो हमारा एक अहम हिस्सा है थिएटर का, तो गुजरात में हम थोड़ा अवेयरनेस को लेकर नुक्कड़ नाटक करते थे
3: जी,
2: कुछ गरीबों को समझाने के लिए, मजदूरों के लिए।
3: तो ये किसी समूह से जुड़ गए थे आप?
2: हाँ, हमारा एक थिएटर ग्रुप था जिसका नाम ही था बुधन थिएटर ग्रुप। तो बुधन एक विशिष्ट व्यक्ति था, तो उस बुधन के किरदार से हम बुधन जैसे और किरदारों के लिए कोई एक मैसेज तैयार करते थे और लोगों तक पहुंचाते थे। तो नुक्कड़ नाटक से शुरुआत हुई और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय तक मेरी यानी कि ये जर्नी चली कि जिसमें मैं सिर्फ सीख रहा था। क्योंकि अभिनय को जितना सीखो उतना कम है, एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। आज भी हम बड़े बड़े एक्टर्स को जब मिलते हैं तो वो भी कुछ ना कुछ नया मनन चिंतन कर रहे होते हैं कि भाई आज आपको क्या जरूरत है अभिनय के बारे में इतना सोचने की। आप जो कुछ बोलोगे वही पत्थर की लकीर बन जाएगा। लेकिन बावजूद उसके हमने देखा कि कितना सिंसियर वर्क है ये, कि नजर हटी की दुर्घटना घटी। एक अभिनय यानी कि 2.25 घंटे की फिल्म में जब आदमी एक्टिंग करता है तो उसको कितनी बारीकाई से काम करना पड़ता है। तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में जाने के बाद और बारीकाई से मैंने इस पर काम किया, ध्यान दिया, और फिर लगा कि अब जिंदगी अभिनय के सहारे गुजर सकती है। जब नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, क्योंकि अपने आप

0: बावजूद उसके मेरा मन नहीं मान रहा था। मैं बोला नहीं सर, मैं एक ऐसी जगह पर प्रशिक्षण लेना चाह रहा था कि जहां पर रात दिन आप सिर्फ अभिनय की बातें करते हैं, संगीत की बातें करते हैं, साहित्य की बातें करते हैं। तो फिर मन बनाया कि अगले साल दोबारा मेहनत करनी है, और अगले साल और ज्यादा मेहनत करके मैं वहां पहुंचा और मेरा फिर सिलेक्शन हो गया 2003 और 2006। ये 3 वर्ष मेरे, यानी कि मिला जुला कर 1000 दिन की ट्रेनिंग मैंने वहां पर ली है।
1: क्या बात, क्या बात है। यहां रुकते हैं और एक गाना सुनते हैं। आपकी पसंद का कौन सा गाना यहां बजाया जाए?
0: मुझे लग रहा है कि मेरा एक फेवरेट सॉन्ग है जो दोस्ताना फिल्म में अमिताभ बच्चन साहब और शत्रुघ्न सिन्हा साहब पर फिल्माया है,
1: बिल्कुल,
0: और वो है सलामत रहे दोस्ताना हमारा। तो उसमें ना एक जगह पर वो एक सैड नोट भी है कि जहां पर किशोर कुमार और रफी साहब का दोनों का एक सैड नोट भी है, तो मुझे वो भी बड़ा पसंद है। लेकिन अगर वो एक फुल फेज में अगर वो गाना सुना दिया जाए तो बड़ा मजा आ जाए।
1: ये गाना सुनते हैं।
0: जी जी।

0: आलोक जी, दोस्ताना फिल्म का ये गाना हमने सुना, और इससे पहले बातें ये हो रही थी कि आपने पहले स्ट्रीट थिएटर से शुरू किया अहमदाबाद में, और वहां से आपने ये तय किया कि भाई अब मुझे राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय जाना है। आपने ये भी जिक्र किया कि परिवार में जो है वो वकालत की परंपरा थी, पिताजी वकील थे।
1: जी जी जी जी।
0: तो ये कितना आसान था अभिनय की दुनिया में जाना एक वकील का बेटा होकर?
1: जी, पापा का तो यही था कि मैं वकील ही बनूं, क्योंकि होता है ना कि एक डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, वकील का बेटा वकील। लेकिन पापा ने ये भी एक उनमें गुण थे कि जब वो कॉलेज काल में पढ़ते थे तो उन्होंने भी काफी नाटक किए थे।
0: ओके।
1: तो उन्होंने वो नाटक किए थे, शेक्सपियर के प्ले किए थे उन्होंने, सेंट जेवियर्स कॉलेज में वो पढ़ते थे, जेवियर्स में अहमदाबाद में। तो उन्होंने फिर बादल सरकार का एक स्पार्टकस नाटक भी खेला था।
0: अरे बाप रे।
1: तो फिर जब उनसे मैं परमिशन मांगता था कि मैं मोहल्ले के नाटक में भाग लेने जा रहा हूँ गणपति के लिए या जन्माष्टमी के लिए, तो वो बेझिझक मुझे कहते थे जाओ बेटा, उससे जिंदगी समझ में आएगी तुमको कि थिएटर एक रंगमंच है। लेकिन जब उनको ये कहा गया कि अब मैं पूरी तरीके से ही नाटक में हूं, तो उन्होंने कहा कि 100% करो, लेकिन प्रशिक्षण के साथ करो। उन्होंने ये कहा कि हर चीज को सीखा जा सकता है। और यही बात फिर एनएसडी में मुझे अंकुर जी ने कही कि आप गौर कीजिए कि आपको कोई सलून में आप गए हुए हो और आपको पता चले कि जो आपके अभी बाल बनाने वाला है या कटिंग करने वाला है आपके बालों की, वो कहीं से सीखा हुआ नहीं है, तो आप क्या करेंगे, आपका रिएक्शन क्या होगा? तो मैं तो उनको अपना सिर नहीं दूंगा। तो बोले कि आप

0: से सोच सकते हैं कि 2 घंटे 3 घंटे का नाटक और आप बिना ट्रेनिंग के उतनी ही गुणवत्ता के साथ कर लोगे। तो पिताजी ने फिर मुझे परमिशन दी कि यू कैन गो, और फिर कॉलेज में मैंने कैंपस थिएटर किया। मेरे गुरु सौम्य जोशी जी, जो फिल्मों में अभी लिखते हैं, उनकी फिल्म 102 नॉट आउट उन्होंने लिखी। उसके अलावा बहुत अच्छा थिएटर करते हैं वो गुजराती।
1: लगातार उनका तो बहुत अच्छा,
0: हाँ
1: अच्छे प्लेज अभी भी चले आ रहे हैं।
0: हाँ अभिजीत जोशी एंड सौम्य जोशी दोनों
1: जी
0: भाई है।
1: जी
0: तो इन दोनों भाइयों के साथ मैंने थिएटर की जर्नी शुरू की थी अहमदाबाद में। तो पिताजी को लग रहा था कि ये जैसे वकालत भी एक अपने आप में रिस्की फील्ड है, कि आपका काम हुआ तो ठीक है, वरना कचहरी के चक्कर लगाते रहिए। तो पिताजी ने फिर हमको कहा कि आप कर सकते हो। तो फिर मैंने कॉलेज में दबा के थिएटर किया।
1: वाह वाह,
0: तीनों 3 वर्ष मुझे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला।
1: क्या बात है।
0: INT एक संस्था है जिसको इंडियन नेशनल थिएटर बोलते हैं, जो मुंबई बेस्ड है, लेकिन वो गुजरात में कंपटीशन करती थी कॉलेज में। तो ये कह सकते हैं कि 20वीं सदी का आखिरी अवार्ड मुझे मिला है और 21वीं सदी का प्रथम अवार्ड भी मुझे मिला है।
1: वाह वाह।
0: तो 1999 में मैंने पहला प्ले किया था तुत्तु तु तु तु तारा, एक शराबी का कैरेक्टर था, जो जॉनी लीवर साहब के एक जोक पर हमने नाटक इम्प्रोवाइज किया था कि अहमदाबाद में चारों तरफ एक शराबी घूम रहा है बस। तो उस किरदार को मुझे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। फिर दूसरे दिन मैंने एक किसान की बायोपिक की थी, फार्मर सुसाइड्स बहुत हो रहे थे गुजरात में। तो सौम्य जोशी साहब की कलम थोड़ी
1: मजबूत
0: वैसी,
1: है
0: हाँ, इंकलाबी कलम रही
1: तो ये
0: शुरुआत
1: सब
0: से।
1: उन्होंने लिखे।
0: उन्होंने ही लिखे दोस्त चौक सही नगर वस्तु तू,
1: ओ
0: और बहुत कमाल के लिरिसिस्ट है वो, कमाल के म्यूजिक कंपोजर है, कमाल के एक्टर, कमाल के डायरेक्टर। और मेरा सौभाग्य है कि मैं तो, मेरा पूरा परिवार उनका ऋणी रहेगा कि मुझे ऐसे माहौल से उन्होंने निकाला जहां थोड़ा मुश्किल था ग्रो करना, तो वहां से उन्होंने मुझे एक ग्रोइंग एक्टर एक बनाया। तो ये आज इस मंच पर उनको याद कर रहा हूं तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है मेरे गुरु को याद।
1: एनएसडी में पहुंचने के बाद आपका एक तरह से सपना पूरा हुआ, और आपने कहा कि 1000 दिन वहां तकरीबन आपने निकाले हैं। तो एनएसडी की कुछ यादें हैं, और वहां जो आपके बैचमेट्स थे, आपके सीनियर्स थे, उन सब के बारे में बताइए।
0: जी, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में एक फायदा ये है कि आप वहां जाते हो ना, तो आपके साथ प्रांगण में, उसके कैंपस में पूरा देश आपके साथ रहता है। तो सबसे पहला मजा तो वो आया कि जब सीनियर जूनियर के बीच में एक इंट्रो फेस होता था हमारा, जस्ट एक इंट्रो फेस होता था कि लोग पूछते थे आपके बारे में, तो बड़ा अच्छा था कि पहले ही हमारा इंटरेक्शन ऐसे होता था कि आप गुजराती हो और आपका एक बैचमेट आसामी है, असम से है, तो आपको असामी भाषा सीखनी है और आपको उन्हें गुजराती सिखानी है।
1: अरे गजब।
0: तो ये कल्चरल एक्सचेंज के प्रोग्राम से जो एनर्जी बनती है, वो एनर्जी हमारी आज तक बनी हुई है कि अब हम लाइक कोई किरदार में एक्सेंट डालना हो तो हम बड़ी आसानी से बंगाली एक्सेंट ले लेते हैं, एमपी का एक्सेंट ले लेते हैं। और किस्से तो इतने हैं, जैसे कि हमारे सीनियर पंकज त्रिपाठी जी थे, तो
1: ओहो
0: वो थर्ड ईयर में थे और हम फर्स्ट ईयर में थे। तो जब बातचीत होती थी विद्यार्थियों के बीच में, तो हमको वो कहते थे कि अच्छा तुम गुजरात से हो, तो गुजरात का फोक थिएटर के बारे में तुम्हारा क्या समझ है? तो हमने कहा कि हाँ, भवाई और ऐसा फोक थिएटर है, और उनका बिहार का एक अलग फोक थिएटर है, लौंडा नाच और इन सारी चीजों का। तो उस जगह से लाइक एक होता है ना कि आप टीचर से जितना सीखते हो उतना आपके सीनियर्स भी आपको इतने प्यार से सिखाते थे। इश्तियाक भाई थे तो उनका म्यूजिक पर कमांड था,
1: अरे हारमोनियम पे बैठ जाएं वो तो
0: हारमोनियम पर
1: फिर
0: बैठ जाएंगे तो वो चलता ही रहेगा उनका। तो हर तरह से, यानी कि सुबह से लेकर रात तक हमारा पहनना ओढ़ना खाना पीना सिर्फ एक्टिंग एक्टिंग एक्टिंग ही रहती थी। एक मजेदार किस्सा है वो ये है कि हम लोग गए थे KN पणिकर जी के थिएटर में केरला। तो वहां पर हमको तैया तैयम नाम का एक नाटक करने को कहा गया। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग फॉर्म था। ये तैया तैयम एक रिचुअलिस्टिक थिएटर केरला
1: बिल्कुल
0: का होता है कि जिसकी यात्रा करीबन 9-10 दिन तक चलती है, यानी
1: जी
0: 12-15 दिन तक एक ही शो चल रहा है।
1: जी
0: रोज रात को आ रहे हैं लोग, शो चल रहा है 2-3 घंटे, फिर प्रसाद बट रहा है, फिर दूसरे दिन आ रहे हैं। तो हमको वहां पर, वहां की गवर्नमेंट के साथ टाई अप होकर और हम वहां पर गए, तो पणिकर जी की एक बात जो मुझे इतनी अच्छी लगी, जो सीखने को मिली, कि वो व्यक्ति ने हमको विलंबित विधा में, यानी कि विलंबित लय में आप संस्कृत नाटक की जो

0: एक लय होती है जिन,
1: हम्म,
0: फिर हमको पता चला कि मोहनलाल जी भी उनके वहां प्ले कर चुके थे, तो वो विलंबित लय में आप म्यूजिक के साथ बीट के साथ एक सेंटर स्टेज पर आते हो और वहां लार्जर देन लाइफ आपको एक्ट करना पड़ता है, तो दैट्स गुड. यानी एनएसडी की तो बात ही अलग है. तो
1: बिल्कुल।
0: हमारे
1: और
0: सीनियर कई रतन थियाम जी का थिएटर करने गए थे वहां पर,
1: अच्छा,
0: वहां थांगटा सीख कर आए, हम
1: हाँ
0: केरला गए तो हम वहां कल्लरीपयट्टम सीख कर आए, तो आज भी
1: हाँ
0: वो कल्लरीपयट्टम की आर्ट मुझे आज भी याद है और आज भी मैं उसी से व्यायाम करता हूं अपना.
1: अरे वाह वाह वाह। तो एक तरह से ये होता है कि एक तो आप भारत से परिचित होते हैं, परंपराओं से, संस्कृति से परिचित होते हैं, और दूसरा नाट्य परंपराओं से अच्छी तरह से परिचित होके एक ठोस एक्टर या एक ठोस कलाकार बना के एनएसडी आपको
0: भेजती है.
1: मैदान में भेजता है कि अब जाओ। आपके साथ भी ये हुआ कि तय करना था कि दिल्ली में रहना है कि मुंबई जाना है?
0: नहीं, मेरा तो पहले से ये था कि मुझे मुंबई ही जाना है, क्योंकि मैं अगर गुजरात में भी जाता तो गुजराती थिएटर अपने आप में एक कमर्शियल थिएटर है, कि जहां से आदमी आज भी सिर्फ गुजराती थिएटर करने वाले, परेश रावल जी ने भी एक इंटरव्यू में कहा था कि आज अगर पूरे भारत देश में रोज थिएटर हो रहा हो तो वो सिर्फ गुजराती है.
1: वाह, सही बात
0: रोज
1: है।
0: रोज, यानी कि आज आप बोरीवली का प्रबोधन ठाकरे या घाटकोपर का ऑडिटोरियम या भाईदास सब, लेकिन तेजपाल हॉल या वहां पर कहीं पे भी चले जाओ कि रोज आपको एक नया नाटक देखने को मिल सकता है. तो मुझे तो पता था कि मुझे थिएटर करना है या सिनेमा करना है, तो मेरे लिए पृष्ठभूमि मुंबई से अच्छी कुछ नहीं हो सकती थी. तो दिल्ली में मेरा रुकने का प्लान नहीं था, यानी कि रंगमंडल से जुड़ने का और उसका मेरा कोई प्लान नहीं था. मेरा यही था कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से ट्रेनिंग ली है, अब जल्दी से इस कैंपस को मुझे छोड़ देना है, क्योंकि मैंने ऐसे कई हमारे सीनियर विद्यार्थियों को देखा कि फिर वो वहीं रहते थे तो, और हम रोज पूछते थे कि दादा आप कौन सी बैच के हो, तो कोई कह रहे थे कि हम 95 के बैच के हैं, 92 के बैच के हैं, और वहीं कैंपस में आकर और कैंपस के साथ ही जुड़ जाते हैं, तो आदमी आगे चल के ग्रो नहीं कर पाता. तो हमने सोचा कि हमें दिल्ली तो नहीं रहना है, हम मुंबई चले चलेंगे, और मुंबई और अहमदाबाद के बीच में डिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा नहीं था, तो कॉन्फिडेंस मेरा बरकरार रहा, और मुंबई में आते ही सरस्वती माता की कृपा से काम भी अच्छा मिलने लगा.
1: यहाँ एक गाना सुनते हैं, फिर
0: जी
1: मुंबई की बातें करेंगे।
0: जी जी जी
1: तो बताइए कि आपकी पसंद का कौन सा गाना होगा यहाँ पर? हाँ
0: जी धर्मवीर फिल्म का गाना मेरा बहुत फेवरेट है, जो दोनों सात अजूबे इस दुनिया में, आठवीं
1: वाह,
0: अपनी जोड़ी, और वहां पर भी एक सैड नोट आता है
1: बिल्कुल अरे।
0: माता को लेकर, कि ये जो सच्चा वादा है तो सब कुछ आधा आधा है, तो रानी माँ से मुझको भी मिल जाए ममता थोड़ी,
1: वाह वाह वाह,
0: तो ये एक अगर आप सुना दे तो
1: जरूर सुनते
0: बहुत
1: हैं ये
0: अच्छा.
1: गाना।
2: सात अजूबे इस दुनिया में, आठ में अपनी जोड़ी, सात अजूबे

0: धर्मवीर फिल्म का ये गाना हमने सुना और बातें मुंबई की हो रही हैं। दिल्ली की दुनिया बहुत अलग है और मुंबई की दुनिया संघर्षों की दुनिया है। जब आप मुंबई आए तो क्या कैफियत थी और क्या परिस्थितियां थी?
1: बहुत वैसा सवाल है कि सच में आज भी वो लम्हा याद करता हूँ तो थोड़ा पेट में एक घबराहट सी हो जाती है कि मैं आया था तब मैं शादीशुदा था,
0: अच्छा,
1: यानी कि मेरी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के फर्स्ट ईयर के बाद ही अरेंज मैरिज मेरा घर में गुजरात में शादी हो गई थी।
0: अच्छा, ऐसा?
1: हाँ।
0: और आपने ये तय किया कि भाई पढ़ाई के दौरान शादी कर लेते हैं?
1: हाँ, क्योंकि हमारे वहाँ बहुत जल्दी हो ही जाती थी तो उससे कोई छुटकारा था नहीं। तो
0: एक काम करते हैं, संघर्ष के बारे में बाद में बात करते हैं, ये शादी वाली बात पूरी कर लेते हैं पहले।
1: जी, फर्स्ट ईयर में मैं पढ़ रहा था, उससे पहले ही हमारी शादी की बात तय हो गई थी। मेरी वाइफ, जिसका नाम रुक्ष्मणी है, और वो बीकॉम कर रही थी, बैचलर ऑफ कॉमर्स, और मैं बीए कर रहा था, बैचलर ऑफ आर्ट्स। उसका थिएटर से कोई ताल्लुकात नहीं था, लेकिन अच्छे घर की संस्कारी लड़की थी तो घर वालों ने कहा कि शादी तो आज नहीं तो कल करनी है। तो हमने कहा कि नहीं, हमको तो अभी दिल्ली जाना है, पता नहीं क्या। बोले नहीं, तुम शादी दिल्ली में छुट्टियों में आकर शादी कर सकते हो और उसके बाद फिर आराम से तुम जिंदगी बसर कर सकते हो। तो मुझे भी ऐसे लगा कि चलो कोई बात नहीं, देखी जाएगी, जब इतने ही संघर्ष ले लिए है जिंदगी ने तो ये भी एक संघर्ष निपट जाएगा। तो फर्स्ट ईयर की छुट्टियों में जब मैं घर आया 2004 में, तब हमारी शादी हुई और अभी हमारी शादी को 22 साल कंप्लीट हो गए। और जब नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में मैं पास आउट होने के बाद जब बंबई आए तो ये हालत थी कि अब पत्नी को लेकर आपको बंबई निकलना है।
0: तो और वही ऑलरेडी वो आपके बिना इतने समय रह चुकी
1: है। हाँ, क्योंकि आप कितना ही अत्याचार कर लोगे अगर आपकी सहूलियत के हिसाब से अगर आप जिंदगी को चाहते हैं तो सब कुछ नहीं मिलता। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, चलो करते हैं संघर्ष जैसे सभी लोगों ने किया है। तो माहड़ा में हम लोग रहते थे, मलाड़ में, और शुरुआती दिनों में काम को लेकर कुछ भी क्लैरिटी नहीं थी, क्योंकि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में हमने थिएटर किया रात दिन अच्छे से, प्रांगण था, हर तरह की सहूलियत हमको मिल जाती थी, रहने के लिए हॉस्टल, हवा गर्मी लग रही है तो कूलर लग गया, ठंडा पानी खराब हो गया तुरंत बन गया। अब यहाँ क्या करेंगे? तो यहाँ पहली बार पता चला कि लाइट बिल आता है 350 रुपया एक वन रूम किचन का, वो भी बहुत मायने रखता है एक हिसाब किताब में। तो ये संघर्ष शुरू किया, लेकिन वही मैंने कहा था ना कि पापा की एक बात मुझे वो हमेशा याद रही थी कि लाइफ में कुछ इस तरीके से करो कि आप अभिनय भी कर सको और घर भी तुम्हारा चले उस तरीके से। तो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की ट्रेनिंग क्या है, अपने आप में थिएटर में आपको इतना वो मांझ देते हैं कि आप किसी को थिएटर पढ़ा भी सकते हैं, यानी उतना लेवल का नहीं जैसे वहां के फैकल्टी पढ़ाते हैं, लेकिन मोटा मोटा खाका आप किसी को बता सकते हैं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप हो जाती है। तो मैंने एनजीओ सेक्टर पे आकर काम करना शुरू किया और मैं स्ट्रीट चिल्ड्रन और स्ट्रीट प्लेटफॉर्म बॉयज के साथ थिएटर एज अ थेरेपी काम करता था, आगरीपाड़ा, मलाड़ से आगरीपाड़ा जाना। तो पहले ही दिन जब लोकल ट्रेन में मैं चढ़ा तो मैं रो पड़ा, क्योंकि एक तो पहले चढ़ने को नहीं मिल रहा था और हमको यही सिखाया कि टाइम पे पहुंचना है कोई भी क्लास में, तो मुझे 150 रुपए पर क्लास मिलता था उसके लिए। तो मुझे लगा कि यार अगर दो क्लास मिल जाए तो रोज का 300 रुपया तो मुझे यहीं से मिल रहा है, यानी महीने का 9,000 रुपए और घर का किराया ये सब मिला के 5,000-6,000 में हो रहा था। तो वो संघर्ष के दिनों में मैंने एनजीओ सेक्टर में

0: किया और साथ साथ में ऑडिशन देना शुरू किया
1: जी जी जी
0: और फिर यात्रा धीरे धीरे सहूलियत के साथ आगे बढ़ने लगी।
1: क्या बात है। तो लोकल ट्रेन में जाके और आप वहां सिखाते थे बच्चों को, वो यात्रा ज्यादा बड़ा संघर्ष थी या वो बच्चों को सिखाना ज्यादा बड़ा संघर्ष था?
0: बच्चों को सिखाना बहुत बड़ा संघर्ष था, क्योंकि यात्रा तो क्या है कि हमको लग रहा था कि ये भीड़ है, लेकिन मुंबई में आपको कहीं पे भी भीड़ दिखाई देगी, कोई ऐसी जगह होगी नहीं जहां भीड़ ना हो। लेकिन हाँ, बच्चों के साथ क्या होता था कि मैं सिखाते सिखाते बहुत सीखता भी रहता था, जैसे तरह तरह के लोग थे और वही NSD जैसा माहौल वहां पर भी था कि कोई उड़ीसा से एक बच्चा आया है। अब उसमें कुछ केसेस ऐसे होते थे कि कुछ बच्चे हीरो बनने आए थे,
1: लो अब ये समझाना भी मुश्किल है,
0: और उनको मैं ही समझा रहा हूं क्योंकि मैं भी हीरो बनने आया हूं। तो मेरे लिए तो ऐसा हो गया था कि ये सेल्फ लर्निंग हो रही थी।
1: हाँ।
0: तो कुछ लोगों को वो NGO ऐसी थी कि वो ऐसे बच्चों को रेस्क्यू करती थी जो बॉम्बे में बेचारे भटक रहे हैं, है ना, फिर कोई एडिक्शन में घुस गए हैं, तो उनके बच्चों की पहले बातचीत होती थी तो पता चलता था कि एक बच्चा है जो सलमान खान के घर के बाहर ही सोता था।
1: ओ, ओ, ओ।
0: वो सलमान खान को देखने ही इधर आया था, फिर उसको लगा कि मुझे सलमान खान से अच्छे से मिलना है तो एक्टर बन जाना पड़ेगा।
1: अरे बाप रे।
0: तो ऐसे मेंटालिटी के बच्चों के साथ मैंने वैसे ही काम किए कि फिर उनको जिंदगी का फलसफा समझ में आया और फिर उनको हमने एक अच्छे ट्रैक पर लेकर गए। उसमें से जो टैलेंटेड लोग थे उनको भी एक्टिंग का भी काम दिया गया, लेकिन वही होता है ना कि टारगेट किस तरीके से सेट करके आते हैं और कैसे लोग आ जाते हैं।
1: तो उनमें से कई लोगों को एक दिशा मिली।
0: दिशा मिली, जैसे कि कई लोगों ने पेपर बैग बनाने का काम शुरू किया, कई लोगों ने पहाड़ों पर ट्रैकिंग करने का काम शुरू किया। तो वो भी अपने आप में बड़ी बात थी कि जो बेसहारा थे, सड़क पर सोते थे, फुटपाथ
1: अपना अपना काम कर
0: पाए, अपना अपना काम कर रहे हैं। आज वो शादीशुदा है, कुछ लोग आज भी फोन करते हैं, आलोक सर कैसे हैं आप, हमको याद है आपने हमको ये डायलॉग सिखाया था। तो मैंने डायलॉग उनको जिंदगी के लिए सिखाया था कि भाई कोई भी ऐसा एक टोंग ट्विस्टर ले लेते थे, एक ऊंचा ऊंट है, पूंछ ऊंची ऊंट की, पूंछ से भी ऊंची क्या पीठ ऊंची ऊंट की। अब इसी को अलग अलग इमोशन में बोलो।
1: यस।
0: तो कोई गुस्से में बोलता था एक ऊंचा ऊंट है, पूंछ ऊंची ऊंट की, पूंछ से भी ऊंची क्या पीठ ऊंची ऊंट की।
1: अलग अलग
0: ये थिएटर एज अ थेरेपी। तो बच्चे हंसते थे और वही उनके साथ भी एक परिवार जैसा संबंध बन गया था। साथी नाम की ऑर्गेनाइजेशन थी, आज तो शायद वो नहीं है वहां, लेकिन वो बहुत अच्छा काम करती थी। तो मैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि साथी ऑर्गेनाइजेशन ने मुझे शुरुआत में काम दिया जिससे मैं बॉम्बे में टिका रहा और फिर धीरे धीरे फिल्मों के ऑडिशन देना जो रोजमर्रा, जो अमरीश पुरी साहब ने जो काम किया होगा वही हमने किया कि लोगों से मिलना।
1: वो एक प्रोसेस है कि वो
0: एक प्रोसेस है, वहां से कोई नहीं बच सकता।
1: तो शुरुआती तौर पर किस तरह के एक्सपीरियंसेस थे जब आप काम मांगने जाते थे, और क्योंकि तब शायद उस तरह से कास्टिंग डायरेक्टर्स नहीं आए
0: नहीं
1: थे,
0: और नहीं थे,
1: अपने फोटोज लेकर और पोर्टफोलियो लेकर जाना
0: पड़ता था। जी, मुझे आज भी याद है कि चंदन टॉकीज के पास एक फोटोग्राफर था
1: जुहू में
0: और वो कुछ 100 रुपए की एक तस्वीर निकाल के देते थे
1: जी,
0: और मेरे पास एक ही डेनिम का शर्ट था, जींस का, जो मुझे NSD से ही दिल्ली में ही खरीदा हुआ था क्योंकि वहां वो सेल वगैरह लगते रहते हैं मंडी हाउस। तो वो पहनकर मैंने उसको कहा कि 5 फोटो भैया हमको कोई ऐसी निकाल दो जिससे लोग समझ जाए कि हम भी एक्टिंग करने के लिए आए। तो 5-5 एक ही कॉस्ट्यूम में तो हो नहीं सकती थी।
1: बिल्कुल।
0: तो मैंने कहा कि अंदर हमने एक गंजी पहनी हुई है, 2-3 फोटो शर्ट में निकाल लो, 2-3 गंजी में निकाल लो स्पोर्ट्स लुक। तो वो 5 फोटो से हमने हमारी यात्रा शुरू की। और मुझे याद है कि जय माँ संतोषी माँ की फिल्म रिमिक बन रही थी उस वक्त दोबारा। तो उसमें हमारे NSD के कास्टिंग डायरेक्टर थे परेश पारेख जी। तो उन्होंने कहा कि अच्छा तुम आ गए, फोन किया उनको, 2-4 नंबर लेके निकला था। तो उन्होंने सीधा मुझे दादर बुलाया। अब दादर मेरे लिए अपने आप में वैसा था जैसे हम अहमदाबाद से कहीं
1: बड़ौदा चले,
0: बड़ौदा चले गए वैसी यात्रा थी। तो दादर बुलाया और मैं चप्पल पहनकर चला गया। चप्पल भी वो थी बरसाती प्लास्टिक वाली, है ना, उसका एक अंगूठा निकला हुआ था। अब वो अंगूठे को उंगलियों में फंसाते हुए मैं सीढ़ियां चढ़ा कि भाई यहां तक हो जाए। फिर वहां गए तो उन्होंने कहा कि हाँ ऑडिशन दे दो। तो मैं बोला चलो यार, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से आए हैं, ऑडिशन तो दे ही देंगे। लेकिन हमसे हो नहीं पाया ऑडिशन।
1: ओह।
0: हमको समझ ही नहीं पाया कि वो क्या कह रहे थे, कैसे समझ रहे थे। फिर हमने सिर पकड़ लिया, मैं बोला कुछ तो गड़बड़ है अभी भी, तो ये भी समझना पड़ेगा कि ये प्रक्रिया क्या है।

0: तो फिर वो परेश भाई ने बहुत प्यार से समझाया कि थोड़ा खुल के करो, थोड़ा तुम टेंशन में हो, सुखद अवस्था में रहो। मैं बोला सर सुखद अवस्था में कैसे रहूं, 3-4 दिन के बाद फिर रेंट देना है ये भी होता है। लेकिन इस तरीके से कारवा चल पड़ा। और पहली फिल्म मैंने की थी तशन, ये भी बड़ी बात है कि यश चोपड़ा की फिल्म में मेरा कास्टिंग हुआ,
1: और ये पहली फिल्म बनी,
0: पहली फिल्म बनी मेरी।
1: इसमें कितना संघर्ष करना पड़ा?
0: इसका ऑडिशन ग्रुप में हुआ कि भाई सबको चाहिए, क्योंकि बड़ी बड़ी फिल्म थी, बहुत बड़ी फिल्म
1: बहुत
0: थी,
1: बड़ी
0: अनिल
1: फिल्म,
0: कपूर,
1: मल्टी स्टार।
0: हाँ अनिल कपूर, करीना कपूर, सैफ अली खान, अक्षय कुमार, और अक्षय कुमार का एक अलग लेवल। अनिल कपूर उसमें पहली बार नेगेटिव रोल कर रहे थे, विलन, और अक्षय कुमार का नाम उसमें बच्चन पांडे था, और डायरेक्टर थे विक्टर साहब, विजय विजय कृष्णा आचार्य, बहुत अच्छे डायरेक्टर। तो उन्होंने कहा कि यार वैसे तो रामलीला का सीन है और कोई हनुमान बना हुआ है, कोई भाला पकड़, तो ये जो वो भाला पकड़ने वाली कहावतें जो सुनी थी NSD में कि यार क्या करोगे, भाला पकड़ के खड़े रहोगे पीछे, तो मैं बोला ये सब कुछ मेरे साथ ही क्यों शुरुआत हो रही है। तो फिर उन्होंने कहा कि यार इसमें से कोई अच्छी लाइन बोलने वाला एक एक्टर चाहिए, तो मैंने हाथ ऊपर कर दिया। मैं बोला सर मैं बोल लूंगा, क्योंकि ये तो करना ही पड़ेगा आपको, कि बताओ तो सही आपको आता
1: बिल्कुल
0: है।
1: बिल्कुल।
0: तो फिर उन्होंने मुझे रामलीला का कोई कैरेक्टर नहीं दिया, बल्कि रामलीला देखने के लिए जो लोग बैठे थे उसमें फर्स्ट रो में मैं बैठा हूं। अब बड़ी बात क्या है, बहुत मजेदार किस्सा है कि अक्षय जी को जो डायलॉग बोलना था वो उन्होंने मेरी छाती पे लिखा हुआ था, तो प्रिंटआउट उन्होंने मेरी छाती पे लगा दिया। अब मुझे लगा ये मेरे डायलॉग तो नहीं है, मैं कैसे बोलूंगा ऐसे देखकर। तो फिर का पता चला कि वो अक्षय जी के डायलॉग है, वो आपको भी देखेंगे और प्रिंटआउट को भी देखेंगे। और मेरा डायलॉग था उनके साथ, बढ़िया सा डायलॉग जो उसके बाद भी बहुत हिट हुआ, वो डायलॉग कि वो आते हैं और लड़की को बोलते हैं कि अरे पार्वती तू यहां क्या कर रही, लड़की का नाम पार्वती था लेकिन रामलीला चल रही थी तो वो सीता का रोल कर रही थी। तो फिर मैंने कहा कि अरे भैया वो सीता है, सीता पार्वतिया तो शिव पुराण का हीरोइन है, कहा कुछ भी बोलते हैं ऐसा कुछ। हमने हंसा तो वहां जो एक्चुअल ऑडियंस थी ना वो भी हंसने लगी कि हमने इस तरीके से कुछ डायलॉग बोला। एंड अक्षय जी के साथ बड़ा अच्छा अनुभव रहा, और वो मेरी पहली फिल्म थी। फिर वो रिलीज हुई तो देखने जाना है पहली बार कि अपने आप को,
1: पर्दे पर दिख रहा
0: हाँ
1: है।
0: 70 mm के पर्दे पर कैमरा ये वो। तो फिल्म चली नहीं, लेकिन मजा आया कि हमने अपने आप को देखा कि यार एडिटिंग में कहीं वो सीन कटा नहीं, मैं पूरा दिखा। और मराठा मंदिर में मैंने देखी, तो
1: वाह
0: मराठा
1: वाह,
0: मंदिर अपने आप में एक
1: एक
0: ऐतिहासिक
1: ऐतिहासिक थिएटर है।
0: ऐतिहासिक थिएटर है, तो दिस इज अ थिंग।
1: वाह, और इसके बाद फिर कारवां आगे बढ़ा।
0: हाँ फिर तो वही है कि एक काम से दूसरा काम, लेकिन हाँ संघर्ष तो बीच बीच में चल ही रहा था। ऐसा नहीं है कि एक फिल्म कर ली तो दूसरी कल ही कल मिल जाएगी। आज तक भी हमको फिल्में ढूंढने के लिए थोड़ा वो संघर्ष तो करना ही पड़ता है कि कौन सी जगह पर आपकी जरूरत है, इम्पोर्टेंट ये है। तो यही कह रहे थे ना कि यार तुमको कैसे यश चोपड़ा के वहां से काम मिल गया, क्योंकि उनको लग रहा था कि तुम तो राम गोपाल वर्मा के एक्टर हो।
1: अच्छा।
0: हाँ एक ये भी होता था ना कि रामू जी के फिल्मों में ज्यादातर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की एक वो पैटर्न बनी हुई थी, राजपाल यादव जी हो गए और भी एक्टर्स जैसे विजय राज जी हमारे NSD रिपेट्री के। तो ये भी एक बड़ी बात थी कि इतनी बड़ी कमर्शियल फिल्म में मुझे एक छोटा सा किरदार मिला, तो वहां से मेरी शुरुआत हुई टशन। फिर आगे तो धीरे धीरे काइपियो छे, काइपियो छे में मैंने सुशांत जी के साथ काम किया, उसमें गट्टू जी डायरेक्टर थे, अभिषेक कपूर, वो बहुत अच्छा उसमें किरदार, धीरे धीरे बढ़ता गया किरदार, और अब ऐसा है कि हमको अच्छे किरदार मिलने लग गए हैं।
1: बिल्कुल। बजरंगी भाईजान में भी आपने काम
0: जी जी
1: किया?
0: जी जी बजरंगी भाईजान का मेरा सलमान जी के साथ काफी अच्छा वो सीन था बस में।
1: हाँ, बस वाला सीन।
0: जी जी
1: बिल्कुल, उसके बारे में बताइए कैसा रहा हो?
0: बढ़िया। उस वक्त दुनिया को बस यही लगता था कि भाई सलमान जी पता नहीं किस तरीके से बात करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था, वो बहुत सहज तरीके से हमसे मिले थे। और उसमें भी यही था कि 3-4 लोग बस में बैठे थे, अब बोले कि डायलॉग बोलने वाला है, फिर हमने हाथ ऊपर कर दिया था। मैं बोला हम बोल लेंगे सर। और वहां पर भी हमारी सीट के वहां सलमान जी के डायलॉग लिखे हुए हैं।
1: अच्छा, ऐसा भी था।
0: हाँ डायलॉग तो उनके लिखे हुए ही रहते थे, और मैं तो तुगलक के भी याद करके चला गया था डायलॉग
1: अरे बाप रे।
0: कि जहां कम पड़ जाए तो हम बोल देंगे। तो वो ऐसा सीन था कि वो मुन्नी से पूछता है कि तुम कौन से जगह से हो, वो बोल तो सकती नहीं थी, तो बोले कि मैं शहरों के नाम बोल रहा हूं
1: तुम
0: तो
1: हाँ
0: हाथ
1: करना।
0: करना। तो वो शहरों के सारे नाम मेरे सीट पे लिखे थे,
1: ओ ओ
0: बरोड़ा, बीकानेर, जैसलमेर, ये

0: और उसमें एक शहर मेरा क्यू था, वो
1: हाँ
0: मुझे पकड़ना था। तो वो बड़ा मजेदार सीन है वो, कभी आप, आज
1: बिल्कुल
0: भी वो
1: बिल्कुल
0: फिल्म सेटमैक्स पे चलती है, तो उस सीन की। और इतना अच्छा भाईचारा हमारा बना कि फिर मैंने जब दूसरी बार ट्यूबलाइट फिल्म में काम किया, सेम डायरेक्टर
1: हाँ
0: सेम स्टार, तो वो मुझे पहचान गए सलमान भाई। अरे बोले, तुम तो पहले भी काम कर चुके हो ना मेरे साथ में। बोला हाँ सर, मैंने बजरंगी भाई। हाँ, कमाल का यार, तुम्हारा वो हंसी बहुत अच्छा है, तो उसमें मैंने हंसने का
1: जी
0: एक
1: जी
0: सिग्नेचर बनाया
1: जी
0: था।
1: जी जी
0: तो ये है। और उस वक्त वो तीन सेट पर काम कर रहे थे,
1: ओके
0: प्रेम रतन धन पायो,
1: हाँ
0: बिग बॉस
1: हम
0: और बजरंगी भाईजान,
1: ओके हम
0: और एनडी देसाई स्टूडियो था क्योंकि सब नजदीक है, क्योंकि बिग बॉस लोनावाला में था, प्रेम रतन धन पायो वहीं था,
1: और ये कर्जत में था।
0: हाँ करजत में था। तो उनके साथ खाना वाना भी हुआ, तो बहुत अच्छे से वो खिलाते हैं अपने को एक्टर को, खुद बहुत कम खाते हैं। तो अच्छा एक्सपीरियंस रहा। कबीर खान सर बहुत प्यार से समझाते हैं एक एक किरदार को, तो हंसी ठल्ले हुए वहां पर भी कुछ उनकी बातों के। जब शूट नहीं कर रहे होते हैं तब भी आप बात करते हैं ना को एक्टर से, तो सलमान,
1: बिल्कुल
0: हाँ तो सलमान भाई से बोले अच्छा है अच्छा है, हाँ गुड गुड ऐसा। तो अब इतना बड़ा एक्टर, आई मीन हमारे लिए तो बहुत ही बड़ा है सलमान खान, तो बचपन से जिनको मैंने प्यार किया फिल्म में देखा, हमने जिनको हमने बागी फिल्म में देखा, वो किरदार आपके सामने बैठा है आपके साथ एक ही फिल्म में, तो वो मोमेंट मेरे लिए बहुत
1: मायने
0: मायने
1: रखता है
0: रखता है।
1: जी। एक तो ये कि अभी एक गाने की जगह बनाई जाए और उसके बाद आगे की बात करेंगे, तो
0: मैं
1: कौन सा
0: चाहता
1: गाना
0: हूं
1: होगा?
0: बजरंगी भाईजान फिल्म का ही एक गाना हो जाए, भर दो
1: बिल्कुल
0: झोली मेरी,
1: क्या
0: जो
1: बात है,
0: अदनान सामी
1: सुनते
0: ने।
1: हैं
0: जी
1: अदनान
0: जी
1: समी की
0: जी
1: आवाज
0: जी जी
1: से।
0: जी

0: भाई बजरंगी भाईजान की हमने बातें की और फिल्मों में फिर उसके बाद आपका काम आगे जो है वो बढ़ता चला गया और एक तरह से मुंबई में एक जगह बनती चली गई।
1: जी
0: टेलीविजन भी किया और थिएटर की दुनिया में भी आप दोबारा सक्रिय हुए मुंबई में।
1: हाँ
0: ये बातें
1: हाँ
0: करेंगे।
1: तो थिएटर तो मैंने कहा ना कि मुझे गुजराती थिएटर से बहुत होप थी शुरुआत से और वो आज भी है मुझे, क्योंकि एकमात्र ऐसा थिएटर है जो आपको रोज एक शो दे रहा है।
0: जी
1: जैसे ही आप ग्रीन रूम में पहुंचते हो अपना कॉस्ट्यूम होते हैं ना, मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी मिल जानी चाहिए, कुली फिल्म का बच्चन साहब का डायलॉग, तो वैसा वहां वो ऑर्गेनाइजेशन है उनका, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने थिएटर किया था काफी, सिनेमा करता रहा। टीवी शो के लिए मैंने ऐसे अपने आप को बहुत ज्यादा टाइम नहीं दिया मैंने टीवी शो के लिए, क्योंकि मुझे लग रहा था कि जब थिएटर मेरे पास है जो गुजराती थिएटर है, जो पैसों वाला थिएटर है, तो क्यों फिर मैं अपने आप को दो तीन जगहों पर बांटता चला जाऊं। तो फिर मैंने सिनेमा और थिएटर, थिएटर में मैं गुजराती थिएटर, हिंदी थिएटर, अभी लेटेस्ट अभी भी मैं लाइलाज प्ले कर रहा हूँ,
0: पंकज त्रिपाठी जी,
1: पंकज त्रिपाठी जी जिसके प्रोड्यूसर है, उनकी वाइफ मृदुला त्रिपाठी, और फैज मोहम्मद ने उसको, वो भी एनएसडी के मेरे जूनियर है, और बड़ा इंटरेस्टिंग म्यूजिकल प्ले है, एक बैंड वालों की कहानी है।
0: हाँ।
1: कितनी गजब कहानी है कि बैंड वाले जो होते हैं वो कई बार अपनी ही गर्लफ्रेंड की शादी में बैंड बजाने चले जाते
0: हैं। अरे बाप रे,
1: दिस इज अ वन लाइन।
0: जी जी
1: तो ये ऐसी ट्रेजेडी है, तो बहुत मजा आता है उनके साथ काम करके, और इतने सहज तरीके से वो आज भी लोगों से हमसे मिलते
0: और बहुत
1: हैं।
0: पुराना आपका तो नाता है, आपके सीनियर रहे हैं।
1: फर्स्ट ईयर थर्ड ईयर तो समझ लो ना कि वो एक बहुत है आपके, आप तीशु भाई, इरफान भाई, इनका भी ऐसा ही फर्स्ट ईयर थर्ड ईयर वाला जो रिलेशन होता है।
0: हाँ।
1: ये बहुत मायने रखता है, तो वही मेरे साथ भी हुआ।
0: जी तो ये जो इन दिनों थिएटर की जो परंपरा है वो फिर से समृद्ध है और फिल्मों के कलाकार भी अब थिएटर की दुनिया का रुख करते हैं और दर्शक भी प्लेस को अलग अलग शहरों में इंतजार करते हैं, देखना चाहते हैं, इसके बारे में आपकी क्या राय है और ये कितनी अच्छी परंपरा है कि थिएटर समृद्ध हो रहा है?
1: बिल्कुल, मुझे तो जहां तक लगता है कि आज से 3000 साल पहले भी थिएटर चल रहा था।
0: जी
1: बिफोर बीसी में, हम बिफोर क्राइस्ट, हम ग्रीक थिएटर की हिस्ट्री वगैरह देखते हैं तो वहां से लेकर आज तक कभी थिएटर वीक नहीं हुआ है, हम ही कमजोर पड़ गए हैं, करने वाले ही कमजोर पड़े हैं, थिएटर कभी वीक नहीं हुआ है। ये नसीर साहब का भी एक स्टेटमेंट मैंने सुना था, नसीर सर का, कि उन्होंने एक जगह कहा था कि जब मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ज्वाइन कर रहा था तब लोग बोल रहे थे कि थिएटर ऑक्सीजन पर है, आज तक भी वो ऑक्सीजन पर, यानी आज तक नहीं मरा।
0: हाँ,
1: तो कैसे
0: ऑक्सीजन, हमेशा ये कहा जाता है ये थिएटर ऑक्सीजन पर है।
1: हाँ, हमेशा कहा जाता है, तो ये एक मिथ जो बना हुआ था वो मुझे लग रहा है कि अब धीरे धीरे टूट रहा है और अब बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है। जैसे कि पहले मुंबई में हम सिर्फ पृथ्वी थिएटर में ही एक डिपेंडेंट थे, लेकिन अब नीता मुकेश अंबानी के वहां पर भी कल्चरल सेंटर में ऑडिटोरियम बन गए, बहुत इंटीमेट स्पेसेस सब डेवलप हुई है कि आप चार किरदारों को लेकर एक परसाई जी की कहानी उठा लो और उसको भी नाटक का रूप दे दो। और इसमें सबसे बड़ा रोल है, अगर मैं कहूँ ना कि थिएटर घर घर तक पहुँचाने में, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा तो है ही, अब्राहिम अलकाज़ी साहब तो है ही, लेकिन उनके जितने भी शिष्य है, उनमें अंकुर जी है, उनमें रामगोपाल बजाज है, रतन थियाम है, बंसी कौल है, इन सब लोगों ने थिएटर की बहुत बड़ी साधना की और उस वजह से आज वो थिएटर हमको हमेशा अपनी तरफ चुंबकीय आकर्षण की तरह वो हमें खींचता है।

0: जैसे कहानियों का रंगमंच, इतनी प्यारी विधा है ये
1: अंकुर जी ने,
0: अंकुर जी की विधा है ये
1: जी,
0: अंकुर जी, महेश आनंद जी। लेकिन अंकुर जी का ये कॉन्सेप्ट इतना अच्छा लगता था हमको, हमने प्रेमचंद जी की कहानियां भी की थी, जिनेंद्र जी की भी कहानियां की थी, और उनका एक ही था कि जीरो कॉस्ट बजट है इसमें। आपके पास कहानी है और मंच है
1: बस,
0: लाइट अगर हुई तो ठीक है, बोले अगर एक आध हेलोजन जल गया तो ठीक है आलोक, बाकी और कुछ नहीं है। और एक कहानी की हमको तीन तीन ड्राफ्ट बनाने को कहते थे, कि पहली कहानी में मैं बड़े भाई साहब बनाऊं तो दूसरे ड्राफ्ट में मैं छोटा भाई बनूंगा। अब वो छोटा भाई क्या कर रहा है, उसकी एक्टिविटी क्या है, और कहानी का एक भी शब्द आगे पीछे नहीं होना चाहिए,
1: सेम का सेम,
0: सेम टू सेम। तो फर्स्ट टाइम मैंने फील किया कि व्हाट इज द नैरेटिव एक्टिंग एंड व्हाट इज द सब्जेक्टिव एक्टिंग, तो नैरेशन के साथ। तो आज थिएटर अपने आप में एक अच्छा रोल अदा कर रहा है समाज में, और बहुत अच्छी बात है कि बड़े बड़े स्टार फिल्मों में काम करने के बाद भी थिएटर को एज अ अपना वो समझकर कर रहे हैं कि हमें और कुछ नया सीखने को मिल जाए थिएटर में।
1: बिल्कुल।
0: और व्हाट इज द थिएटर का कंट्रीब्यूशन फिर सिनेमा में ले जाते हैं।
1: हाँ, तो दोनों तरफ की धाराएं चल रही हैं। आप तो कई भाषाएं जानते हैं, और जाहिर है कि अब फिर ये थिएटर में भी ये काम आते हैं। आपने यहाँ मुंबई में गुजराती थिएटर भी किया?
0: मैंने गुजराती थिएटर किया, मैंने एक हमारी खुद की जो मदर टंग है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, भांतू बोली बोलते हैं उसको।
1: अच्छा,
0: हम लोग ट्राइबल है एक्चुअली, वो
1: तो मराठी का एक प्रकार है,
0: नहीं
1: गुजराती का एक प्रकार है,
0: ये अपने आप में है ना, ये राष्ट्रीय स्तर पर बोली जाती भाषा है।
1: अच्छा,
0: बट ये लोग बंजार यानी घुमक्कड़ रहे, तो कोई गुजरात में स्थायी हो गया, कोई महाराष्ट्र में हो गया, तो वो लोग पढ़ाई कर रहे हैं मराठी में और गुजराती में, लेकिन जब आपस में मिलेंगे तो उनकी एक विशिष्ट बोली है।
1: अरे बाबा,
0: अगर आप कहे तो मैं उस बोली में ना, मेरी एक फिल्म भी आई है दिल्ली क्राइम सीजन 2।
1: हाँ हाँ हाँ,
0: वो किरदार मेरा उसी कम्युनिटी के था।
1: तो आपने वो किरदार वैसा बनाया या?
0: नहीं नहीं, मैंने राइटर के साथ डिस्कस किया था, भावेश मांडलिया राइटर जिन्होंने ओ माय गॉड लिखी, तो उनके साथ डिस्कस किया, तो उन्होंने कहा कि ये बैक स्टोरी आपकी बहुत अच्छी जा रही है, यानी मैंने अपनी बैक स्टोरी को उस किरदार के अंदर रखा। तो वो भांतू बोली में बात करते हैं, जैसे मुझे बोलना है कि कहाँ जा रहे हो और शाम तक वापस आ जाओगे ना, अरे की तोड़ जा रहा था सांझ सुधी उल्टा ही जांगड़ा ना, एकदम डिफरेंट,
1: कुछ गुजराती के आ रहे हैं,
0: गुजराती के थोड़े मराठी, तो ये क्या घुमक्कड़ लोगों के ने कभी महाराष्ट्र से कुछ ले लिया, कोई गुजरात से कुछ ले
1: तो
0: लिया,
1: मिक्स है,
0: कुछ राजस्थान से कुछ ले लिया। तो ये भाषा मुझे आती है, गुजराती भाषा मुझे आती है, हिंदी मुझे आती है, उर्दू जबान भी, यानी कि नुक्ते उकते लग जाते हैं ठीक ठाक, तो ये है। अंग्रेजी व्यवहारिक रूप से जितनी बोल सकता है उतनी मैं बोल लेता हूँ
1: जी।
0: तो भाषा मुझे लग रहा है कि एक अभिनेता का सबसे बड़ा वो होता है एलिमेंट, जिसको वो जितना मांझ ले उतना अच्छा है।
1: बहुत सारे बच्चे हैं जो अलग अलग शहरों में हैं और हमारी इस बातचीत को सुन रहे हैं, उनको लगता है कि एनएसडी जाएं और मुंबई आ जाएं, बस लाइफ सेट है।
0: नहीं नहीं नहीं, नहीं बिल्कुल,
1: तो उनको अपनी तरफ से कुछ कहिए।
0: मैं बस उनको इतना ही कहूंगा कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा आपको विधा सिखाता है
1: जी,
0: और प्रोफेशनल विधा सिखाता है, व्यवसायिक रंगमंच की तालीम देता है, लेकिन वो व्यवसायी एक बहुत बड़ा व्यवसायी है।
1: हाँ।
0: तो उस व्यवसाय में आपको आपके ग्राहक खुद ही ढूंढने हैं।
1: हाँ।
0: ना,
1: और मुंबई शहर आपको पीसता है,
0: पीसता है, जलना पड़ता है, और ये भी नहीं है कि इसमें नकारात्मकता ही भरी पड़ी है
1: जी,
0: कहीं पर आपका कुछ अच्छे काम आप करते हो तो आपको उसका अच्छा रिजल्ट भी मिलता है। तो मैंने ऐसे कई लोगों को देखा कि जो आते हैं और एडिक्शन में भी डूब जाते हैं, है ना, कई और तरह की चीज़ों में भटक जाते हैं, तो उन चीज़ों में अगर ना भटके और अगर आपने प्रशिक्षण प्राप्त किया है, चाहे फिल्म टेलीविजन इंस्टीट्यूट से किया हो, फिल्म इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया FTII से किया हो, या नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से किया हो, BNA से किया हो, तो प्रशिक्षण का जो एक बल लेकर अगर आप काम करते हो तो सफलता आपको मिलेगी। सफलता को आप ही कैटेगराइज करते हो कि किसको है, जैसे अभी अक्षय खन्ना जी को हम देख रहे हैं धुरंधर फिल्म में,
1: बिल्कुल,
0: तो उन्होंने यही कहा कि सफलता को आप कैसे मापते हो, है ना, कि मुझे आप सलमान खान और शाहरुख खान के साथ कंपेयर क्यों कर रहे हो,
1: बिल्कुल,
0: मैं अपने लेवल पर सफल हूं। तो मुझे लग रहा है कि ये एक अभिनेता के लिए बहुत बड़ी बात है।
1: क्या बात है, चलते चलते एक गाने की फरमाइश है।
0: शैलेंद्र जी मेरे बहुत फेवरेट रहे
1: जी,
0: और रेणु जी की कहानी पर उन्होंने
1: तीसरी कसम बनाई,
0: तीसरी कसम, उसका अगर आप सुना दे, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में,
1: जरूर ये गाना सुनाते हैं जी। आपको।

0: आलोक जी, बहुत अच्छा लगा आप विविध भारती के स्टूडियो में आए और आपने इतनी सारी बातें हमारे साथ शेयर की। बहुत बहुत धन्यवाद जी, अपना जी, समय देने के लिए।
1: जी जी जी धन्यवाद, और बहुत ही शुभकामनाएं हैं विविध भारती को, आप पूरी टीम को, जितने भी लोग ये काम कर रहे हैं। और क्या बताऊं मैं आपको कि रेडियो सच में हमारी जिंदगी का एक संगीत है, और अगर इंसान को आप किसी एक अरण्य में डाल दे, किसी घोर जंगल में डाल दे जहां सिर्फ निराशा निराशा ही हो गुफाओं में, और वहां एक रेडियो चल रहा हो ना, तो वो भी कहते हैं ना, रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था कि एक दिया सारे अंधेरे को भगा देता है। तो रेडियो घर में ऐसा है जो हमारी नकारात्मक शक्ति को बाहर फेंकता है और एक रचनात्मक ऊर्जा को हमारे घर में लाता है। तो रेडियो यंत्र घर में रहना वो ऐसा ही है जैसे एक परिवार का सदस्य आपके साथ रह रहा है।
0: बहुत बहुत शुक्रिया,
1: धन्यवाद।
2: बॉम्बे टॉकीज के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे अभिनेता आलोक गागड़ेकर से यूनुस खान की बातचीत। चलने से पहले आपको बता दें, आज के इस कार्यक्रम में रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन सहयोग रीमा जोशी, इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

0: कुछ दिल ने कहा।
1: सुनहरी ख्वाबों वाली एक लड़की।
0: अगर मेरी माँ बायोलॉजिकल मदर है तो टेक्निकल मदर मेरी विविध भारती है,
1: जिसे बचपन से ही गाने का शौक था।
0: कुर्सी पे बैठ के गा रहे थे और उसको लगा ट्रांजिस्टर ऑन छूट गया है।
2: हम चले तुम चलो सावन की हवा।
1: उसने तोड़े पारंपरिक समाज के बंधन।
0: अब जब हम बाइक लेके निकल गए, जब तीन चक्कर लग गया तब याद आया ये तो अब रोकना ही नहीं आता है।
1: एक कामयाबी जो मिलते मिलते रह गई।
0: कभी सोचते ही नहीं थे कि हम हारेंगे।
1: जिंदगी ने करवाया एक लंबा इंतजार।
2: सुंदर सपनों की है मंजिल कदम के।
1: संघर्ष की डाल पर कामयाबी का फूल खिला।
2: जैसे तो है पास मेरे तेरे पास में।
1: जानी मानी गायिका दीपाली सहाय बॉम्बे टॉकीज 29 अगस्त से 12 सितंबर हर शनिवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध

0: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्पररी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
1: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
0: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया,
1: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
0: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा
1: जी।
0: तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
1: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री।
2: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से रिले किए गए विविध भारती के कार्यक्रम। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का हाफलंग केंद्र है। स्टूडियो के घड़ी के अनुसार इस समय शाम के 5:10 हुए हैं। इसके साथ ही समाप्त होते हैं आज की पहली सभा। दूसरी सभा में शाम के 6:00 आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए मैं आपसे आज्ञा चाहती हूँ। नमस्कार।

नमस्कार, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 110.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का हाफलंग केंद्र है। इस समय शाम के 6:15 हुए हैं। सभी श्रोताओं को हार्दिक अभिनंदन करते हुए हम शाम की ये दूसरी सभा प्रारंभ करते हैं। तो आइए श्रोताओं, सबसे पहले आपको हमारे आज के दूसरी सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में बता देते हैं। अब से कुछ ही समय बाद आप सुन पाएंगे स्थानीय भाषाओं के कार्यक्रम में मार कार्यक्रम, जिसके तहत आज सुन पाएंगे कुछ मार भक्ति गीत भरते टी जटलिंग और साथियों की आवाज़ में पाइसुइले न्यू में, और साथ ही सुनवाएंगे कुछ जेमे पारंपरिक गीत जेमे कार्यक्रम में 6:25 पर। आकाशवाणी के गुवाहाटी केंद्र से हंदियर आंचलिक बतरी रिले किए जाएंगे 6:45 पर। शाम 7:00 डिमासा कार्यक्रम में सुनेंगे कुछ डिमासा आधुनिक गीत प्रदीप हाफलंगबार और साथियों के आवाज में। मोजारी रोंगी और साथी सुनवाएंगे कुछ कार्बी आधुनिक गीत कार्बी कार्यक्रम में 7:20 पर। 7:40 पर आप सुन पाएंगे कुकी कार्यक्रम में कुछ कुकी आधुनिक गीत लुटखोलाल चंगलोई और साथियों के आवाज में। कृषि संबंधी जानकारियों का कार्यक्रम किसान बनी रात 8:00। 8:30 पर आप शिक्षकों का ये कार्यक्रम सुन पाएंगे। 8:45 पर आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार संध्या में आप समाचार सुन पाएंगे। फोन इन प्रोग्राम हेलो हाफलॉन्ग आप सुनेंगे आज रात 9:00, और उसके पश्चात आप सुन पाएंगे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्र गीत। तो श्रोताओं, यह था हमारे आज के दूसरी सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में जानकारी। आकाशवाणी का ये हाफलंग केंद्र है। तो चलिए अब चलते हैं हमारे स्थानीय भाषाओं के कार्यक्रम को सुनने के लिए। पहले सुनिए मार कार्यक्रम, जिसके तहत आज हम आपको सुनवा रहे हैं कुछ मार भक्ति गीत वर्ते जतलिंग और साथियों की आवाज़ में।

श्रोताओं, अभी आप मार कार्यक्रम के तहत सुन रहे थे कुछ मार भक्ति गीत भारतेटी जटलिंग और साथियों की आवाज में। फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102 मेगाहर्ट्ज पर ही आकाशवाणी का हफलंग केंद्र है। अब प्रस्तुत है जमे कार्यक्रम। इसमें आज सुनिए जमे पारंपरिक गीत पाइसुइलेनियो में और साथियों की आवाज में।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे जिमे कार्यक्रम के तहत कुछ जिमे पारंपरिक गीत पाइसुईले न्यूमे और साथियों की आवाज में फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 110.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का हाफलंग केंद्र है। थोड़ी ही देर में आकाशवाणी के गुवाहाटी केंद्र से हंधियार आंचलिक बातरी रिले किए जाएंगे।

श्रोताओं, अभी आप डिमासा कार्यक्रम के तहत सुन रहे थे कुछ डिमासा आधुनिक गीत प्रदीप हफलंगबार और साथियों की आवाज में। आकाशवाणी का ये हफलंग केंद्र है, तो चलिए अब हम सुनते हैं कार्बी कार्यक्रम के तहत मोजारी रोंगी और साथियों से कुछ कार्बी आधुनिक गीत।

कार्बी कार्यक्रम में अभी आप मोजारी रोंगी और साथियों से सुन रहे थे कुछ कार्बी आधुनिक गीत। आकाशवाणी का यह हाफलंग केंद्र है। अब प्रस्तुत है कुकी कार्यक्रम के तहत लुटखोलाल चंगलोई और साथियों से कुछ कुकी आधुनिक गीत।

श्रोताओं, अभी आप कुकी कार्यक्रम में सुन रहे थे लुटखोलाल चंगलोई और साथियों से कुकी आधुनिक गीत। फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ही आकाशवाणी का हाफलंग केंद्र है। अब प्रस्तुत है कृषि संबंधी जानकारियों का कार्यक्रम किसान वाणी।

0: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं आपकी दोस्त अंकिता और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी हाफ लॉन्ग फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 मेगाहर्ट्ज पर हमारा विशेष कार्यक्रम टीचर्स प्रोग्राम। श्रोताओं, पिछले शनिवार हमने अपने विशेष कार्यक्रम में साइबर क्राइम और डिजिटल सेफ्टी विषय पर चर्चा शुरू की थी, जहां हमने जाना कि कैसे हम बच्चों को सेफ इंटरनेट यूज करने की अवेयरनेस दे सकते हैं और सोशल मीडिया चलाते वक्त कौन सी चीजों का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन उस कार्यक्रम को हम समय की पाबंदी के कारण पूरा नहीं कर पाए थे, इसीलिए आज मैं फिर से एक बार मौजूद हूँ आपके साथ इसी कार्यक्रम के दूसरे भाग को लेकर। आज हम उसी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए समझने की कोशिश करेंगे कि साइबर क्राइम के शिकार होने पे आप कैसे उससे निकल सकते हैं और कई चीजें डिजिटल डिसिप्लिन से जुड़ी हुई। हमारे साथ फिर से एक बार मौजूद है डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग डीमा हसाओ कालाचांद के सीनियर लेक्चरर सर अरूप देव। तो आइए बातचीत को आगे बढ़ाते हैं सर का स्वागत करते हुए। सर, आपका फिर से एक बार स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए।
1: नमस्कार
0: सर। तो हमने काफी बातचीत किया है इंटरनेट की अवेयरनेस को लेकर। अभी मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आजकल जैसे बच्चे सोशल मीडिया पे काफी एक्टिव रहते हैं, तो सोशल मीडिया यूज करते वक्त उन्हें किन बातों का खास ध्यान रखना जरूरी है?
1: एक्चुअली बच्चा लोगों को 15 प्लस व 16 प्लस होने से अपना हमारा यहाँ एक अकाउंट खुलने का प्रावधान है
0: जी।
1: तो पेरेंट्स लोगों को और टीचर्स को ये हमारा अनुरोध है कि उन लोग भी कोई बच्चा को कोई अकाउंट सोशल मीडिया अगर अकाउंट खुल के देना वो किसी पेरेंट्स का गाइडेंस में खुलने से बेहतर है। फिर भी अगर कोई अपना ऐसा सोशल मीडिया अकाउंट्स बहुत सा बच्चा चला रहा है तो उसमें आप खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारा प्रावधान है। तो इसमें मेजर जो आता है कि अकाउंट प्राइवेसी, आपको अपना अकाउंट को कैसा उसको सेव करके रखे, इजी एक्सेस ना दे बच्चा को, कोई आदमी आके आपको अकाउंट को इजी एक्सेस नहीं देना चाहिए। तो उसको लिए पहला चीज है कि आपको एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज करना चाहिए
0: जी।
1: एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट आजकल ये है कि टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन होता है वो रखना चाहिए। अगर किसी ने टू फैक्टर ऑथेंटिकेट एवरी डिवाइसेस में बाय एवरी सोशल मीडिया ऐप में आजकल ये प्रोवाइडेड है टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। इसमें क्या होता है कि कोई अगर आपका अकाउंट हैक करने का कोशिश कर रहा है, कोई आपको यूज करना कोशिश कर रहा है, तो आपको पास तुरंत वो मैसेज आ जाता है। तो वो एक्टिव करके रखना बहुत ही जरूरी है
0: जी सर।
1: देन आपको जो प्रोफाइल है इसमें प्राइवेसी को जो सेक्शन है उसमें जाके वो आपको सेट अच्छा से करना चाहिए क्योंकि जो पोस्ट करते हैं सोशल मीडिया पे वो कौन आदमी देख रहा है बा किसने देखा उसको आप रेस्ट्रिक्शन करने से अच्छा है। अगर सभी के लिए ओपन होगा तो आपको वल्नरेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगा साइबर क्राइम के लिए। देन आपको ऐसा भी फोटोज एंड पोस्ट टैग करना नहीं चाहिए जिसमें आपको पर्सनल डिटेल्स शेयरिंग हो। अगर आपने किसी ने पोस्ट कर लिया, अगर वो पिक्चर से आपको पर्सनल डिटेल्स ट्रेल्स कर सकता है तो इसलिए ये जितना सके आप कम करिए सो देट कि जो साइबर क्राइम करना चाहता है परपेट्रेटर वो आपको आइडेंटिफाई कर नहीं पाए आप कहाँ से हो क्या नहीं। देन आपको ये भी है कि आपका एड्रेस फोन नंबर वो सब देना नहीं चाहिए, ऊपर में उस रेस्ट्रिक्टेड होना चाहिए, ओनली ट्रस्टेड पर्सन जो आप पर्सनली जानते हो उसी का अकाउंट है तो उसी को शेयर करना चाहिए। देन कनेक्शन फ्रेंड रिक्वेस्ट आने से सबका भी वो एक्सेप्ट करना नहीं चाहिए, कभी कभी ये फेक फ्रेंड रिक्वेस्ट आ जाता है, इसको हम लोग इम्पर्सनेशन कहते हैं। जो व्यक्ति है शायद वो व्यक्ति वो नहीं भी हो सकता है, शायद वो व्यक्ति आपके साथ एक लड़का होके बात कर रहा है, मे बी वो लड़की हो सकता है, मे बी वो एनीथिंग हो सकता है, वो एक एजेड पर्सन भी हो सकता है लेकिन आपके साथ फ्रेंडली व्यवहार कर रहा है। तो इससे हम लोग को बचना चाहिए एंड पिसिंग से भी बचना चाहिए। पिसिंग हो गया कि आपको मोबाइल में कभी आप लोग देखते होंगे कोई लिंक आ जाता है बा कोई अटैचमेंट आ जाता है, तो लिंक एंड अटैचमेंट में टच करना नहीं चाहिए बा क्लिक करना नहीं चाहिए अनटिल एंड अनलेस आप उससे विश्वास करते हो बा किसी ने आपको ट्रस्टेड आदमी ने भेजा तभी आप करिए। एंड कभी कभी आप सर्फिंग करने में आपको ये देखना चाहिए कि जो सर्फ कर रहा है उसका URL एड्रेस सही है कि नहीं। कभी कभी URL एड्रेस देखने में सेम ही होता, जस्ट एक ई और आई का फर्क हो जाता है, तो उसमें बहुत सारा कभी आपका पूरा मोबाइल

0: हैक हो सकता है, ये भी देखना चाहिए। देन आपको लोकेशंस को हमेशा हाइड करके रखने से अच्छा है, लोकेशन तो बिकॉज आपका लोकेशन ही आपको बताता है आपका मूवमेंट, एवरी मूवमेंट, आप कहाँ जा रहे हो कहाँ नहीं, ये सारा। देन मेंटल हेल्थ के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि मेंटल हेल्थ हम कैसा रखें। स्टूडेंट का मेंटल हेल्थ के लिए भी अगर ज़्यादा हम स्क्रीन टाइम हो गया तो मेरा तो उसको मेंटल हेल्थ में प्रॉब्लम आ जाता है, किस किस को मेमोरी लॉस हो, उसको स्पान ऑफ अटेंशन डाइवर्ट हो जाता है। और एक ये है कि बुलिंग होता है इंटरनेट में, तो बुलिंग होने के बाद में कभी कभी बच्चा खुद को सेल्फ हार्म भी कर देता है, एंड कभी कभी वो व्यक्ति जो उसको बुलिंग कर रहा है वो उसको दे के अनवांटेड काम भी करा सकता है, तो इसी चीज़ में हम लोग को ध्यान देना चाहिए जनरली।
1: जी सर, तो आपने बहुत अच्छे से बताया है सर कि सोशल मीडिया चलाते वक्त हमें कितना ध्यान रखना चाहिए। सर, तो अभी जैसे आपने हमें पहले बता दिया है थोड़ा सा कि जब बच्चे अगर ऐसे साइबर क्राइम का शिकार हो जाते हैं तो कैसा क्या करना चाहिए और उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, आपने बताया है। अभी मैं ये जानना चाहूंगी कि जब कोई स्टूडेंट के साथ ऑनलाइन फ्रॉड, फेक आईडी या साइबर बुलिंग जैसा सिचुएशन हो जाए तो उसे तुरंत क्या कदम उठाना चाहिए?
0: बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो ये केसेस हमेशा हो रहा है आजकल, ये केसेस ऑफन देखा जाता है हमारा
1: जी
0: समाज में। तो इसके लिए दो कैटेगरीज में हम आप इसके बारे में बात करेंगे। पहला हो गया आपका फाइनेंशियल जो फ्रॉडलेंट होता है उसको, एंड देन ऑनलाइन जो साइबर क्राइम होता है उसको बाद में। पहला जो है आपको इविडेंस, जब आपको कोई भी साइबर क्राइम हो, सपोज आपको आपको बैंकिंग में फाइनेंशियल फ्रॉड हो आपका साथ
1: जी जी
0: बैंकिंग में, तो उसको लिए आपको क्या करना चाहिए, पहला मैं वो बताना चाहूँगी। तो पहला है कि जब भी आपको वो फाइनेंशियल फ्रॉड हो तो इमिडिएटली आपको उस बैंक में कांटेक्ट करें, उसको अकाउंट को क्लोज कराइए, देन एक ट्रांजेक्शन आईडी और सब वगैरह आप रिकॉर्ड रखिए, एंड तुरंत कॉल कीजिए 1930 नेशनल साइबर हेल्पलाइन। 1930 जो नेशनल साइबर हेल्पलाइन है, और उसमें जब आप कंप्लेन करेंगे तब उसको पहले ही आपको ट्रांजेक्शन आईडी, बेनिफिशियरी डिटेल्स और सब आपको पूछेंगे, तो इसको लिए वहाँ में आपको ये करें। देन आपको क्या करना है, एक ऑनलाइन कंप्लेंट फाइल करना है cybercrime.gov.in में। वहाँ में अगर जाइए उस वेब पेज में जाके आप ऑनलाइन फ्रॉड का बारे में आप रिपोर्ट कर सकते हैं। देन उसका बाद आप लोकल थाना में जाके, साइबर सेल होता है आजकल हर एक थाना में, तो उसमें जाके आप कोई FIR दे सकते हैं,
1: जी
0: ये इमीडिएट काम है आपको। अगर फेक आईडी एंड इम्पर्सनेशंस को आप बात कर रहे हैं, तो फेक आईडी एंड इम्पर्सनेशन में क्या होता है, जब भी ऐसा कोई आए साथ साथ आप उस व्यक्ति जो इम्पर्सनेशंस कर रहा है वह फेक आईडी आपका यूज़ कर रहा है, साथ ही साथ उसका एक स्क्रीनशॉट लेके रखना चाहिए।
1: जी
0: वो स्क्रीनशॉट आपको प्रूफ में काम आएगा लेटर स्टेज में। देन आपको सोशल प्लेटफॉर्म में एक रिपोर्ट सेक्शन है, आप जाके उसमें रिपोर्ट कर सकते हैं कि ये फ्रॉड है, बा रिमूवल करने के लिए हर सोशल प्लेटफॉर्म में ये है। देन और एक कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल में। और साइबर बुलिंग, हेरासमेंट और थ्रेट के लिए, इसके लिए आपको क्या करना चाहिए कि साथ साथ उस अकाउंट को ब्लॉक करना चाहिए एंड रिपोर्ट करना चाहिए। वो उसमें भी आप एनसीपीआर मतलब हो गया आपको नेशनल कस्टमर प्रिफरेंस रजिस्टर, वहाँ में जाके आप फोन करके उस कॉलिंग नंबर को आप ब्लॉक कर सकते हैं, अगर आप उस नंबर से कोई डिस्टर्बिंग मैसेज बार बार आ रहा है, बा SMS आ रहा है आपको डिस्टर्ब कर रहा है, वो ब्लॉक कर सकते हैं आप। देन आपको किसी ने थ्रेट दे दिया, एक्सटर्शन कर दिया, तो उसको ले भी आप कंप्लेन कर सकते हैं वो इस नेशनल साइबर क्राइम डॉट गोव इन में, वहाँ जाके आप लोग बा नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल में जाके इसमें आप लोग कंप्लेन कर सकते हैं। 1930 जो हेल्पलाइन है वो इमीडिएट ब्लॉकिंग और फाइनेंशियल फ्रॉड के लिए है ज़्यादातर, एंड साइबर क्राइम डॉट गोव इन जो है वो ऑनलाइन पोर्टल है फॉर कंप्लेंट के लिए, मेंटल हेरासमेंट व दुर्सा और साइबर क्राइम के लिए।
1: सर, तो यहाँ पे काफ़ी पॉइंट्स हमारे स्टूडेंट्स के लिए भी हेल्पफुल रहेगा आपके बताए हुए पॉइंट्स जो है। जी सर, जैसे हमने काफ़ी बात किया है यहाँ पे जो क्या क्या स्टेप्स लेना चाहिए अगर ये सब फेस करें हम लोग, क्या आपको लगता है कि स्कूल लेवल पर साइबर अवेयरनेस प्रोग्राम्स या वर्कशॉप करवाना ज़रूरी है?
0: हाँ, बहुत ही ज़रूरी है, इससे स्टूडेंट का साइबर क्राइम के बारे में अवेयरनेस होगा, उनको ये अवेयरनेस होगा कि हम कहाँ में जाके रिपोर्ट करें अगर मेरा साथ साइबर फ्रॉड हो गया,
1: जी
0: बा नेशनल साइबर हेल्पलाइन नंबर क्या है, उन सब बारे में उन लोग को जागृति होगा।

0: कोई अवेयरनेस आएगा, तो ये इसलिए ये बहुत जरूरी है ये करना।
1: जी जी सर, तो जैसे हम जानते हैं कि हमारे लाइफ में हर चीज का एक डिसिप्लिन मेंटेन करना जरूरी है, तो आजकल के डिजिटल युग में आपके हिसाब से डिजिटल डिसिप्लिन स्टूडेंट्स के लिए कितना जरूरी है?
0: हाँ, डिजिटल डिसिप्लिन बहुत इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट के लिए, क्योंकि डिजिटल डिसिप्लिन अगर नहीं रहेगा तो स्टूडेंट्स अपना अकाउंट्स व अपना सोशल मीडिया है उसको प्रोटेक्ट करने नहीं सकेगा। इसके लिए फर्स्ट है कि जैसा मैंने पहले ही बताया, उसको प्राइवेसी एंड आइडेंटिटी, ये दो इम्पोर्टेंट चीज़ें उसको बचाना है, ठीक है। देन फाइनेंशियल एंड सोशल हार्म को भी बचाना है, तो स्टूडेंट उसको बारे में पता चल जाएगा कि हमको कब कहाँ में बसना चाहिए व कहाँ से हमको ये सुविधा मिलेगा। एंड मीडिया लिटरेसी एक होना चाहिए, मीडिया लिटरेसी इन दैट सेंस कि स्टूडेंट्स को आजकल ये पता होना चाहिए कौन सा मिस इन्फॉर्मेशन है एंड कौन सा फेक इन्फॉर्मेशन है, एंड कहाँ में जाने से हमको ऑथेंटिकेट इन्फॉर्मेशन बा कौन सोर्स में जाने से हमको अच्छा इन्फॉर्मेशन मिलेगा, उसके ऊपर उनको एक ज्ञान होना चाहिए। तो ये इम्पोर्टेंट है आज का दिन में स्टूडेंट के डिजिटल डिसिप्लिन के लिए।
1: जी जी सर, इस चीज़ को डिफ्रेंशिएट करना बहुत ज़रूरी है। जी सर, तो अभी हम धीरे धीरे हमारे कार्यक्रम के अंत में पहुंचने वाले हैं, तो आखिर में आपसे ये पूछना चाहूंगी, अगर आप स्टूडेंट्स को साइबर क्राइम से बचने के लिए कुछ सिंपल और प्रैक्टिकल सलाह देना चाहे तो आप क्या कहना चाहेंगे?
0: हाँ, वो तो खुद को बचाना एंड साइड बाई साइड इंटरनेट को सही तरह यूज़ करना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसके लिए पहला जो है कि आप रेस्पेक्ट द प्राइवेसी ऑफ अदर्स एंड योर ओन प्राइवेसी, आपको दूसरे को प्राइवेसी को भी देखना चाहिए एंड खुद का प्राइवेसी को होना चाहिए।
1: बिल्कुल,
0: और रिपोर्ट करना चाहिए, कभी भी इल्लीगल अगर कोई चीज़ देख रहे हैं तो आपको साथ साथ इसको रिपोर्ट करना चाहिए। एंड आपका खुद का नाम यूज़ नहीं करके दूसरा शॉर्ट नाम यूज़ करने से अच्छा रहेगा उसी हिसाब से, बाप एक डुप्लीकेट नाम रखने से ठीक है, बात जितना सारा इन्फॉर्मेशन शेयर कम करने से अच्छा है। एंड एंटीवायरस अप टू डेट हमेशा आना चाहिए, और जो ट्रस्टेड सोर्स है वहाँ से सॉफ्टवेयर लेना चाहिए। देन अगर वेब एड्रेस को आप अच्छा से देखना चाहिए कि ये वेब एड्रेस https://. ओके स्टार्ट हो रहा है कि नहीं, अगर ये हो रहा है तो आपको समझ जाइए कि ये बहुत ही सिक्योर्ड वेबसाइट है, अगर ये नहीं है तो समझिए कि ये इतना सिक्योर्ड नहीं है।
1: जी जी सर,
0: ये बहुत सारा है। देन डिजिटल रेपुटेशन मैंने पहले भी बताया, माइंडफुली कैसा रिएक्ट करना चाहिए। एंड जब भी आपका काम हो जाता है आप लॉग आउट हो जाइए सोशल अकाउंट से, एंड आपका अगर डिवाइस में इंटरनेट का जरूरत नहीं है इंटरनेट काट के रखिए। वही है
1: जी सर, ये बहुत अच्छा लगा, आपने हमारे श्रोताओं को इस कार्यक्रम के विषय के माध्यम से बहुत कुछ समझाने की कोशिश की है। आशा करती हूँ हमारे श्रोताओं को हमारी जो बातचीत है वो बहुत अच्छी लगी होगी। तो सर, हमें बहुत खुशी है आपने अपना कीमती समय हमें दिया, यहाँ पे आके हमसे इतनी सारी बातचीत शेयर की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर।
0: धन्यवाद सभी को।
1: जी तो श्रोताओं, इस कार्यक्रम से हमें ये समझने का अवसर मिला कि डिजिटल दुनिया जितनी उपयोगी है उतना ही जरूरी है उसका सुरक्षित और जिम्मेदारी के साथ उपयोग करना। छोटी छोटी सावधानियां जैसे अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन सुरक्षित रखना, अननोन लिंक्स पर क्लिक ना करना, स्ट्रांग पासवर्ड्स का इस्तेमाल करना और ऑनलाइन एक्टिविटीज के प्रति सतर्क रहना हमें साइबर क्राइम से काफी हद तक सुरक्षित रख सकती है। हमें उम्मीद है कि आज की ये चर्चा स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और टीचर्स सभी के लिए उपयोगी साबित होगी और साइबर अवेयरनेस बढ़ाने में मदद करेगी। हम हमारे अतिथि का दिल से धन्यवाद करते हैं जिन्होंने अपने विचारों और महत्वपूर्ण जानकारियों को हमारे साथ साझा किए। इसी के साथ हमारे इस कार्यक्रम को हम यही समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे अगले हफ्ते एक नए मेहमान और नए विषय के साथ। यूं ही देते रहिए हमें ढेर सारा प्यार और सुनते रहिए आकाशवाणी हाफ लॉन्ग फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 मेगाहर्ट्ज पर। नमस्कार।

श्रोतम, अभी आप टीचर्स प्रोग्राम सुन रहे थे। आज का यह कार्यक्रम प्रस्तुत किया है अंकिता पाल ने। आकाशवाणी का ये हफलंग केंद्र है। थोड़ी ही देर में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार लेके जाएंगे।

0: विश्व चैंपियनशिप में भारतीय महिला डबल्स जोड़ी त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद ने ऐतिहासिक कांस्य पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शाम नई दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ वार्ता की। पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन के अलावा बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और महासचिव सहित अन्य लोग भी उपस्थित थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि संगठनात्मक बैठकें नए विचारों और दृष्टिकोण पर आधारित होती हैं। इनका उद्देश्य पार्टी को मजबूत करना और लोगों के साथ इसके जुड़ाव को बढ़ाना है। इससे पहले दिन में पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने भी पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ बैठक की। श्री नवीन ने कहा कि भाजपा टीम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प को साकार करने के लिए पार्टी के आधार को और व्यापक बनाने के लिए पूर्ण समर्पण और निष्ठा के साथ काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री नवीन ने कहा कि पार्टी भाजपा कार्यकर्ताओं के माध्यम से एक राष्ट्रव्यापी अभियान चलाएगी। इसमें वंदे मातरम के इतिहास, राष्ट्रीय महत्व और गौरवशाली विरासत को देश के कोने कोने तक पहुंचाया जाएगा। इसके बाद पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में पार्टी एक महीने तक चलने वाले राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान का आयोजन करेगी। इसका उद्देश्य जनसेवा के प्रति श्री मोदी की प्रतिबद्धता को उजागर करना है। श्री तावड़े ने कहा कि इस अभियान के अंतर्गत पार्टी कार्यकर्ता देशभर के 14 लाख से अधिक आंगनवाड़ी केंद्रों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को सम्मानित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित करेंगे।
1: ऐसे आंगनवाड़ी सम्मान एवं मातृ संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा और देश भर की सभी 14 लाख से ज्यादा जो आंगनवाड़ी है वहां तक पार्टी का कार्यकर्ता पहुंचेगा और जिस सेवा भाव से काम करने वाली वहां हमारी माता बहन है उनका सम्मान स्वाभाविकता किया जाए।
0: श्री तावड़े ने ब्लॉक स्तर पर 15 दिन के सेवा सेतु अभियान की भी घोषणा की।
1: सेवा सेतु अभियान के तहत 15 दिन के लिए ब्लॉक लेवल पर हर योजना के संबंधित डिपार्टमेंट के आवश्यक कागजात को लेकर वहां लोग उपस्थित रहे तो आप वहां आइए, फॉर्म भरिए, आपका नाम आयुष्मान में ऐड हो जाएगा। ऐसे सरकार के अलग अलग भिन्न भिन्न जो योजनाएं हैं जिसका लाभ सभी लोगों तक पहुंचना है तो उनको ये मौका होगा कि उनके ब्लॉक स्तर पर सेवा सेतु अभियान का एक अपना अलग कार्यक्रम उस दरमियान होगा, उसमें वो इस मौके का लाभ लेते हुए अपने आप को इस योजना में जोड़ सकते हैं।
0: गृहमंत्री अमित शाह ने आज एक बैठक कर देश की पूर्वी सीमाओं पर सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। इनमें सिलीगुड़ी कॉरिडोर चिकन नेक की सुरक्षा मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया गया। एक रिपोर्ट।
2: श्री शाह ने पश्चिम बंगाल के दौरे के तीसरे और अंतिम दिन सिलीगुड़ी के पास सुकना में राज्य सरकार और केंद्रीय सुरक्षा बलों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। इसमें सीमा सुरक्षा बल और सशस्त्र सीमा बल के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए। बैठक में सीमा निगरानी मजबूत करने, केंद्रीय सुरक्षा बलों, खुफिया एजेंसियों तथा राज्य पुलिस और प्रशासन के बीच बेहतर समन्वय पर बल दिया गया। प्रस्तावित त्रिकोणीय सुरक्षा ग्रिड की रूपरेखा तैयार करने पर भी चर्चा हुई। गृहमंत्री अमित शाह ने सुकना में वरिष्ठ गोरखा नेताओं के साथ भी बैठक की। दार्जिलिंग के लोक

0: सभा सांसद राजू बिस्ता ने कहा कि बैठक बेहद सफल रही और सभी गोरखा नेताओं ने अपने मुद्दे रखे। बैठक के बाद गृह मंत्री ने घोषणा की कि मुद्दों के समाधान के लिए वार्ताकार पंकज सिंह की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत बांग्लादेश संबंध आपसी सम्मान पर आधारित होने चाहिए। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि किसी भी रिश्ते को सफल होने के लिए आपसी हितों की कसौटी पर खरा उतरना आवश्यक है। भारत बांग्लादेश के साथ हितों की समानता और पारस्परिक सहयोग पर आधारित सकारात्मक, रचनात्मक और प्रगतिशील संबंध चाहता है। विदेश मंत्री ने पाकिस्तान को विश्व का एक अनूठा देश बताया, क्योंकि कोई अन्य राष्ट्र अपने पड़ोसी पर हमला करने और दबाव डालने के लिए आतंकवाद का इतने व्यवस्थित और निरंतर तरीके से उपयोग नहीं करता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में आज ब्रिक्स युवा मंत्रियों की बैठक ब्रिक्स युवा मंत्रियों के संयुक्त वक्तव्य को अपनाने के साथ संपन्न हुई। बैठक में ब्रिक्स देशों के बीच युवा सहयोग में हुई प्रगति की समीक्षा की गई और शिक्षा, कौशल, उद्यमिता, नवाचार तथा सामाजिक विकास में युवाओं के लिए अवसरों का विस्तार करने के तरीकों पर चर्चा की गई। एक रिपोर्ट।
2: संयुक्त वक्तव्य में शिक्षा, प्रशिक्षण और कौशल, युवा उद्यमिता, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य और खेल, पर्यावरण और सतत विकास, सामाजिक और सांस्कृतिक भागीदारी, स्वयं सेवा, गरीबी उन्मूलन, अंतर धार्मिक संवाद और युवा समावेशन सहित प्रमुख क्षेत्रों की पहचान की गई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा कि युवाओं को भविष्य को आकार देने में भागीदार होना चाहिए। बैठक में निर्णय लेने की प्रक्रिया में युवाओं की भागीदारी के लिए अनुकूल वातावरण बनाने, युवा नेतृत्व वाली पहलों को मजबूत करने, नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने और सीमा पार युवा आदान प्रदान को विस्तारित करने पर चर्चा हुई। विजयवाड़ा से अलू मुरली की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने युवाओं से 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का आह्वान किया है। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा आयोजित विकसित भारत एट 2047 युवा राजनीतिक नेताओं के संवाद में डॉ. सावंत ने कहा कि युवा राजनीतिक नेताओं को पद पाने की लालसा के बजाय लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए काम करना चाहिए। उन्होंने उनसे नीति निर्माता, जमीनी स्तर के आयोजक, प्रौद्योगिकी उपयोगकर्ता और सामाजिक उद्यमी के रूप में विकसित होने का आग्रह किया। डॉ. सावंत ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व में प्रौद्योगिकी, नवाचार, निवेश, बुनियादी ढांचे और रोजगार के क्षेत्र में की जा रही विकास पहलों की भी सराहना की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्वास्थ्य सेवाओं को आधुनिक तकनीक के साथ एकीकृत करने पर बल दिया है। नोएडा में एक लैब का उद्घाटन करने के बाद उन्होंने कहा कि जिस तरह शहरों की संख्या बढ़ रही है, उसी के अनुरूप देश में स्वास्थ्य सुविधाओं का भी विस्तार होना चाहिए। श्री सिंह ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में देश में चिकित्सा सुविधाओं का तेजी से विस्तार हुआ है। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आधुनिक मेडिकल इमेजिंग, डीएनए जांच, जीनोमिक्स, डिजिटल पैथोलॉजी और डेटा आधारित स्वास्थ्य सेवाएं बीमारियों की जांच और उपचार के तरीकों को तेजी से बदल रही है। उन्होंने बताया कि सरकार सशस्त्र बल चिकित्सा सेवाओं में भी नई तकनीक को शामिल कर रही है।
3: जैसे जैसे हमारे शहर बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे हमारी हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बढ़ाना ही होगा। हमारा लक्ष्य केवल बीमारी के सामने आने के बाद ट्रीटमेंट तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए। फ्यूचर के हेल्थ केयर सिस्टम को प्रिवेंशन, अर्ली डिटेक्शन, रिस्क एसेसमेंट और पर्सनलाइज्ड हेल्थ केयर पर अधिक ध्यान देना होगा।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने समाधान समारोह पहल के अंतर्गत आयोजित 3 दिन की विशेष लोक अदालत के पहले 400 दिन से अधिक मामलों का निपटारा किया। इनमें वैवाहिक और संपत्ति विवाद, मोटर दुर्घटना दावे, भूमि अधिग्रहण और मुआवजे से संबंधित मामले, कर विवाद और सेवा तथा श्रम संबंधी मामले शामिल हैं। न्यायालय ने कहा कि यह पहल न्याय व्यवस्था में मध्यस्थता और विवाद समाधान के अन्य सहमतिपूर्ण तरीकों को बढ़ावा देने के लिए उसके निरंतर प्रयासों को दर्शाती है। मेघालय और असम सरकार के बीच आज गुवाहाटी में संयुक्त बैठक हुई। इसमें 19 अगस्त को शिलांग में असम में पंजीकृत वाहनों में तोड़फोड़ की घटना के बाद स्थिति पर चर्चा की गई। मेघालय के उप मुख्यमंत्री डॉ.

0: असुनिया भालंगधार और असम सरकार में सीमा संरक्षण असम समझौता कार्यान्वयन और विकास मंत्री अतुल बोरा ने गुवाहाटी में कोयनाधार स्टेट गेस्ट हाउस में दोनों राज्यों की सरकारों के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में संयुक्त बैठक की अध्यक्षता की। त्रिपुरा में नीति आयोग के सदस्य डॉ जोरम अनिया ने आज गोमती जिले के अथारो भोला में गरिया अकादमी मॉडल स्कूल का दौरा किया। दौरे के दौरान स्कूल की शिक्षा व्यवस्था, बुनियादी ढांचे, चुनौतियों और भविष्य की संभावनाओं पर चर्चा हुई। डॉ अनिया ने जमातिया होडा समुदाय की संस्कृति, परंपराओं और विरासत के बारे में भी जानकारी ली। महाराष्ट्र और जर्मनी के हेसे राज्य ने निवेश, उद्योग, नवाचार, रोजगार और कौशल विकास के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। मुंबई में आज सह्याद्री अतिथि गृह में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और हेसे के मंत्री बोरिस राइन ने समझौते पर हस्ताक्षर किए। समझौता ज्ञापन के अंतर्गत दवा, स्वास्थ्य, इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल, वित्तीय सेवाएं, लॉजिस्टिक्स सेवा, डिजिटल अर्थव्यवस्था और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने नीट पीजी परीक्षा के लिए चिकित्सा अधिकारियों की तैनाती के कारण सीजीएचएस वेलनेस सेंटर को 27 से 31 अगस्त तक बंद रखने का नोटिस का खंडन किया है। मंत्रालय ने कहा कि यह नोटिस झूठा है और अनाधिकृत है। सभी सीजीएचएस वेलनेस सेंटर अपने निर्धारित कार्य समय के अनुसार कार्य करेंगे। मंत्रालय ने लाभार्थियों को सलाह दी है कि वे केवल आधिकारिक सीजीएचएस चैनलों के माध्यम से जारी की गई जानकारी पर ही भरोसा करें। सरकार ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन के उस फर्जी वीडियो का खंडन किया है जिसमें एक निवेश योजना का प्रचार किया जा रहा है। इस वीडियो में 22,000 रुपए के शुरुआती निवेश पर हर सप्ताह 5.5 लाख रुपए की सुनिश्चित आय देने का दावा किया जा रहा है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा कि यह वीडियो फर्जी है और एआई से तैयार किया गया है। इकाई ने स्पष्ट किया कि वित्त मंत्री ने ऐसी किसी निवेश योजना या प्लेटफॉर्म का समर्थन नहीं किया है। जांच इकाई ने लोगों से ऐसे जालसाजों से सावधान रहने की अपील की है जो फर्जी योजनाओं का लालच देकर लोगों को ठगने और उनका पैसा हड़पने का प्रयास कर रहे हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में ओडिशा में बारिश की संभावना व्यक्त की है। इससे बाढ़ प्रभावित इलाकों में चिंता बढ़ गई है। हमारे संवाददाता ने बताया कि कई इलाकों में अब भी बाढ़ का पानी भरा हुआ है।
1: उड़ीसा में एक बार फिर बारिश होने की संभावना है क्योंकि बंगाल की खाड़ी में बने नए मौसम से बारिश बढ़ने की उम्मीद है। आईएमडी भुवनेश्वर ने कई जिलों में हल्के से मध्यम बारिश या गरज के साथ छींटे पड़ने का अनुमान लगाया है और ये बारिश का दौर आने वाले हफ्ते तक जारी रहने की संभावना है। आज केंदुझर, मयूरभंज, कालाहांडी और नवरंगपुर के लिए भारी बारिश की येलो वार्निंग जारी की गई है, जबकि 24 और 25 तारीख को केंदुझर और मयूरभंज के लिए ऑरेंज वार्निंग का अनुमान है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के महिला डबल्स सेमीफाइनल में भारत की त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद को चीन की लियू शेंग शू और टैन निंग से हार का सामना करना पड़ा। हालांकि भारतीय जोड़ी ने प्रतियोगिता में कांस्य पदक सुनिश्चित कर लिया है। और FIH हॉकी पुरुष विश्व कप में भारत का मुकाबला मेजबान नीदरलैंड से जारी है। ताजा समाचार मिलने तक नीदरलैंड ने 1-0 की बढ़त बना ली है। पहले राउंड के 3 मैचों में भारतीय टीम ने 2 जीत और 1 हार के साथ दूसरे राउंड में जगह बनाई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के नए पदाधिकारियों से बातचीत की। संगठन को मजबूत करने और जनता से गहरे जुड़ाव पर बल दिया। गृह मंत्री अमित शाह के पश्चिम बंगाल में सिलीगुड़ी में वरिष्ठ गोरखा नेताओं के साथ उच्च स्तरीय बैठक के बाद केंद्र ने गोरखा मुद्दे के समाधान के लिए उच्च स्तरीय समिति की घोषणा की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, भारत बांग्लादेश के संबंध आपसी हितों पर आधारित होने चाहिए। भाजपा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में जनसेवा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को उजागर करने के लिए 1 महीने तक चलने वाले राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान का आयोजन करेगी। और BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में भारतीय महिला डबल्स जोड़ी त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद ने ऐतिहासिक कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही ये समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: मेरे प्यारे दोस्तों, आज है शनिवार और इस वक्त आपको रहता है कार्यक्रम हेलो हफलंग का इंतजार। नमस्कार, मैं मोतीलाल आप सभी का करता हूं अभिनंदन और बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज का ये कार्यक्रम और स्वागत करते हैं पहले कॉलर का। हेलो हफलंग।
1: हेलो आप लोग।
0: नमस्कार, बताइए।
1: नमस्कार, मैं दिनेश शर्मा बोल रहा हूँ
0: जी। कहाँ से बोल रहे हैं?
1: मैं जोरहाट में।
0: जोरहाट से। कैसे हैं दिनेश जी?
1: ठीक है, आप तो देखिए।
0: जी हम भी अच्छे हैं।
1: मैं आया बोडा सिनेमा सुनने से गाना बजा देगा।
0: लीजिए आप सुनिए बोडा फिल्म का ये गीत। धन्यवाद आपका।

0: हेलो अफलांग,
1: हेलो हेलो, आपको नमस्कार
0: नमस्कार।
1: जी। सर, हम धेमाजी जिला मिसा के कपड़े से बोल रहे हैं, बिमल बसुंधर
0: कैसे हैं बिमल जी आप?
1: जी। सर, हम ठीक है, अभी दुकान में है हम। सर, दुकान पे फोन कर रहे हैं
0: किस चीज़ का दुकान है आपका?
1: जी। सर, हम सिलाई का काम करते हैं
0: अच्छा, रेडियो बराबर सुनते हैं।
1: जी। सर, हम रोज खरीदे से जुड़ा रहता है सर, दुकान में रह के गाना सुन के वीडियो प्रोग्राम सुन के बहुत अच्छा लगता है सर।
0: जी बताइए कौन सा गाना सुनेंगे आज?
1: सर, हमको सुना दीजिए अनारी फिल्म का जो भी एक गाना सुना दीजिए सर, और ये गाना को हम रिपीट करेंगे एक दो मिसले को
0: जी
1: सर।
0: जी
1: हमका है अमल उसलरी, फैकन मंदा, रमेश पत्र, और है गागे राधा, तिवासी हजरिका, रमेश प्रजापति, राकेश बंदी, प्रेम सिंह सिसोदिया, पुरंदर मा, राकेश, सबके लिए डेडिकेट है सर।
0: लीजिए, पेश है आप और आपके दोस्तों के नाम ये गीत। धन्यवाद आपका।

0: हेलो अफलांग,
1: नमस्कार
0: नमस्कार। बोलिए, कौन बोल रहे हैं
1: सर जी। शिवा लोहट एमपी विदिशा से बात कर रहा हूँ।
0: जी? कैसे हैं आप?
1: मैं बहुत बढ़िया हूँ सर, आप कैसे?
0: हम लोग भी अच्छे हैं। कैसा है विदिशा का मौसम
1: सर जी बारिश हो रही है, मौसम सुहाना।
0: जी? बताइए कुछ और
1: सर जी मूवी का नाम है परदेसी बाबू,
0: जी।
1: उसमें एक गाना रहेगा, जवाब सजना मैंने करना तेरा है।
0: चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत। धन्यवाद कॉल करने के लिए।

0: हेलो
1: हेलो
0: अफलांग,
1: जी, नमस्ते।
0: नमस्ते
1: प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ, ग्राम बछोड़ा, तहसील नागदा, जिला उज्जैन से। मैं
0: जी। कैसे हैं आप?
1: बहुत अच्छा हूँ और आपसे बात करके और भी अच्छा लग रहा है। आप बताइए, आप कैसे हो
0: हम लोग भी अच्छे हैं।
1: जी? आपके उधर मौसम कैसा है अभी?
0: मौसम तो बहुत ही अच्छा है।
1: जी, हमारे यहाँ पे भी काफी अच्छा मौसम है, खुला हुआ मौसम है। 2-3 दिन पहले अच्छी काफी बारिश अच्छी हुई थी यहाँ पर
0: जी
1: जी। और आपको बताऊं, हमारे यहाँ पे मैदानी इलाका है और गेहूं लहसुन की फसल लगाई जाती है, और
0: जी
1: अभी फिलहाल हमने सोयाबीन की फसल लगाई है
0: जी ये कब
1: जी। जी,
0: तक तैयार होगा वो कटने के लिए?
1: अभी हमारी सोयाबीन की फसल 1.5 महीने की हो गई है, अभी
0: जी
1: उसमें 2 महीने और लगे, 1.5 महीने की मतलब हुई तो 1-1.5 महीना और लगेगा जी। मतलब 3 महीने में फसल सोयाबीन की कटाई होने के बाद घर आ जाती है, फिर गेहूं लहसुन और मटर की फसल लगाई जाती है। काफी तादाद में लहसुन उत्पादन होता है हमारे यहाँ पर
0: जी जी जी
1: जी। और आपको बताओ, मोबाइल ऐप पे हम कार्यक्रम सुनते हैं होपलोंग के
0: जी अच्छा सुनाई देता है।
1: जी। हाँ, स्पष्ट सुनाई देता है। और आपको बताऊं, मोबाइल ऐप पे कार्यक्रम आने की वजह से हमें हर राज्य के कार्यक्रम सुनने को भी मिलते हैं और आकाशवाणी के नए नए दोस्त भी बनते हैं हमारे
0: जी। और कौन कौन से कार्यक्रम सुनते हैं आप आकाशवाणी
1: जी।
0: आपलंग के?
1: फोन आकाशवाणी होपलोंग के तो मैं फोन इन प्रोग्राम ही सुनता हूँ, और
0: जी
1: हमारे दोस्त हैं असम के भाईकोन मुंडा, वो भी हमें बहुत अच्छी अच्छी जानकारी देते हैं कार्यक्रम के बारे में
0: जी चलिए फिलहाल कौन सा गाना सुनेंगे आप?
1: जी। फिल्म का नाम है हम तू चोर मैं सिपाही, ये फिल्म का नाम है, और गाने के बोले हम दो प्रेमी छत के ऊपर, गली गली में शोर
0: जी लीजिए पेश है
1: जी।
0: आपकी पसंद का ये गीत।
1: थैंक यू सो मच, मुझे आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा।

0: हेलो हफलांग।
1: हेलो सर जी, नमस्कार।
0: नमस्कार।
1: मैं रमेश प्रजापति, ग्राम माया, तहसील रहती, जिला सीहोर, एमपी से बोल रहा हूँ सर।
0: जी, कैसा है एमपी का मौसम?
1: मौसम बस बादल हो रहे हैं कि पानी तो अभी नहीं गिरा सुबह से।
0: जी, गर्मी होगी?
1: हाँ मामूली है, ज्यादा नहीं है गर्मी।
0: जी, क्या करते हैं रमेश जी आप?
1: मैं सिलाई करता हूँ, सिलाई दुकान पे काम कर रहा था। और
0: जी,
1: जी
0: सिलाई करते हुए गाने सुनते हैं ना। बोलिए, आज कौन सा गाना सुनेंगे आप?
1: मेरे को सुनवा दो आप, रेशम की डोरी फिल्म का नाम है।
0: जी, गाना कौन सा है?
1: बहना ने भाई की कलाई पे प्यार बांधा है, तो जो रक्षाबंधन चल रहा है
0: जी
1: तो सभी बहनों भाइयों को मेरी ओर से रक्षाबंधन की शुभकामना और आपको भी।
0: जी धन्यवाद आपका। आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं।
1: जी, और मैं कुछ मित्रों को याद करना चाहता हूँ।
0: जी बिल्कुल,
1: पहले तो आप,
0: धन्यवाद।
1: और फिर भगवान सिंह परमार है, पूनम जी है कानपुर से, राकेश जी है शिमला से, पूरन
0: जी
1: वर्मा जी है असम है, भाई को मुंडा है, विमल भस्मकारी है, अमल भस्मकारी, रमेश पात्रे जी है, गोल्डी जी है, रक्कू विले मेहता है, और तनुश्री बिटिया।
0: लीजिए, पेश है आप और आपके तमाम दोस्तों के नाम ये गीत।

0: हेलो हाफलांग,
1: हेलो आपलोंग जी, नमस्ते। मैं
0: नमस्ते जी।
1: रमेश पत्र बेतियाजी स्टेट गुलागत असम से बात कर रहा हूँ।
0: कैसे हैं रमेश जी?
1: मैं अच्छा हूँ, और आप कैसे हैं?
0: जी हम भी बिल्कुल ठीक हैं।
1: हाँ, अरे मौसम कैसा है उधर?
0: मौसम बहुत अच्छा है
1: हमारा इधर भी अच्छा है, दो के कॉम्बिनेशन।
0: जी।
1: और हम और गाना सुनेंगे कुरुक्षेत्र,
0: जी
1: कुरुचक्र, आपका ना दिल धड़कना
0: जी
1: गाने को मैं डेडिकेट करता हूँ अमल और बिमल बसुमतारी, भाईकोन मुंडा, देवाशीष हजारिका, सौरभ दोहरा, जोगेंद्र रंगती,
0: जी
1: रोनू पात्र, अंजलि बसुमतारी, जितेंद्र दास, प्रेमजीत चक्रवर्ती, रमेश प्रजापति, आशुतोष देवनाथ, भगवान सिंह परमार और मेरा तमाम कृष्ण साथियों के लिए।
0: जी धन्यवाद आपका। लीजिए,
1: हाँ
0: पहुंच
1: सर,
0: रहा है आपकी पसंद का ये गाना, कॉल करते रहें।

0: हेलो अफलान
1: हाँ भैया, योगेश जांगड़े बेमेतरा छत्तीसगढ़ से।
0: जी, कैसे हैं योगेश जी?
1: बढ़िया है भैया। अच्छा, खेती
0: क्या काम करते हैं?
1: बाड़ी
0: खेती बाड़ी। कौन सी फसल लगा रखा है आपने?
1: धान लगाए हैं भैया। फिल्म
0: धान।
1: है शेष नाग और गीत के बोल है छेर मिलन के गीत।
0: जी लीजिए, आप सुनिए आपकी पसंद का ये गीत।
1: धन्यवाद।
0: धन्यवाद।

0: हेलो हाफलॉन्ग।
1: नमस्कार
0: नमस्कार।
1: सर। ग्राम गुनौरे, जिला सतारा, महाराष्ट्र से तनुश्री सुरवे बात कर रही हूँ। कैसे
0: जी
1: सर आप?
0: जी हम अच्छे हैं, आप कैसी हैं?
1: मैं भी बहुत बढ़िया हूँ, और आप फोन फोन लगा तो और भी बढ़िया लग रहा है। जी
0: जी बताइए अपने बारे में। और
1: सर, मैं शास्त्रीय संगीत सीखती हूँ। हाँ,
0: जी
1: और घर में अब रहती हूँ।
0: जी जी जी
1: और सर, वो जो फिल्म का नाम है धड़कन, उसमें गाने के बोल है तुम दिल की धड़कन हो, गाना सुनना है। और डेडिकेट आपको रहेगा, फिर मेरे पापा है भगवान सिंह परमा जी है, प्रजापति
0: जी
1: जी है, अमल भट्टाचार्य है, और लक्ष्मण देवन सभी श्रोताओं के लिए।
0: जी क्योंकि आप शास्त्रीय संगीत सीखती हैं जैसे आपने कहा है, तो आपके आवाज में हम कुछ सुनना चाहेंगे, एक लाइन।
1: तो ये ही गाना मैं सुनाऊँ जो मैंने फरमाइश की
0: जी
1: है?
0: बिल्कुल
1: हाँ,
0: बिल्कुल।

0: हेलो हाफलांग
1: हेलो हफलोंग,
0: जी,
1: मैं
0: नमस्कार
1: अमल बसलकारी बात कर रहा हूँ रंगापारा सोनीपुर असम से।
0: जी।
1: और मैं आज गाना सुनना चाहता हूँ फुटपाथ मूवी का, सारे रात तेरी याद गाना को सुनना है सर। हम
0: जी, और कुछ बताइए अपने बारे में।
1: तो खेत के साथ जुड़ते हो, और तो चाय का बागान है हमारा, धान का खेत हो चुका है, तो अभी तो पानी का ही जरूरत होता है।
0: जी, बारिश तो हो रही है
1: बारिश का थोड़ा थोड़ा बारिश हो रहा है, हाँ ज्यादा
0: जी।
1: तो बारिश नहीं हो रहा है, तो मैं डेडिकेशन ले सकता
0: जी बिल्कुल।
1: है सर। मेरे साथ सुनने वाले दोस्त है भाईकोन मुंडा, बिमोल बसुमतारी, रमेश पात्रो, रोनू पात्रो, लाखी, देवाशीष हजूरिका, संजय मुंडा, सौरभ द्वारा और नीलोत्पल द्वारा, और ये हेलो फॉर माय सेक्टर ग्रुप की है, भगवान सिंह परमार, रमेश प्रजापति, राकेश पूरन वर्मा और शिवा लोहार और तानुश्री और पुष्करनाथ शर्मा, इन सभी को डेडिकेट रहेगा गाना, और आपको भी खासकर।

0: हेलो हफलांग।
1: हेलो जी, नमस्कार सर
0: नमस्कार
1: जी। मैं डिस्ट्रिक्ट चौराहे सोनाली से भाईकन मुंडा बात कर रहा हूँ।
0: जी, कैसे हैं भाईकन मुंडा जी?
1: मैं ठीक हूँ सर, आप कैसे हैं?
0: जी हम भी अच्छे हैं।
1: सर एक बात पूछना था आप लोगों से। जी
0: पूछिए।
1: सर, मैं ये बोल रहा था वो आप लोग का जो आपके गीत फरमाइशी व्हाट्सएप एसएमएस द्वारा कार्यक्रम रहता है ना,
0: जी
1: तो उसमें पहले तो मंगलवार और गुरुवार 2 दिन आते थे ना रात को
0: जी
1: 9 बजे।
0: जी जी जी
1: फिलहाल तो एक ही दिन मंगलवार आ रहे हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि अगर फिर से 2 दिन का हो जाएगा तो ठीक रहेगा। ज्यादा से ज्यादा इसमें आजकल तो आ रहे हैं, लग रहा है ना, बहुत
0: जी
1: सारे पूरे इंडिया से, मतलब पूरे भारत से आ रहे हैं ना,
0: हम्म।
1: जैसे राजस्थान, गुजरात, हर जगह से आ रहा है। मैं सुन रहा हूँ ना
0: जी
1: कार्यक्रम, तो
0: जी जी जी
1: इसीलिए मैं चाहता हूँ कि 2 दिन हो जाएगा, होने से ज्यादा अच्छा रहेगा। बाकी वो
0: जी
1: तो आप लोग
0: आप जी जी जी आपका ये रिक्वेस्ट हम संबंधित विभाग तक पहुंचा देंगे। बाकी
1: जी।
0: इसमें कुछ विचार किया जाएगा, आप निश्चिंत रहें।
1: हाँ जी
0: फिलहाल
1: जी सर
0: फिलहाल आप बताइए अपने बारे में और कुछ।
1: जी, मैं तो घर पे ही, फिलहाल अभी घर पे ही हूँ।
0: जी
1: अभी खेती बाड़ी का काम, तो अभी धान खेती का तो काम बिल्कुल अभी खत्म हो गया, जो बुआई किया था ना।
0: जी
1: अभी ये तो इंतजार है धान कटने पकने का, और 1-2 महीने बाद दिसंबर, नवंबर दिसंबर में आएगा। अभी तो घर पर ऐसे ही हूँ। और आज गाना सुनना है सर, वो फिल्म का नाम है तुझे मेरी कसम।
0: जी
1: इसमें गाना है, पल पल सोच में आना ना, हलचल दिल में मचाना ना, तुझे मेरी कसम। ये टाइटल सॉन्ग है,
0: जी
1: ये गाना सुना दीजिए। और कुछ दोस्तों के नाम भी देना चाहूंगा जी
0: जी बिल्कुल
1: जी अमल अमल विमल, अंजलि दरासर, बसुमतारी, और रमेश पात्र, अरुण पात्र, डाकी, देवाशीष हजारिका, जितेंद्र दास, नीतू देव, संजय मुंडा, और हेलो फरमाइश एक्टर ग्रुप के सभी सदस्यों को ये गाना डेडिकेट रहेगा, और आकाशवाणी आप लोग के सभी कार्यकर्ता को भी डेडिकेट रहेगा।
0: जी धन्यवाद आपका। भाईकंठ जी, मैं एक बात पूछना चाह रहा था आपसे।
1: हाँ जी जी बोलिए।
0: हमारे जितने भी श्रोता हैं, काफ़ी लोग आपका नाम लेते हैं, आपको डेडिकेट करते हैं, आप उनसे किस तरह जुड़े हुए हैं? आपका कोई ग्रुप है या?
1: हाँ, वो आकाशवाणी ग्रुप है ना अपना, वो आसाम का एक ग्रुप है, अनातार मोरम पोरियाल, उनसे भी मैं जुड़ा हूँ। उनके भी कुछ दोस्तों से मेरा नाम लेते हैं वो लोग।
0: जी
1: और हेलो फेमस एक्टर ग्रुप है, वो तो नेशनल, पूरे भारत में, भारत के लोग है हेलो फेमस एक्टर ग्रुप। उसमें भी मैं ऐड हूँ, तो उसमें जिसने भी जिसमें रहो भी मेरा नाम लेता है, मैं भी उन लोग का नाम लेता हूँ ऐसा।
0: जी जी जी जी बहुत सारे
1: हाँ
0: ग्रुप्स में ऐड हैं आप और
1: हाँ
0: बहुत सारे चैनल सुनते हैं शायद, है ना?
1: हाँ जी। मैं तो पूरा आसाम का तो सुनता ही हूँ, ये अपना हाफलोंग, जोरहाट, गुवाहाटी, डिब्रूगढ़, ये तो है ही। और
0: जी
1: नॉर्थ ईस्ट का जैसे कोहिमा, शिलोंग, ईटानगर, उसके अलावा और भारत के जैसे पूरे इंडिया के जैसे हो गया लखनऊ, बीच भारत, मुंबई, ये सब सुनते हैं ना, भोपाल, बहुत
0: जी जी जी
1: तो सारे स्टेशन सुनता हूँ। शर्मा के कार्यक्रम का उसमें भाग लेता हूँ, व्हाट्सएप एसएमएस वगैरह, ये सब में अच्छा
0: जी
1: लगता है। आकाशवाणी के साथ जुड़ा, मतलब
0: जी
1: दोस्तों के साथ, मतलब बहुत ये हो रहा है ना,
0: जी
1: मिलजुल, मतलब बात कर रहे हैं, अच्छा लगता है। पूरे
0: जी जी
1: भारत
0: जी
1: के श्रोताओं से मिलता हूँ ना, बात करता हूँ, अच्छा लगता है ना।
0: जी हमें भी खुशी होती है आप जैसे श्रोता हैं हमारे साथ। चलिए सुनते हैं
1: जी
0: आपकी पसंद का ये गाना, मिलते
1: जी
0: रहें।
1: जी मेरा कॉल रिसीव करेंगे, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।

दोस्तों, इस खूबसूरत नगमे के साथ आज का सफर हुआ पूरा। कल रात 9 बजे एक बार फिर होगी आपसे बातें और सुनेंगे अन्य कुछ श्रोताओं के फरमाइश। और जैसे कि आप जानते हैं, इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होती है हर बुधवार दिन के 1 बजे से 2 बजे के बीच। हमें संपर्क करने के लिए कॉल करें 9435700596 पर। और एक खास बात, आप अपना गाना किसी को डेडिकेट भी कर सकते हैं। आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स फेसबुक पेज आकाशवाणी हफलंग, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम हैंडल आकाशवाणी हफलंग पर जाकर भी हमसे जुड़ सकते हैं। मिलते हैं कल रात ठीक 9 बजे। तब तक के लिए शुभ रात्रि।

0: श्रोताओं, अभी आप फोन इन प्रोग्राम हेलो हाफलंग सुन रहे थे। आज का हेलो हाफलंग कार्यक्रम लेकर आए थे मोतीलाल जोशी। आकाशवाणी का ये हाफलंग केंद्र है।
1: दीदी, नौकरी लग गई।
2: अरे वाह, बधाई हो। तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग।
1: हाँ दी, नया मोबाइल।
2: अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे।
3: इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है।
2: पहले बजट बनाना सीखो, फिर खर्च करो।
1: पर दीप,
2: देखो कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम।
3: हाँ दी, पार्टी मेरी, बजट तुम्हारा।
2: अच्छा।
4: RBI कहता है,
5: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
0: तो लीजिए, आप सुनते हैं कुछ फिल्मी गीत। पहला गीत सुनिए बाजीगर फिल्म से, जिसे गाया है कुमार शानू और अलका याग्निक ने।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रगीत। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 110.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का हाफलंग केंद्र है। इस समय रात के 10 बजे हैं। हमारी दूसरी सभा समाप्त करने की आपसे आज्ञा चाहते हैं। कल सुबह की पहली सभा में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। शुभ रात्रि। जय हिंद।